हम आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर, एफएम पर 101.6 मेगा हर्ट्स पर। आज शुक्रवार है। शक सम्वत 1948 के बैसाख माह की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 मई सन 2026 सवेरे के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल हमारू चैनल है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से

0: दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एनडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। आज का विचार में सुनिए, आत्मविश्लेषण करते रहें, इस विषय पर विचार आलेख और वाचक स्वर श्री प्रमोद कुमार शर्मा का है।
3: अक्सर देखने में आता है कि हम सदैव दूसरों का विश्लेषण करते रहते हैं कि फलाँ ने ये किया, ये नहीं किया, ऐसे करना था, वैसे नहीं किया, ये अच्छा किया, ये बुरा किया, वगैरह वगैरह। नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन ये बुराई तब बुराई बन जाती है जब हम दूसरों

0: के समकक्ष अपने खुद का विश्लेषण नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो दूसरों को दिखाने भर के लिए या आडंबरपूर्ण। क्या कोई महात्मा गांधी की तरह आत्मविश्लेषण करता है? अगर नहीं करता है तो उसे अब करना चाहिए, क्योंकि ये मानव जीवन है और मानव जीवन बिना विश्लेषण के अधूरा जान पड़ता है। इस प्रकार से आधे अधूरे जीवन से न तो हम अपना भला कर पाते हैं, न ही किसी अन्य का। अतः प्रतिदिन सोने से पहले अपने खुद का विश्लेषण करना चाहिए। आचार्य महाप्रज्ञ ने एक बार प्रवचन में कहा था कि व्यक्ति को अपना सिंहावलोकन करते रहना चाहिए, यानी जिस प्रकार जंगल का राजा शेर 10-20 कदम चलकर रुककर चारों तरफ गर्दन घुमाकर देखता है कि कहीं कोई शत्रु तो नहीं खड़ा, कोई शिकारी जाल बिछाकर तो नहीं बैठा। जिस प्रकार से एक शेर अवलोकन करता है, ठीक वैसे ही हमें भी सिंहावलोकन या आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कब हमारे शत्रु काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, वासना आदि हमारे शरीर पर कब्जा जमा कर बैठ जाते हैं और हमें भ्रमित करते हैं। ब्रेक्ट अपनी ये कविता में कुछ इसी प्रकार की बात कहते हैं कि मैं बाहर के दुश्मनों से तो फौज फाटा लेकर निपट सकता हूँ, लेकिन अपनी खाट में छुपे खटमलों का क्या करूँगा। ये बात दरअसल उन्होंने आत्मविश्लेषण के लिए कही है। और हम दुश्मन को बाहर देखते रहते हैं, जबकि वे हमारे ही भीतर छुपे होते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने कर्मों का, क्रियाओं का, क्रिया पद्धति का विश्लेषण करता रहे, वरना हमारी हालत इस बारहसिंगे जैसी हो जाएगी जो एक बार पानी पीने के लिए एक तालाब पर गया, तृप्त होकर पानी की शांत लहरें देखने लगा। तभी उसकी नज़र अपनी पतली टांगों की तरफ गई और वो उदास हो गया। उसने ईश्वर को उलाहना दिया, क्या भगवान इतने सुंदर सींग दिए मगर टांगे पतली पतली। तभी एक जंगली कुत्ता वहाँ आया और बारह सिंगे की तरफ दौड़ा, लेकिन बारह सिंगा अपनी पतली टांगों के दम पर कूद कूद कर दूर जा भागा, लेकिन आगे पहुंचकर उसके सींग एक झाड़ी में फंस गए। उसने लाख कोशिश की मगर वो अपने सींगों को मुक्त नहीं करवा सका। तब तक कुत्ता भी वहाँ पहुँचा और उसका शिकार कर लिया। तब मरते समय उस बारह सिंगे के मन में था कि पतली टांगों की वजह से मैं जान बचाकर भागा, परंतु इन भारी भरकम सींगों ने मरवा डाला। इस कहानी से सिद्ध होता है कि मनुष्य को गुणों की कदर करनी चाहिए और दिखावटी आडंबरों से दूर रहना चाहिए, और ये भी सोचना चाहिए कि अपना आत्मविश्लेषण सही तरीके से करे। उसमें गुणानुगुण छांटने की शक्ति होनी चाहिए, तभी आत्मविश्लेषण सफल हो सकता है।
1: आत्मविश्लेषण करते रहें, इस विषय पर था आज का विचार। आलेख और प्रस्तुति श्री प्रमोद कुमार शर्मा की थी। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रही हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आप सुन रही थी भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस गान का सस्वर पाठ। संगीतकार हैं श्री सतीश भाटिया। आज आप सुनेंगे बालकांड के दोहा संख्या 28 से पहले की चौपाई से दोहा संख्या 29 तक।

पार्वती की हस्तरेखाएं देखकर देवर्षि नारद ने भविष्यवाणी की कि उनका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला होगा। देवर्षि ने कहा, हे हिमवान, विधाता ने जो ललाट पर लिख दिया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। फिर भी एक उपाय है। मैंने वर के जो भी दोष बताए हैं वे सभी शिवजी में विद्यमान हैं, और यदि पार्वती का विवाह उनसे हो जाए तो सभी दोष गुण में परिवर्तित हो जाएंगे।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान का सस्वर पाठ। संगीतकार थे श्री सतीश भाटिया। आज आपने एपिसोड नंबर 29 सुना। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। 7 बजे सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात। 7:30 पर फिल्म संगीत का प्रसारण होगा।

8:30 पर सौरव कार्यक्रम में आप सुनेंगे कहानी हौसला। कहानीकार होंगे श्री सुधीर केवलिया। 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गांधी चर्चा। आगामी आंध्र यात्रा के बारे में आज का विषय रहेगा। वाचक स्वर श्री प्रमोद कुमार शर्मा का, प्रस्तुति रेवंत राम लेगा और संयोजन श्री अमित सिंह का होगा। 9:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। फिल्म संगीत 10 बजे प्रसारित होगा। महिलाओं के लिए महिला जगत का समय दिन में 1:05 पर चर्चा के विषय रहेंगे। मीडिया और रेडियो में महिलाओं के लिए अवसर, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, परिवार की धुरी नारी, कम समय में पौष्टिक नहत्वा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। साथ ही आप सुनेंगे वार्ता, आधुनिक समाज में पारिवारिक मूल्यों का महत्व। वार्ताकार होंगी श्रीमती अर्निका साहू।

संध्या 5:05 पर युवा साथियों के लिए युवाणी का प्रसारण होगा। आज की बात का विषय रहेगा आज की बचत कल की आय। लघु जानकारी आप सुनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जयंती, जैव प्रौद्योगिकी, पीएम वाणी योजना के बारे में, साथ ही रोजगार समाचार और गीत संगीत। जिले की चिट्ठी 6:40 पर जयपुर केंद्र से रिले होगी। संध्या 7:00 ग्रामीण श्रोताओं के लिए ग्रामीण जगत का प्रसारण होगा। चर्चा के विषय स्मार्ट कृषि, जल संचयन, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, लोकगीत और मौसम संबंधी जानकारी। रात 9:30 पर सुनिए परिचर्चा, शिक्षा का आधुनिकीकरण और बच्चों का भविष्य। संचालन रहेगा हेम शर्मा का, प्रतिभागी संजू श्रीमाली और राजेश रंगा। 10:00 उर्दू कार्यक्रम गुलिस्तां जयपुर केंद्र से रिले होगा। 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत, एनवी पटवर्धन का गायन ख्याल जयंत।

0: ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें।
1: किसान भाया राम राम। किसान भाया, आज अपा बात करा शुष्क वन अनुसंधान केंद्र जोधपुर। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी एरिड जोधपुर भारत सरकार रे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय रे अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय है। ओ संस्थान वन पारिस्थितिकी, वन अनुवंशिकी, उत्तक संवर्धन, आणविक जैविक

0: वन संवर्धन, वन कीट विज्ञान और रोग निदान विज्ञान, ए काष्ठ वनोपज पर अनुसंधान कार्य कर रहे है। अनेक कार्य क्षेत्रारी आवश्यकता ने ध्यान में रखते हुए अनेक तरह की परियोजनाएं चला रहे है। एएफआरआई रा कई उद्देश्य है, मानव वन और पर्यावरण रे माध्यम पारस्परिक क्रिया रे फलस्वरूप उपज रही समस्याएं सुपरिचित कराने एर इन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने री दिशा में सतत रूप से अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रसार कार्यक्रम रे माध्यम से उत्पादन, संरक्षण और उन्नत ज्ञान प्रौद्योगिकी और समाधान ने बढ़ाओ देवणो है। वानिकी एवं संबंधित क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान कर उत्पादकता एर वनस्पतिक क्षेत्र में वृद्धि करनो है। सूक्ष्म क्षेत्र री जैव विविधता रो संरक्षण करनो है। संस्थान रे निर्धारित कार्य क्षेत्र में राजस्थान, गुजरात, दादर एर नागर हवेली रे गर्म शुष्क और अर्ध सूक्ष्म क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता हेतु प्रौद्योगिक रो विकास करनो है। एएफआरआई रा कई कार्य हुए हैं, वे इन प्रकार है। सूक्ष्म क्षेत्र में कृषि जन्य चाराग्राह मॉडल विकसित करनो, सूक्ष्म क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण तकनीक विकसित करनी एर दाब क्षेत्र रे वनीकरण हेतु तकनीकी रो विकास करनो, रेतीला टिब्बा रो स्थिरीकरण और मरुस्थल री पारिस्थितिकी रो स्थिरीकरण करनो, इनके अलावा उच्च गुणवत्ता री रोपण सामग्री तैयार करने री नई नई तकनीका विकसित करनी, महत्वपूर्ण सूक्ष्म क्षेत्रीय प्रजातियां रे उद्गम स्रोत्रों भी परीक्षण करनो, इनके अलावा जैव कीटनाशी और जैव उर्वरक पर अध्ययन करनो भी इनरो प्रमुख कार्य हुआ करे है। भाई लोगा, संस्थान रा अनेक तरह रा प्रभाग है, जिया की वन पारिस्थितिकी प्रभाग और इन प्रभाव रा काई उद्देश्य है, वे इन प्रभाव प्रकार है। इन प्रभाग द्वारा मरु प्रसारी समस्या, जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता से संबंधित अनेक पहलुओं पर कार्य करनो, जिया की वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण करनो, मृदा संरक्षण एवं रेतीला टिब्बारो स्थिरीकरण करनो, सिंचाई जल प्रबंधन एवं अपशिष्ट जल रो वानिकी में उपयोग, मृदा जल पादप संबंध पर एवं पादपा द्वारा जलाक्रांत क्षेत्रों निस्तारण करनो, जैव विविधता एवं उत्पादकता करनो है। इन संस्थान रो दूसरो जिको प्रभाग है वो है कृषि वानिकी एवं विस्तार प्रभाग, और इरा उद्देश्य इन प्रकार है। जन सहभागिता द्वारा कृषि वानिकी मॉडल एर वृक्षारोपण ने प्रोत्साहित करनो, संस्थान रे अनुसंधान परिणामों रो प्रकाशन करनो, वानिकी संग्रहालय री स्थापना एर मॉडल तैयार करनो, किसान प्रशिक्षण आयोजित करके वानिकी अनुसंधान रो विस्तार करनो। और अब इनरो तीसरो प्रभाग इन प्रकार है, वन अनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन प्रभाग। इनरा उद्देश्य इन प्रकार है, वन उत्पादकता बढ़ाने रे लिए अनुवांशिक श्रोता रो उपयोग और संरक्षण करनो, आगामी वृक्ष प्रजनन कार्य रे लिए अनुवांशिक विविधता रो संरक्षण करनो, भौगोलिक विविधता वाले वृक्षारोपण स्थल रे अनुरूप चयन करनो, रोपण सामग्री में सुधार करनो, अनुसंधान री जैव तकनीकी रो उपयोग कर स्थानीय प्रजातियां रे वैकल्पिक एवं बहु मात्रा में उत्पादन किए जानवासी तकनीकी रो विकास करनो, अनुवांशिक की इंजीनियरिंग द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले वृक्ष तैयार करने री तकनीक भी विकसित करनी।
1: शुष्क वन अनुसंधान संस्थान सेवा कार्य, इस बारे में अभी जानकारी दे रही थी श्रीमती मुक्ता जैन। कार्यक्रम था खेती की बातें। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक भजन।

अभी आप सुन रहे थे लोक भजन। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार होंगे।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डाक्टर् गणेश हेगडे. अथ वार्ताः. प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्यारभ्य यूएई नेदरलैंड स्वीडन नार्वे इटलीति देशानां षड् दिवसीय यात्रायां भविष्यति. पञ्चदेशयात्रायाः प्रथमपदे अद्य श्रीमोदी यूएई देशं गमिष्यति, यत्र सः राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान इत्यनेन सह मिलिष्यति. द्विपक्षीय विषयेषु विशेषतः

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। एफएम पर आप हमें सुन रहे हैं 101.6 मेगा हर्ट्स पर। सवेरे के 7 बजे हैं, सुनते हैं कार्यक्रम सुप्रभात।

सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा घर और घर में बसे लोग हमारे जीवन को खास बनाते हैं। परिवार वो अनमोल धरोहर है जहां प्रेम, विश्वास, संस्कार और अपनापन एक साथ खिलते हैं। घर केवल दीवारों और छत का नाम नहीं होता, घर तो उन रिश्तों से बनता है जिसमें होता है अपनापन, स्नेह, प्यार और विश्वास।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: श्रोताओं, हम बात कर ही रहे थे घर परिवार की। आज है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। परिवार की महत्ता और उसके मूल्य और समाज में उसकी भूमिका को समझने का दिन। परिवार एक ऐसा शब्द जिसमें प्रेम है, अपनापन है, त्याग है, संस्कार है और जीवन की सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। जब दुनिया की भीड़ में इंसान स्वयं को अकेला महसूस करता है ना श्रोताओं, तब परिवार ही वो जगह होती है जहां उसे स्नेह मिलता है, विश्वास मिलता है और सहारा मिलता है। इसीलिए जीवन में से थोड़ा समय अपने परिवार के लिए अवश्य निकालें। सब साथ बैठें, संवाद करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और रिश्तों की गर्माहट को बनाए रखें। जी हां श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर आवश्यकता इस बात की है कि हम ये समझें कि परिवार को समय देंगे, रिश्तों को सम्मान देंगे और प्रेम, विश्वास और संस्कारों की इस अमूल्य धरोहर को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे। आवश्यकता है अपनों को समझने की, अपनों को संभालने की।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: श्रोताओं, हिंदी साहित्य को नई दिशा, नई चेतना और नई भाषा शैली देने वाली महान साहित्यकार, निबंधकार, संपादक और युग प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आज जयंती है। आचार्य द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा को केवल साहित्य की भाषा नहीं बल्कि समाज जागरण का माध्यम बनाया। उन्होंने प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती के माध्यम से हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की और अनेक साहित्यकारों को प्रेरित किया। हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग उनके अमूल्य योगदान का प्रमाण है। श्रोताओं, उनकी लेखनी में राष्ट्रप्रेम, समाज सुधार, नैतिकता और जन जागरण की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। शब्दों को संस्कार मिले, भाषा को सम्मान मिले, द्विवेदी जी की लेखनी से हिंदी को नव प्राण मिले। आज उनके जयंती पर हम ये संकल्प ले सकते हैं श्रोताओं कि हिंदी भाषा की गरिमा, शुद्धता और साहित्यिक परंपरा को हम सदा आगे बढ़ाएंगे।

श्रोताओं, जीवन में सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि हमारी कुछ ऐसी आदतें जो हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती है, जैसे कि समय का पालन करना, नियमित अध्ययन करना, बड़ों का सम्मान करना, अनुशासन, सकारात्मक सोच और मेहनत। जब ये सभी अच्छी आदतें एक साथ एकत्रित होती है तो सफल जीवन का मूल मंत्र बनती है। कहा भी गया है श्रोताओं कि बुरी आदतें जीवन को भटका देती है, जबकि अच्छी आदतें हमारे व्यक्तित्व को निखार देती हैं। जब भी कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसके पीछे उसके साथ उसका अनुशासन होता है, उसकी अच्छी आदतें होती है। जो व्यक्ति छोटी छोटी अच्छी आदतों को, अच्छी बातों को अपने जीवन में अपनाता है, वही आगे चलकर बड़ा और सफल इंसान बनता है। श्रोताओं, हमारी अच्छी आदतें हमें केवल सफलता ही नहीं देती, बल्कि समाज में सम्मान और आत्मविश्वास भी दिलाती है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अभी से अपने छोटे बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करें।

अच्छी बातें उन्हें सिखाएं और बुरी बातों से उन्हें दूर रखें। क्योंकि कहते हैं ना श्रोताओं कि निज पर शासन फिर अनुशासन। अगर हमें कुछ अच्छा करते हुए बच्चे देखेंगे तो निश्चित रूप से वो भी उसको फॉलो करेंगे। तो श्रोताओं, आवश्यकता इस बात की है कि हर दिन एक नई अच्छी आदत को हम अपनाएं, अपने बच्चों को उसे अपनाने के लिए प्रेरित करें, ताकि जीवन को सकारात्मक बनाया जा सके, अनुशासित बनाया जा सके और सफल बनाया जा सके।

आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। सवेरे के 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हरिहरन और घनश्याम वासवानी के युगल स्वर में है। फिल्म का नाम है हम साथ साथ हैं।

0: bum, chicka chicka bum, chicka bum bum bum, chicka chicka bum.
1: मोहम्मद अजीज, उदित नारायण और सुदेश भोसले की युगल स्वरों में हम फिल्म का ये गीत सुनिए।
2: सरे, सरे।

कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन के युगल स्वर में ये गीत था फिल्म क्या कहना का। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए शंकर एहसान रॉय के स्वर में। फिल्म का नाम है हे बेबी।

अलका याग्निक कुमार सानू और साथियों के युगल स्वरों से सजा ये गीत था फिल्म हम हैं राही प्यार के।

फिल्म संगीत आप हमारी इसी सभा में सवेरे 10 बजे सुनेंगे। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख

0: एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सोवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
3: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है।

0: साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पुद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
4: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वह यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रन।
2: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5,00,000 घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आकडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज

0: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशू खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशू को ताउलू और सांडा में दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: फरत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी SIR, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने CUET UG में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, NTA का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशू में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. Prime Minister says BRICS under India's chairmanship will work together to build a more inclusive world order. Oil marketing companies hike petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. ED arrests Kolkata Police DCP Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. And in Wushu, Aparna Dahiya clinches gold medal in women's 52 kg category in Sanda World Cup in Macau. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership, underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of the engagement. Briefing media prior to the visit, Additional Secretary West in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said, energy remains a key pillar of the relationship. He noted

0: prominent citizens of the city participated in the event. The walkathon began at around 7 this morning from the Akashvani building in Civil Lines. It passed through various routes in the city and concluded at the Akashvani premises. India Meteorological Department has forecast heavy rainfall with thunderstorms over Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Mahe and South Interior Karnataka today. In Kerala, Met Department has issued a yellow alert indicating isolated heavy rain in 6 of the 14 districts. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
1: Thank you, Saira. Papers have widely noticed Delhi Chief Minister Rekha Gupta's push for using the metro after PM's appeal. The Pioneer writes, Delhi pushes for metro, work from home to cut fuel use. Congress Kerala suspense ends, Satheesan pips Venugopalan CM race, writes the Tribune. India voices concerns over West Asia crisis at BRICS meeting, writes the Statesman, while the Tribune writes, Indian vessels sunk off Oman as Delhi hosts Iran minister for BRICS meeting. Trump-Xi hold talks in biggest summit ever, writes the Asian Age. All newspapers have carried pictures of a man flung into air 50 feet above ground after heavy rains and storm hit Uttar Pradesh. The Statesman writes, thunderstorms, hailstorms, pummel UP, at least 104 dead. The Hindu, in its editorial titled Cooling Doctrine, writes that access to safe indoor temperatures must be a public health entitlement. What India needs is something larger and more ambitious, a national cooling doctrine, a scalable framework that treats sustained access to safe indoor temperatures as a public health entitlement to be guaranteed. And finally, the Tribune writes about 61-year-old Narinder Kaur, who scored 77% in the Punjab School Education Board Class 10 open school examination after she was encouraged by her sons. The newspaper writes, off studies for 45 years, Punjab woman scores 77%. And with that, it's back to you, Saira.
0: Thanks, Sarabjit. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi to embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. Prime Minister says BRICS under India's chairmanship will work together to build a more inclusive world order. Oil marketing companies hike petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. ED arrests Kolkata Police DCP Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. And in Wushu, Aparna Dahiya clinches gold in women's 52 kg category in Santa World Cup in Macau. That's all in morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढूला मारू चैनल है। सवेरे के 8:30 हुए हैं। सौरभ कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कहानी हौसला। कहानीकार हैं श्री सुधीर केवलिया।
3: समुद्र तट पर दूर दूर फैले नारियल के पेड़, मिट्टी पर बने पैरों के निशान और बच्चों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को मिटाती लहरें, दूर क्षितिज पर एक दूसरे से मिलते हुए से दिखते आकाश और पानी जीवन में उल्लास भर जाते थे। वहीं समुद्र में खड़े जहाज़ों से यात्रियों को सवार होने के लिए कहती गूंजती हूटर की आवाज़ें, उड़ते हुए पक्षी, तेज लहरों का तट से टकराकर भंवर बनाना और पूरे आकाश को सुबह धीरे धीरे अपने रंग में रंगती लालिमा वाले दृश्य सैर करने वाले लोगों को रोमांचित कर देते थे। आज कई दिनों बाद सूर्योदय से बहुत पहले सैर के लिए आया समीर पेड़ का सहारा लिए आँखें मूंदे बैठा मानो यादों में खोया था, लेकिन चेहरे के भाव परिवर्तन उसके उलझन और दुविधा के कारण घोर निराशा से गिराई होने का आभास दे रहे थे। समीर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एग्जीक्यूटिव था। अभी कुछ समय पहले तक उसकी कंपनी और इस क्षेत्र को सुरक्षित भविष्य और चमकती संभावना का क्षेत्र माना जाता था। वह अपना कार्य पूरी ईमानदारी और मन लगाकर करता था। जटिल प्रकृति के कार्यों का भी धैर्यता और गंभीरतापूर्वक कर तथा अपनी उत्कृष्टता से सफलता प्राप्त कर वह आज इस मुकाम पर पहुँचा था। काम की अधिकता न तो उसे विचलित करती थी और न ही कभी थकाती थी, लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर में कंपनियों के घने जंगल में आर्थिक मंदी के कारण तीव्र गति से कर्मचारियों की छटनी की हवाएं चलने लगी थी। इन हवाओं की आवाज़ शायद उसे सुनाई नहीं दी थी, उसे एहसास ही नहीं था कि ये हवाएं उसे भी उखाड़ सकती है। इन हवाओं ने तूफान का रूप लेकर न जाने कितनों की जड़ें हिला दी थी। उसके कंपनी प्रबंधन के पास भी आर्थिक मंदी के दौर में मुनाफा कमाना तो दूर, घाटे से उभरना भी चुनौती बना हुआ था। घाटे को देखते हुए उनके पास कर्मचारियों की छटनी

के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। अपने साथियों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा और पेशेवर होड़ में उसके खिलाफ हवाएं गर्म होना कब शुरू हुई उसे पता ही नहीं चला। बड़े पैमाने पर छटनी में उसका भी नाम आ गया था। कुछ समय में ही सारा मंजर बदल गया था। आज के दौर में उसके सामने नए सिरे से नौकरी ढूंढने की चुनौती सामने खड़ी थी। यह इतना आसान नहीं था। जीवन के इस अहम मोड़ पर आगे की राह खुद चुनने में चारों तरफ निगाह डालने पर उसे कोई दोस्त नज़र नहीं आ रहा था। वह नहीं जानता था कि समय उसके साथ कैसा खेल खेल रहा था। वह नौकरी से निकाले जाने का बोझ लिए हुए भीतर और बाहर से अपने अंदर लाचारी और हताशा का अनुभव कर रहा था। मस्तिष्क में आते और गुजरते कई तरह के भावों के जलजलों के साथ उसने जीवन में तनाव की इतनी गहराई को कभी महसूस नहीं किया था। उसे लगने लगा कि उसकी तकदीर ही उससे रूठ गई है और भविष्य को लेकर जलाए गए दीपक एक साथ बुझ गए हैं। उसे अपने आसपास नजर आता अंधेरा उसके दिल और दिमाग में भविष्य को लेकर आशंका पैदा किए जा रहा था। नौकरी को लेकर इस प्रतिकूल बदलाव ने उसमें कई तरह के मानसिक अवसादों को जन्म दे दिया था। वह अपने को इस बदलाव के लिए तैयार नहीं कर पाने के कारण जीवन में आई इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहा था। जो ख्वाहिशें और ख्वाब लेकर वह इस महानगर में आया था और जिनका पूरा होने पर वह परिवार के साथ जीवन सुख सुविधाओं तथा ऐशो आराम के साथ व्यतीत कर सकता था, नौकरी नहीं रहने से उसे टूटते हुए नजर आ रहे थे। उसे लगने लगा था कि अब जीवन भर भी शायद इन्हें पूरा नहीं कर सकेगा। उस जैसे अनेक गुमनाम लोगों की मेहनत और पसीने से जो रोजगार के लिए अपने घरों को छोड़कर हजारों मील दूर यहाँ आए थे, गगनचुंबी इमारतों वाली ये कंपनियाँ इन ऊंचाइयों पर पहुंची थी। लेकिन आज उसे सहारा देने के लिए कोई तैयार नहीं था। आज उसे सारे धुंधले आर्थिक समीकरण यथार्थ के धरातल पर साफ नजर आ रहे थे। जब तक दूसरी नौकरी नहीं मिलती तब तक वह रोजाना की जिंदगी में अपनी जिम्मेवारियों को कैसे निभाएगा। उसे अपने और घर परिवार से जुड़े तमाम खर्चे याद आने लगे थे। नई नौकरी कब और कहाँ मिलेगी, वहाँ की परिस्थितियाँ कैसे होंगी, जैसे सवालों ने उसे मानसिक उलझन और दुविधा में लाकर पटक दिया था, जिसकी समय के साथ जड़ें गहरी होती जा रही थी। समय के साथ स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने से वह परिवार में कटाकटा सा रहने लगा था। पिछले दिनों कई कंपनियों के इंटरव्यू देने के बावजूद सफलता उसके हाथ नहीं लग रही थी। कल भी वह एक कंपनी का इंटरव्यू देकर आया था जिसके परिणाम के प्रति वह उत्साहित नहीं था। वहाँ बैठे लोग तमाशबीन और उनके चेहरे मुखौटे नजर आ रहे थे, जिनके पीछे उसके प्रति नकारात्मक विचार छिपे थे। वह यह धारणा बना चुका था कि इसमें भी उसका चयन नहीं होगा। उसे लगने लगा कि जीवन में आनंद नहीं रहा और ज़िंदगी बोझिल होती जा रही है। पिछले दिनों के घटनाचक्र में खोया हुआ समीर अचानक जानी पहचानी आवाज़ सुनकर वर्तमान में आया तो देखा तो उसके पास सामने वाली बिल्डिंग में रहने वाले सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी संजय खड़े थे। उम्र में काफ़ी बड़ा होने के बावजूद संजय पिछले कई वर्षों से उसके साथ सैर पर आया करते और सुख दुख की बातें भी किया करते थे। संजय ने जब कई दिनों से सैर पर ना आने और लटके हुए चेहरे को देखते हुए उदासी का कारण पूछा तो उसके चेहरे पर आए भाव संयत न हो सके। भावना का गर्म लावा उसकी आंखों से आंसू बनकर छलक आया। उसका गला रुंध गया। वह कुछ कहना चाह रहा था पर कह नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद उसकी पूरी मनोवृत्ति सुनकर संजय ने कहा, यह तो कोई समस्या ही नहीं है, समस्या यह है कि तुम इसके समाधान को ढूंढ ही नहीं पा रहे हो। संजय ने समुद्र में खड़े जहाज के डेक की रेलिंग पर बैठे दो छोटे पक्षी और उन्हें उड़ना सिखा रही बड़े बड़े डैने फैलाए उनकी माँ की ओर इशारा करते हुए कहा, समीर तुम देख रहे हो ना किस तरह इन तेज हवाओं में भी पक्षी के बच्चे अपना संतुलन बना वहाँ बैठे हैं। वे उड़ने का प्रयास करते हैं परंतु गिर जाते हैं, फिर रेलिंग पर जाकर बैठ जाते हैं। तेज हवाओं में ज़्यादा नहीं उड़ पाएंगे, ये हवाएँ उनके लिए खतरे का सबब भी बन सकती हैं। पहले बच्चे अंडों में बाद में घोंसले में आराम से रह रहे थे, परंतु पहले उन्हें अंडों से और बाद में घोंसले से बेदखल कर दिया। यही प्रकृति का नियम है। यहाँ सबको एक स्थिति से दूसरी स्थिति के लिए बेदखल किया जाता है। जीवन में कोई भी एक ही स्थिति में लंबे समय तक नहीं रह सकता, उससे इससे हटकर नई परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। जो लोग इसे एक अवसर की तरह लेते हैं परिस्थितियाँ उनके लिए बहुत बेहतर होती चली जाती हैं। इन अन्य पक्षियों को देखो, इनकी माँ सारी चिंताएँ छोड़कर पूरे विश्वास के साथ उनको यहाँ लेकर आई है, इनको उड़ने का हौसला दे रही है। वो जानती है कि जब तेज़ हवाओं में भी अपनी क्षमताओं को पहचान कर उड़ने लगेंगे तो आसमान छू ही लेंगे। इसलिए कठिनाइयों से घबरा कर तुम्हें प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए। संयम से तुम अपनी क्षमताओं का सही आकलन कर उनका विकास करने और भविष्य के प्रति विश्वास रखने की ज़रूरत है। जीवन मिली संभावना को कामयाबी में बदलने के लिए प्रयास करते रहना जरूरी है, क्योंकि जिसे जूझना आता है वह हार नहीं मानता और अनंत संभावना के आकाश में उड़ान भरने लगता है। जब तक तुम विजयी होने के बारे में सोचोगे ही नहीं तो विजय कैसे प्राप्त करोगे। जीवन में उतार चढ़ाव के दौर में धैर्य रखना होता है, वरना धैर्य टूटने पर आग

0: की राह में अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। जीवन के तट पर आदमी के बनाए सपनों के गरुंधों को समय की लहरें कभी कभी तोड़ देती हैं, और उसे टूटे हुए गरुंधों की यादों को मन में संजोकर ही आगे बढ़ना होता है। हमेशा सपने पूरे नहीं होते, हम सोचते क्या है और होता क्या है। संजय की बातें सुनकर उसे लगा कि मानो वह उलझनपूर्ण स्थिति से उबर गया है। समीर की आंखों में उल्लास और विश्वास के सैकड़ों दिए एक साथ जल उठे थे। आज सूर्योदय और संजय से मिलना उसकी ज़िंदगी की शुरुआत की सुबह थी। सूर्य का उजाला धीरे धीरे पूरे आकाश में पसर रहा था। दूर तक धुंधलाती तटरेखा और ऊंचे नारियल के पेड़ से साफ नजर आने लगे थे। भविष्य को लेकर उसके दिल और दिमाग में उभरे आशंका के बादलों को सूर्य की किरणें चीर कर उम्मीद और उल्लास पैदा कर रही थी। उसके द्वारा आशंकाओं के जालों में उलझी हुई उम्मीद की बूंदें स्वतंत्र हो चुकी थी। समीर के चेहरे से विश्वास और खुशी साफ झलक रहे थे। वह अनंत संभावना से भरे आकाश में उड़ने के लिए तैयार था।
1: सौरभ कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कहानी हौसला। कहानीकार थे श्री सुधीर केवलिया। हम आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से बोल रही हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत कलाकार हैं पंकज उदास।

0: सुगम संगीत के कलाकार थे पंकज उदास। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। कुछ पलों में समाचार होंगे।
1: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर। पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी पहुंचेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। प्रदेश में भूजल स्तर और जल संचयन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए 25 मई से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में कई स्थानों पर तेज रफ्तार हवाओं के साथ आंधी बारिश का दौर। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा करेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री श्री मोदी आज अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए हो रही है। भारत का यूएई को निर्यात 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। इसके साथ ही यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस साल भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देश सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्था

0: के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक की। श्री प्रधान के आवास पर हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में उच्च शिक्षा सचिव, विद्यालय शिक्षा सचिव, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक, सीबीएसई के अध्यक्ष और केंद्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय विद्यालय समिति के आयुक्तों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की दसवीं कक्षा की दूसरी बार की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। 21 मई तक ये प्रदेश के 90 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होंगी। इसके लिए राज्य के करीब 1300 स्कूलों में 21,000 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं। परीक्षा का आयोजन दो पारियों में किया जा रहा है। परीक्षा केंद्रों पर नकल की रोकथाम के लिए त्रिस्तरीय उड़न दस्तों का गठन किया गया है। वहीं आरबीएसई की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं भी कल से शुरू हो गई। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित अन्य शहरों में भी ईंधन के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल 3.25 रुपए और डीजल करीब 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्र प्रथम के संकल्प को आत्मसात करते हुए प्रदेश में ईंधन की बचत और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की कवायद शुरू की गई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने काफिलों में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय किया है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने एस्कोर्ट सुरक्षा छोड़कर ईंधन बचाने का संदेश दिया। श्री चौधरी ने कहा कि ईंधन की बचत आज के समय की जरूरत है, हर देशवासी को इसमें अपनी भागीदारी देनी चाहिए।
1: ईंधन को बचाना है, ये हर भारतीय को ये सोचना होगा। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं राष्ट्रहित के लिए कहते हैं, आज मैंने तय किया है कि जो एस्कॉर्ट गाड़ी एक चलती है वो बंद, सिर्फ जो मेरी गाड़ी है ये गाड़ी जो मुझे मिली है उस गाड़ी का मैं उपयोग करूँगा और एस्कॉर्ट गाड़ी उसका उपयोग नहीं करेंगे ताकि ईंधन की बचत हो।
0: राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक सीजी संजीव प्रकाश शर्मा ने भी अपने वाहन के साथ चलने वाली एस्कॉर्ट कार को छोड़ दिया है। इसी तरह निचली अदालतों में कई मजिस्ट्रेट कार पुलिंग कर कोर्ट पहुंच रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में भूजल स्तर और जल संचयन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए 25 मई गंगा दशमी से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा। प्रदेश भर में ये अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक चलेगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में कल इस बारे में अहम बैठक हुई। उन्होंने कहा कि अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए हर जिले में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण का काम मिशन मोड पर किया जाएगा। अभियान के दौरान श्रमदान, स्वच्छता गतिविधियां, पौधरोपण, जल स्रोतों की सफाई, प्रभात फेरियां और जागरूकता रैलियां आयोजित होंगी। उन्होंने बताया कि ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के राज्य स्तरीय समापन समारोह के साथ ही वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का राज्य स्तरीय शुभारंभ होगा। मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को जल जीवन मिशन 2.0 के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और प्रसूताओं तथा उनके परिजनों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने पिछले दिनों हुई प्रसूताओं की मौत और तबीयत बिगड़ने की घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच करवाई जा रही है।

0: बताया कि दिल्ली एम्स की टीम भी आज कोटा में इस प्रकरण की जांच करेगी। अंतिम रिपोर्ट मिलने पर ही घटना के सही कारणों तक पहुंचा जा सकेगा।
1: जो भी है, चाहे दवाइयों में है, चाहे साफ सफाई में, जो भी इसका तो कौन मालूम करेंगे, गंभीर विषय है और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और अगर इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल है, मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम उस पर करेंगे और जो भी दोषी है उसके अगेंस्ट केस लगाएगा। जो डेथ हुई है उनके परिवार को मेरी तरफ से हार्टफेल्ट कंडोलेंस देना चाहता हूँ कि बहुत दुखद घटनाएं हुई और हम सब इसमें हमारे खुद की आंखों में आंसू लगाए।
0: पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में कई स्थानों पर आंधी बारिश का दौर बना हुआ है। इससे तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट आई है। हालांकि गर्मी का असर बरकरार है। कल हनुमानगढ़, फलौदी, बीकानेर, बारा और राजधानी जयपुर सहित कई शहरों में हल्की बारिश हुई। जयपुर में भीषण गर्मी के बाद शाम को तेज रफ्तार हवाओं और गरज के साथ रुक रुक कर करीब 2-3 घंटे बरसात का दौर चला। कोटपुतली बहरोड में देर शाम चली धूल भरी आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई जगह बिजली के खंभे और पेड़ गिरने से यातायात बाधित हुआ। उधर पश्चिमी राजस्थान में प्रचंड गर्मी का प्रकोप है। प्रशासन की ओर से पानी की फुहारों से लोगों को गर्मी से राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। फलौदी, बाड़मेर और जैसलमेर में दिन का पारा 45 डिग्री से अधिक रहा। वहीं श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया। चित्तौड़गढ़ और जालौर में रात का तापमान 30 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज शेखावाटी क्षेत्र, बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं कहीं गरज के साथ बूंदाबांदी के आसार जताए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर। पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी पहुंचेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। प्रदेश में भूजल स्तर और जल संचयन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए 25 मई से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में कई स्थानों पर तेज रफ्तार हवाओं के साथ आंधी बारिश का दौर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सवेरे के 9:10 हुए हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनिए सोहनी देवी का गाया ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे सोनी देवी का गाया ये लोकगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं गांधी चर्चा। आज का विषय है आगामी आंध्र यात्रा। वाचक स्वर श्री प्रमोद कुमार शर्मा का, प्रस्तुति श्री रेवंत राम अलेगा की, कार्यक्रम संयोजन श्री अमित सिंह का।

गांधी चर्चा के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज के अंक में हम लेकर आए हैं पूज्य बापू का एक लेख आगामी आंध्र यात्रा, जो कि यंग इंडिया अखबार में 7 मार्च 1929 को प्रकाशित हुआ था। पूज्य बापू लिखते हैं, मेरे काबू के बाहर की परिस्थितियों के कारण आंध्र देश के मित्रों को जो बार बार निराश होना पड़ा है, आशा है इसके लिए वे मुझे क्षमा कर देंगे। अगर हो सकता तो मैं खुशी खुशी इससे पहले ही आंध्र देश की यात्रा कर लेता। अब मैं अगले महीने की शुरुआत में आंध्र पहुंचने की आशा रखता हूं।

से जो कार्यक्रम तय हो चुका है वो 1 अप्रैल को काठियावाड़ में समाप्त हो जाएगा। मैं 1 या 2 दिन उद्योग मंदिर में ठहरूंगा और शीघ्र ही वहां सांद्र के लिए चल पड़ूंगा। इस हिसाब से मैं करीब 5 या 6 अप्रैल को मुंबई से आंध्र के लिए रवाना हो जाऊंगा। 14 मई को इलाहाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक है जिसमें मेरा हाजिर रहना बहुत ज़रूरी है। इस कारण आंध्र में मुझे 1 महीने से कुछ ही ज़्यादा समय मिलेगा। मैं चाहता तो था कि मुझे इस काम के लिए अधिक समय मिलता, लेकिन लाचार हूँ। फिर भी सुंदर व्यवस्था के जरिए 1 महीने के समय में भी बहुत कुछ काम किया जा सकता है। मेरी यात्रा का खास हेतु तो खादी ही रहेगा, लेकिन मैं लालाजी स्मारक के लिए मिलने वाली रकम का भी स्वागत करूंगा और इसके लिए चंदे की मांग करूंगा। इस भीख मांगने के काम के अलावा मैं कांग्रेस के रचनात्मक प्रस्ताव के सिलसिले में कुछ सक्रिय प्रचार करने का भी इरादा रखता हूँ, खासकर उस बहिष्कार योजना के प्रचार का जो कार्य समिति ने तैयार की है। अगर आंध्र देश बहिष्कार आंदोलन में पूरे उत्साह के साथ हाथ नहीं बटाएगा तो मुझे खेद और आश्चर्य होगा। आंध्रवासियों को सुंदर खादियों की कोई शिकायत नहीं है, उनमें मोटी या महीन खादी तैयार करने की अनंत शक्ति भरी पड़ी है। वे बहुत सा कपास पैदा करते हैं, उनके पास योग्य कार्यकर्ता भी हैं और देशभक्ति की लगन में वे किसी भी प्रांत से पीछे नहीं हैं। बात केवल इतनी है कि उनमें नेता तो जरूर से ज़्यादा हैं, लेकिन अनुयायी मात्र इन्हें गिने हैं। उनमें बहुमुखी प्रतिभा होने से आपस में छोटी मोटी ईर्ष्या और कलह उत्पन्न हो गया है। क्या ये आशा करना बहुत ज़्यादा होगा कि मेरे आंध्र देश पहुँचने के पहले ही वे अपनी अपनी सामर्थ्य भर कोशिश करके एकता स्थापित कर चुके होंगे और नेता बनने का दावा करने के बजाय नम्रतापूर्वक अनुयायी बनने की तैयारी कर चुके होंगे। वर्मा की भांति ही कार्य समिति की ओर से मुझे सूचना मिली कि मैं आंध्र प्रदेश और उत्कल प्रांतों की प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों के निरीक्षण करूं और उनके हिसाब किताब की जांच पड़ताल करूं। मुझे आशा है कि मैंने वर्मा के बारे में जो कुछ कहा उसे दोनों कमेटियों के अध्यक्ष, मंत्री और सदस्यगण याद रखेंगे और जब मैं आंध्र पहुँचूँगा तो हर चीज़ तैयार रखेंगे। उत्कल के मंत्री कृपा करके मुझे अपने तमाम कागजात साथ लेकर आंध्र में किसी भी जगह जो उन्हें विशेष सुविधाजनक मालूम पड़े मिल लें। एक बात थैलियां भेंट करने के बारे में भी कह देता हूं। अभी से मेरे पास इस आशय के प्रस्ताव आ रहे हैं कि जो थैलियां मुझे दी जाएं उन पर उनका हेतु भी लिखा रहना चाहिए। मैं कार्यकर्ताओं की इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी दिए देता हूं। वे स्थानीय काम के लिए मेरे नाम से लाभ न उठाए। स्थानीय काम का आधार उनका अपना गुणावगुण होना चाहिए। स्थानीय कार्यकर्ताओं का चरित्र, उनकी साख, उनकी योग्यता ऐसी होनी चाहिए कि वे स्थानीय काम के लिए जितनी आर्थिक सहायता की जरूरत हो स्वयं ही जुटा सकें। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई प्रांत खादी का उत्पादन केंद्र है तो वहाँ के चंदे का अधिकांश मैं उसी प्रांत के खादी कार्यक्रम में खर्च करता हूँ। लेकिन जहाँ जैसे लंका बर्मा में खादी का उत्पादन नहीं होता, वहाँ का सारा चंदा उन प्रांतों के बाहर ही खर्च होना चाहिए। आंध्र देश के बारे में तो वस्तु स्थिति ये है कि जब मैंने शुरू में वहाँ जाने का निश्चय किया था उसमें मेरी यात्रा का हेतु केवल आंध्र के खादी कार्य के लिए धन संग्रह करने का था। वही निर्णय इस समय भी कायम है। हाँ, इसमें शक नहीं कि चंदे की रकम का कुछ भाग केंद्रीय कार्यालय की व्यवस्था में खर्च किया जाएगा। अतः मैं चाहता हूँ कि कार्यकर्तागण कृपा करके किसी विशेष हेतु से तब तक कोई थैली अर्पण न करें जब तक उस संबंध में उससे राय न ले लें। इस तरह के तमाम प्रस्ताव देशभक्त श्री वेंकट पैया की जरिए उनकी सिफारिश के साथ आने चाहिए, क्योंकि आंध्र यात्रा के कार्यक्रम का प्रबंध उन्हीं के जिम्मे है। आखिरी बात यह है कि उत्साही लोग मुझ पर दया करें तो अच्छा ही हो, चाहे वे मेरे शरीर को ठीक हालत में रखने के भार को पूरा भी न उठाएं तो भी कम से कम उन्हें मेरा हाथ जरूर बटाना चाहिए। अक्सर मुझसे कहा जाता है कि अपनी देह की सार संभाल करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ये तो राष्ट्र की धरोहर है, लेकिन बात ऐसी है इसका मुझे पूरा भरोसा नहीं होता। यहाँ मैं उन्हें थोड़ी सी न करने वाली बातों की सूचना दिए देता हूँ। मेरे शरीर से 6 घंटे से ज़्यादा काम न लें, सभाओं में और जगह शोर न मचाएं, जुलूस न निकालें, दिखावटी वस्तुओं के पीछे न दौड़ें, एक दिन में बहुत सारे कार्यक्रम निश्चित न करें। मेरे शरीर को उन जगहों पर

न ले जाया जाए जहाँ न तो द्रव्य मिलने का प्रबंध हो, न कोई दूसरा ऐसा काम हो जिसका कि यात्रा के हेतु से कोई संबंध हो। किसी व्यक्ति की सनक अथवा किसी के स्वाभिमान की तृप्ति के लिए मेरे शरीर को कहीं मत ले जाइए। शरीर को बहुत जगहों पर मत ले जाइए। शरीर केवल मिट्टी का लौंदा समझने की भूल कभी न करिए। इसमें शक नहीं कि वो मिट्टी का लौंदा है, फिर भी उसमें एक ऐसा छोटा सा चेतनामय प्राणी निवास करता है जो शरीर रूपी पार्थिव ढांचे के साथ की जाने वाली हर चीज़ को बारीकी से देखता रहता है। श्रोताओं, ये था यंग इंडिया अखबार में 7 मार्च 1929 को प्रकाशित बापू का लेख। और आइए सुनते हैं एक भक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांधी चर्चा। आज का विषय था आगामी आंध्र यात्रा। वाचक स्वर श्री प्रमोद कुमार शर्मा का, प्रस्तुति श्री रेवंतराम लेघा की, कार्यक्रम संयोजन श्री अमित सिंह का था। मीडियम वेव 215.05 मीटर पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश
3: और मैं अजीत। नमस्कार, राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
3: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
2: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं,
3: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
2: गांव ओगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
3: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
2: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
3: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
2: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
3: बिल्कुल,
2: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
2: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए तो ये छुट्टियाँ जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
3: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो विमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
2: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
3: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
2: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ। कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
3: जी, और हाँ श्रोताओं, आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहां NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
2: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या

0: कहानी पढ़ें तो बोल बोलकर यानी वाचन के साथ पढ़ें।
1: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
0: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है,
1: जैसे
0: जैसे प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
1: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियां खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
0: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियां भी कर सकते हैं,
1: जैसे
0: जैसे कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
1: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
0: तो श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
1: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है, और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
2: मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं। थाथू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाथा के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
3: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
2: थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब

0: अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथु का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थाथु अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थाथु, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथु मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
1: अब सो जाओ।
0: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथु से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथु और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
3: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
2: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
1: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
2: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
3: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या, बॉल शुरू हो गई?
4: हाँ

0: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
1: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जुगिंदर सिंह 1/6 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
0: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
1: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
0: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
1: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
2: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
3: जी सुबेदार साहब।
2: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
3: जी सुबेदार साहब।
2: बोले सोनिहाल।
3: सत श्री अकाल।
0: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
4: तेजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
5: साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास

0: गोलियां कम थीं और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के तहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
2: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थीं और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
0: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
1: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह और सुनते हैं कार्यक्रम लिटिल बुली।
4: Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. Although he wasn't very big, he was strong, and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. What he loved to do most was to pinch. He could make a big bruise appear in half a second. Another trick he played was pricking people with a pin.
5: So you can guess how all the children hated him. They tried pinching him back, but that was no good, because he could

0: Jollyville, Shant Pinch और Prick Anywhere।
1: तो श्रोताओ, अब हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर होता है समाप्त। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक आइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: मैं आकाशवाणी हूँ। 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: रंग प्रीत लगाई सजना सजना।
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

0: है तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।
1: तुझको आशिकी वाणी का है आसरा, मन्ना रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अपने प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है पर जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: को पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेना के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। एफएम पर आप हमें सुन रहे हैं 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 11 बजे हैं, सुनिए फिल्म संगीत।

ज्वेल थिफ फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाजों में। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोल अमारू चैनल पर। कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं भूले बिसरे गीत।

शहनाई फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, स्वर था मोहम्मद रफी का। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। फिल्म का नाम है नूरी।

फिल्म सत्ते पे सत्ता का गीत अभी आपने सुना, किशोर कुमार, आर डी बर्मन, भूपिंदर और सपन चक्रवर्ती की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है मन, स्वर है उदित नारायण और अलका याग्निक के।

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पर रहते हैं लेकिन करीब।

फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, स्वर थे सोनू निगम और साधना सरगम के। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल पर। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सानू और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत के कार्यक्रम में भूले बिसरे गीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत के कार्यक्रम में भूले बिसरे गीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 12 बजने को हैं। प्रस्तुत है हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने त्वरित एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को भी परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्चे से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्चे की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की है। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की कीमत 79.09 रुपये, गाजियाबाद और नोएडा में 87.70 रुपये और गुरुग्राम में इसकी दर 84.12 रुपये हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों

0: तथा सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 75,481 पर, जबकि निफ्टी 29 अंक की वृद्धि के साथ 23,719 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

शाम 6:40 पर आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम जिले की चिट्ठी और उर्दू कार्यक्रम गुलिस्तां का प्रसारण होगा रात्रि 10 बजे हमारे जयपुर केंद्र से। दिन के 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे मीडिया और रेडियो में महिलाओं के लिए अवसर, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, परिवार की धुरी नारी, कम समय में पौष्टिक नाश्ता, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जयंती। कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ताकार श्रीमती अर्निका साहू की वार्ता, विषय आधुनिक समाज में पारिवारिक मूल्यों का महत्व। कार्यक्रम में रसोई से और ब्यूटी टिप्स के साथ आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

शाम के 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा आज की बचत कल की आय। लघु जानकारी के विषय रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जयंती, जेओ प्रौद्योगिकी, पीएम वाणी योजना। कार्यक्रम में रोजगार समाचार और क्विज टाइम के साथ आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण जगत। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे स्मार्ट कृषि, जल संचयन, आधुनिक और परंपरागत प्रयास, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, मोटे अनाजों से रोगी निरोगी काया। कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोकगीत।

सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:45 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर।

अब से थोड़ी ही देर में यानी कि 12:10 पर आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत, और फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12:40 पर, दोपहर 2:30 पर, शाम 6:05 पर, रात्रि 8 बजे, रात्रि 9:15 पर।

यह था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत।

जनाब अब्दुल हमीद आदम साहब का एक मशहूर कता पेश कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत कता है जिसमें आदम साहब ने रंग, खुशबू और नाज की एक खूबसूरत तस्वीर पेश की है। इसी अंदाज की एक नई गज़ल, एक ताज़ा तरीन गज़ल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहले कतार से

अभी आप सुन रहे थे गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है थानेदार। स्वर है बप्पी लहरी, अनुराधा पोडवाल और साथियों के।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने को है प्रस्तुत है हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में, माफ कीजिए, जयपुर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: समाचार

0: समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित करेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में नीट यूजी परीक्षा को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जून में होने वाली अगली परीक्षा की फीस नहीं ली जाएगी। श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले साल से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को और मजबूत करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सीबीआई नीट पेपर लीक मामले की तह तक जाएगी।
1: सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। हाँ, निश्चित रूप में एनटीए को और सुधारने की आवश्यकता है, उसको हमने गंभीरता से लिया, इसको सुधार किया ही जाएगा।
0: गौरतलब है कि नीट परीक्षा 2026 3 मई को हुई थी, किंतु पेपर लीक होने के कारण इसे निरस्त कर दिया गया। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है। बढ़ी हुई दरें आज से ही लागू हो गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से पेट्रोल डीजल का किफायत से इस्तेमाल करने की अपील की है। श्री शर्मा आज जयपुर में राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव में बोल रहे थे। ईंधन बचत अभियान के तहत मुख्यमंत्री कार्यालय से श्री शर्मा ईवी वाहन में कार्यक्रम में पहुंचे। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं।
2: राज्य में अभी तक 1,76,000 से अधिक उपभोक्ताओं के सोलर रूफ टॉप प्लांट लगाए जा चुके हैं। राज्य में स्वच्छ ऊर्जा की को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के अंतर्गत राज्य में 250 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहाँ इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी।
0: खैरथल तिजारा जिले को विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए हो रहे कार्यक्रम से मुख्यमंत्री श्री शर्मा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव वीसी के जरिए जुड़े हैं। ईंधन बचत अभियान को लेकर जागरूकता संदेश देने के लिए इस कार्यक्रम में ये लोग वर्चुअल भागीदारी कर रहे हैं। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की आज 16वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्हें नमन किया है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने लिखा कि श्री शेखावत ने भारतीय राजनीति में सुशासन, संवेदनशीलता और जनसेवा की अमिट छाप छोड़ी। गरीब, किसान और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए उनका जीवन प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर श्री शेखावत के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भीलवाड़ा जिले के मांडल चौराहे पर आज एक तेज रफ्तार ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनके साथ ले जाए जा रहे चोरी के आरोपी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दुर्घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और कुछ देर यातायात बाधित रहा। हादसे के शिकार पुलिसकर्मी चित्तौड़गढ़ जीआरपी थाने में पदस्थापित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत कार्यक्रम महिला जगत।

0: रेडियो सुनने वाली सभी बहनों को मैं शर्मिला,
1: मैं माधवी व्यास का
0: प्यार भरा नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज हम लेकर आए हैं बच्चों की छुट्टियों से जुड़ी कुछ खास और प्यारी बातें।
0: बिल्कुल बहनों, क्योंकि छुट्टियों का नाम सुनते ही बच्चों के चेहरे जो है वो खिल जाते हैं। क्यों माधवी?
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि पता नहीं उनके अंदर एक उमंग अपने आप ही दौड़ पड़ती है। उन्हें लगता है कि अब कोई रूटीन नहीं होगा, कोई जल्दी अलार्म नहीं बजेगा, कोई मम्मी शोर नहीं मचाएगी उठने के लिए, है ना, जल्दी से टिफिन पैक करने, किताबों में खोना नहीं पड़ेगा।
1: पर मम्मियों के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी आ जाती है।
0: सही है
1: सखियों, ये छुट्टियां सिर्फ आराम का समय नहीं होता, बल्कि बच्चों के साथ समय बिताने, उन्हें अच्छे संस्कार देना और नई बातें सिखाने का भी सुनहरा अवसर होता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि छुट्टियां जो होती हैं गर्मियों की, उसके आते ही बच्चों की खुशियां तो बढ़ती ही हैं, क्योंकि उन्हें किसी को नानी के घर जाना है, कोई अपने पेरेंट्स से जिद कर रहा है कि कोई अच्छे से हिल स्टेशन पर ले चलो, क्योंकि यहाँ की बढ़ती गर्मी उन्हें कहीं ना कहीं ठंडे मौसम में ले जाने को मजबूर करती हैं। और कुछ बच्चे जो अपनी जो है रुचि के अनुसार काम करना चाहते हैं, जैसे कोई समर कैंप ज्वाइन करेगा या कोई ऐसी अच्छी चीज़ें सीखना चाहेगा, जैसे लड़कियाँ हैं तो वो कुकिंग में हो सकता है किसी का मन हो तो वो सीखेंगी, तो नए नए काम करने का उनके पास बहुत सारा समय अब उन्हें मिलने वाला है।
1: तो सखियों, ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों की छुट्टियों को सिर्फ मोबाइल और टीवी तक सीमित ना रहने दें, बल्कि उन्हें कुछ ऐसा समय दें जो उनके बचपन को और सुंदर बना दे। बच्चों के साथ थोड़ा सा समय बिताकर बात करें, कहानियां सुनाएं, घर के छोटे छोटे काम सिखाएं, जैसे पौधे लगाना,
0: हाँ।
1: चित्रकारी, ये जो मोबाइल की आदत छुड़वा के किताबें पढ़ने की आदत, हाँ। डालना, ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, बच्चों के मन में बड़ी सीख बनकर बस जाती है।
0: बिल्कुल सही कहा माधवी तुमने, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात है छुट्टियां बच्चों के लिए सिर्फ आराम नहीं बल्कि परिवार के साथ जुड़ने का सबसे सुंदर समय भी होती हैं। बच्चों की छुट्टियां उनके लिए एक सुंदर याद बनकर रहे, उनको बाद में याद रहे कि वाह क्या वो मौसम था जहां थोड़ा सा खेल था, थोड़ी सी सीख थी और ढेर सारा प्यार का परिवार, मतलब और बच्चों का मन को खुशियों से भर देता है।
1: बिल्कुल, इन्हीं प्यारी बातों के साथ अब समय हो चला है एक मधुर गीत का, जो बचपन की मुस्कान और परिवार के अपनापन को और भी खूबसूरत बना देता है। वो कहते हैं ना, छोटे छोटे सपनों से सजता है बचपन प्यारा, छोटे छोटे सपनों से सजता है बचपन प्यारा, हंसी में जिसकी बसता है घर आंगन सारा।
0: तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और गीत के बाद करेंगे अपनी बहनों से ढेर सारी बातें।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तो बहनों, इस ब्रेक के बाद वापस लौट आते हैं हम अपनी ही इस हसीन दुनिया में, जिसमें हम सुनाएंगे आज के अगले और बेहद खास विषय की ओर। आज का विषय है मीडिया और रेडियो में महिलाओं के लिए अवसर।
3: बिल्कुल, आज समय बदल रहा है और इसके साथ बदल रही है महिलाओं की पहचान। एक समय था जब महिलाएं सिर्फ घर की चौखट तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन आज वही महिलाएं अपनी आवाज से समाज को नई दिशा दे रही हैं। रेडियो हो, चाहे टीवी हो या फिर सोशल मीडिया हो, हर मंच पर महिलाएं अपनी मेहनत, समझ और आत्मविश्वास से नई पहचान बना रही है।
2: बिल्कुल
3: शर्मिला,
2: बिल्कुल। रेडियो की दुनिया तो खास तौर पर दिलों को जोड़ने वाली दुनिया है, जहां एक महिला की मधुर आवाज कभी किसी का हौसला बढ़ाती है तो कभी किसी अकेले मन को का साथी बन जाती है।
3: कितनी ही महिलाएं आज समाचार पढ़ रही हैं,

0: कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं, लेखन कर रही हैं और समाज की सच्ची कहानियों को लोगों तक पहुंचा रही हैं। सबसे सुंदर बात यह है कि मीडिया ने महिला को सिर्फ मंच नहीं दिया है बल्कि अपनी बात खुलकर कहने का आत्मविश्वास भी दिया है।
1: बिल्कुल, और अगर किसी महिला के अंदर हुनर है, अच्छी सोच है और कुछ नया करने की चाह है तो आज रेडियो और मीडिया उसके सपनों को उड़ान देने का एक बड़ा माध्यम बन चुका है।
0: और सच कहें बहनों, जब तक एक महिला आगे बढ़ती है तो उसके साथ पूरा परिवार और समाज भी आगे बढ़ता है। और इन्हीं प्रेरणादायक बातों के साथ अब समय हो चुका है एक सुंदर से संगीत का। तेरी आवाज़ में है ताकत, तेरे सपनों में है उड़ान, तू बढ़ती चल बहना, तुझसे रोशन है जहान। तो सुनिए ये प्यारा।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूँ। मैं हूँ आपका कैलाश खेर।
6: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: सखियों, आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां रिश्तों के बीच दूरियां बढ़ती दिखाई देती हैं, वहीं पारिवारिक मूल्य हमें प्रेम, संस्कार, अपनापन और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। परिवार केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझने, सम्मान देने और हर परिस्थिति में साथ निभाने की भावना है। इन्हीं सुंदर विचारों को लेकर आज हमारे साथ उपस्थित हैं वार्ताकार श्रीमती अर्निका साहू, जो आधुनिक समाज में पारिवारिक मूल्य विषय पर अपने विचार साझा करेंगी। तो सुनते हैं उनके ये खूबसूरत विचार।
1: अयम निज परो वेति गणना लघुचेत साम उदा चरिता नाम तु वसुधेव कुटुंबकम। ये श्लोक हमें परिवार की व्यापक भावना सिखाता है। परिवार केवल माता पिता, भाई बहन तक सीमित नहीं होता, बल्कि प्रेम, अपनापन और सहयोग से जुड़ा हर व्यक्ति हमारे परिवार का हिस्सा बन सकता है। परिवार हमें जीवन में संस्कार, सुरक्षा, आत्मविश्वास और कठिन समय में सहारा देता है। घर की रौनक रिश्तों के मुस्कुराने से होती है। परिवार ही वो दौलत है जो प्रेम से संवरती है। परिवार केवल एक साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि प्रेम, अपनापन और एक दूसरे की खुशी में शामिल होने का भाव है। सच्ची समृद्धि धन से नहीं, बल्कि परिवार के साथ और उनके स्नेह से मिलती है। मनुष्य चाहे कितना भी सफल क्यों ना हो जाए, जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब उसे अपने परिवार की आवश्यकता महसूस होती है। परिवार केवल रक्त संबंधों का नाम नहीं है, बल्कि ये भावनाओं, विश्वास, सहयोग, त्याग और प्रेम का वह पवित्र बंधन है जो हमारे जीवन को अर्थ देता है। जब नन्हे कदम डगमगाते हैं, परिवार चलना सिखाता है। घिरकर जब मन टूटे अपना, वही हमें संभालता है। निराशा के अंधियारे में उम्मीद का दीप जलाता है और हमारी हर सफलता पर सबसे ज़्यादा मुस्काता है। आज के समय में यदि किसी व्यक्ति के पास धन, प्रसिद्धि और सुविधाएं सब कुछ हो, लेकिन परिवार का साथ न हो, तो उसका जीवन अधूरा लगता है, क्योंकि जीवन की असली खुशी रिश्तों में ही छिपी होती है। पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस में एक चौपाई है, जहां सुमति तहम संपत्ति नाना, जहां कुमति तहम विपत्ति निदाना। जहां परिवार में अच्छी सोच, प्रेम, समझ और सद्भाव होता है, वहां सुख समृद्धि स्वयं आ जाती है। लेकिन जहां मन मुटाव, कटुता और गलत विचार होते हैं, वहां दुख और संकट जन्म लेते हैं।

ये चौपाई बताती है कि परिवार की वास्तविक शक्ति प्रेम, एकता और अच्छे संस्कारों में होती है, क्योंकि जीवन की सच्ची खुशी रिश्तों से ही मिलती है। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन इसकी भूमिका सबसे बड़ी होती है। एक अच्छा परिवार ही अच्छे समाज और अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। यदि परिवार में प्रेम और संस्कार होंगे तो समाज में शांति और सद्भाव बना रहेगा। रामायण के पवित्र ग्रंथ में भी कहा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं बाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाही। ये चौपाई हमें प्रेम, सहयोग और मानवता का संदेश देती है। जब परिवार में एक दूसरे के प्रति सम्मान, त्याग और सद्भाव होता है, तब वही संस्कार समाज में फैलते हैं। एक अच्छा परिवार बच्चों को अच्छे संस्कार देता है और यही संस्कार आगे चलकर एक आदर्श समाज तथा सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इसलिए परिवार केवल घर की नींव नहीं, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र की शक्ति होता है। भारतीय संस्कृति में परिवार को विशेष महत्व दिया गया है। हमारे यहाँ माता पिता को भगवान के समान माना जाता है। बड़ों का सम्मान और छोटों से स्नेह, यही हमारी पहचान रही है। कहा भी गया है, जहाँ बड़ों का मान हो, छोटों का स्नेह अपार, वहीं घर बन जाता है सचमुच सुख का संसार। पहले संयुक्त परिवारों की परंपरा थी। दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन सभी एक साथ रहते थे। घर में हंसी, अपनापन और एकता का वातावरण रहता था। बच्चे बड़ों से संस्कार सीखते थे और बुजुर्गों का सम्मान मिलता था। लेकिन बदलते समय के साथ जीवन शैली भी बदल गई। आज अधिकांश परिवार छोटे होते जा रहे हैं। व्यस्तता इतनी बढ़ गई है कि लोग अपने ही परिवार को समय नहीं दे पा रहे। हमारे धर्म ग्रंथ भी बताते हैं कि जब परिवार में स्वार्थ, अहंकार और गलत सलाह प्रवेश कर जाती है, तब रिश्तों में दूरी आने लगती है। केकई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मंथरा की बातों में आकर उन्होंने परिवार की एकता को तोड़ दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि पूरा अयोध्या परिवार दुख में डूब गया। ये घटना हमें सिखाती है कि परिवार प्रेम, विश्वास और त्याग से चलता है, स्वार्थ और क्रोध से नहीं। परिवार तभी मजबूत रहता है जब उसमें धैर्य, समझ, संवाद और प्रेम बना रहे। यदि रिश्तों में अहंकार, क्रोध और दूरी आ जाए तो सबसे मजबूत परिवार भी टूटने लगता है। आज विज्ञान और तकनीक ने हमारी जीवन को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मोबाइल और सोशल मीडिया ने रिश्तों की गर्माहट को भी कम कर दिया है। पहले लोग घर पर बैठ के एक दूसरों से बातें करते थे, दुख सुख बांटते थे, साथ भोजन करते थे, लेकिन आज एक ही घर में रहने वाले लोग मोबाइल की स्क्रीन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि आपसी संवाद धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कई बार देखा जाता है कि माता पिता बच्चों से बात करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। बच्चे अपनी मन की बात कहना चाहते हैं, लेकिन बड़े सोशल मीडिया और काम की व्यस्तता में उलझे रहते हैं। धीरे धीरे यही दूरी रिश्तों में खामोशी और अकेलेपन का कारण बनने लगती है। आज ऑनलाइन तो लोग बहुत हैं, लेकिन अपनों के साथ बैठने का समय कम होता जा रहा है। मोबाइल ने दूर बैठे लोगों को तो पास कर दिया, लेकिन कई बार पास बैठे अपनों को भी दूर कर दिया। घर के आंगन सूने हैं, सब कमरों में शोर है, हाथों में मोबाइल है, पर रिश्तों में कमजोरी है। पहले दिल से दिल मिलते थे, अब स्क्रीन से बातें होती है। परिवार साथ होकर भी दूरियों में खोती है। मोबाइल और सोशल मीडिया का सही उपयोग लाभदायक है, लेकिन उसका अत्यधिक उपयोग परिवारों में दूरी, संवादहीनता और रिश्तों में कमजोरी का कारण बन सकता है। तकनीक बुरी नहीं है, लेकिन यदि तकनीक रिश्तों की जगह लेने लगे तो यह चिंता का विषय बन जाता है।

आज बच्चे मोबाइल में व्यस्त हैं, माता पिता काम में व्यस्त हैं और बुजुर्ग अकेलेपन का अनुभव कर रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि परिवार केवल आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने का माध्यम नहीं है, परिवार भावनात्मक सुरक्षा देता है। ये हमें मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करता है। जब कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति में होता है, तब सबसे पहले परिवार ही उसके साथ खड़ा होता है। बीमारी हो, परेशानी हो या दुख का समय, परिवार का साथ सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। बच्चों के जीवन में परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बच्चा अपने घर से ही व्यवहार सीखता है। यदि घर में प्रेम, सम्मान और अनुशासन होगा तो बच्चा भी वैसा ही बनेगा। माता पिता बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं। वे उन्हें केवल शिक्षा ही नहीं देते, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। आज के समय में बच्चों को अच्छी शिक्षा देना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी अधिक ज़रूरी है उन्हें अच्छे संस्कार देना। यदि बच्चे संस्कारी होंगे तो वे जीवन में सही निर्णय ले पाएंगे और समाज के अच्छे नागरिक बनेंगे। परिवार में बुजुर्गों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके अनुभव और आशीर्वाद से घर में सकारात्मकता बनी रहती है। दादा दादी की कहानियाँ केवल मनोरंजन नहीं होती, बल्कि उनमें जीवन की सीख छिपी होती है। आज आवश्यकता है कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके साथ समय बिताएं और उन्हें ये महसूस कराएं कि वे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि बुजुर्ग केवल घर के सदस्य नहीं होते, वे हमारे अनुभव, संस्कार और परंपराओं की जीवित धरोहर होते हैं। रामचरितमानस में भगवान श्री राम का चरित्र हमें यही शिक्षा देता है कि माता पिता और बड़ों की आज्ञा तथा सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। राज्य, सुख और वैभव त्याग कर भी श्री राम ने पिता की मर्यादा को सर्वोपरि माना, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। अहंकार का त्याग, विनम्रता, सहनशीलता और सरलता, ये श्रेष्ठ मनुष्य के गुण हैं। जो व्यक्ति अपने बड़ों का आदर करता है, वह जीवन में संस्कार, धैर्य और सही मार्गदर्शन प्राप्त करता है। बुजुर्ग परिवार की वह छाया है जिनके आशीर्वाद से घर में सुख, शांति और एकता बनी रहती है। माँ बाप घर का मान है, दादा दादी पहचान है, जिनके चरणों में प्रेम बसे वही घर सच्चा धाम है। आज आवश्यकता है कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके साथ समय बिताएं और उन्हें ये महसूस कराएं कि वे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। त्योहारों का असली आनंद भी परिवार के साथ ही आता है। दिवाली की रोशनी, होली के रंग, ईद की मिठास या क्रिसमस की खुशियाँ, ये सब तब और सुंदर लगते हैं जब पूरा परिवार साथ हो। परिवार हमें बांटना सिखाता है। ये हमें सहयोग, धैर्य, क्षमा और प्रेम का महत्व समझाता है। यदि परिवार में आपसी समझ और संवाद बना रहे तो कई समस्याएं आसानी से हल हो सकती हैं। लेकिन जहां संवाद समाप्त हो जाता है, वहां दूरियां बढ़ने लगती है। इसीलिए हमें अपने परिवार के साथ खुलकर बातचीत करनी चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर नाराज होने की बजाय रिश्तों को महत्व देना चाहिए। आज मानसिक तनाव और अकेलेपन की समस्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे समय में परिवार एक सहारे की तरह कार्य करता है। परिवार का प्रेम व्यक्ति को टूटने नहीं देता। एक मजबूत परिवार व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाता है। उसे ये विश्वास दिलाता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, कोई उसके साथ खड़ा है। हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम की भावना सदियों से आ रही है। इसका अर्थ है पूरा विश्व एक परिवार है। ये विचार हमें प्रेम, एकता और मानवता का संदेश देता है। यदि हम अपने परिवार में प्रेम और सम्मान बनाए रखें, तो यही भावना समाज और पूरे विश्व में भी फैल सकती है।

0: सकती है। आज आवश्यकता है कि हम सभी कुछ छोटे छोटे संकल्प लें, जैसे हम प्रतिदिन अपने परिवार के साथ कुछ समय अवश्य बिताएं, मोबाइल और इंटरनेट से थोड़ा समय निकालकर अपनों से बातें करेंगे, अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, बच्चों को प्रेम और अच्छे संस्कार देंगे और हर परिस्थिति में अपने परिवार का साथ निभाएंगे। रिश्तों से ही जीवन में मिठास आती है, परिवार से ही हर खुशी पास आती है। जो अपनों का साथ संभाल के रखते हैं, उनके जीवन में हमेशा उजास आती है। जी हाँ, घर ईंटों से नहीं रिश्तों से बनता है, प्रेम हो जहाँ वहीं परिवार बसता है।
1: सखियों, आधुनिक समय के बदलती जीवन शैली के बीच भी पारिवारिक मूल्यों की महत्ता आज उतनी ही आवश्यक है जितनी पहले थी। श्रीमती अर्णिका साहू द्वारा प्रस्तुत ये सुंदर वार्ता निश्चित रूप से हम सभी को रिश्तों की गरिमा और संस्कारों की शक्ति का संदेश देती हैं। तो इनके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। और रिश्ते प्यार से बनते हैं, रिश्ते प्यार से बनते हैं, सम्मान से निभाते हैं। और इन्हीं भावनाओं के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: सखियों, अभी हमने वार्ता में भी परिवार पे बात की और आज पारिवारिक दिवस भी है, तो परिवार केवल चार दीवारों का नाम नहीं होता, बल्कि एक एहसास होता है जहाँ थके हुए मन को सुकून मिलता है, जहाँ हर खुशी हर गम को बांटा जाता है, और अगर परिवार साथ होता है तो सारे दुख हम हंसी हंसी सह जाते हैं।
1: और बहनों, इसी परिवार रूपी बगिया को प्रेम, धैर्य और संस्कारों से सींचने का काम सबसे अधिक अगर कोई करता है तो वो है नारी। बहन बनकर अपनापन, पत्नी बनकर साथ निभाती है और बेटी बनकर घर में मुस्कान बिखेरती है।
0: सच कहा माधवी, एक महिला केवल घर नहीं संभालती, वो पूरे परिवार की भावनाओं को जोड़कर रखती है। उसकी छोटी छोटी कोशिश ही परिवार को मजबूत बनाती है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत है परिवार को समय देने की, क्योंकि आजकल जो ये मोबाइल नाम की बीमारी हो गई है ना, इसने सब रिश्तों को इतना बिजी कर दिया है कि कई बार हम ऐसे लगता है कि परिवार में सब लोग साथ बैठे हैं, लेकिन साथ बैठ कर के भी न जाने कितनी दूरियां हमारे बीच में होती हैं।
1: वही रिश्तों की गर्माहट कहीं ना कहीं कम होती जा रही है ना। ऐसे में अगर परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर कुछ पल हंस लें, बातें कर लें, एक दूसरे की भावनाओं को समझ लें, तो घर सचमुच स्वर्ग हो ही जाएगा।
0: बिल्कुल
1: बहनों, परिवार तभी मजबूत बनता है जब उसमें सम्मान, विश्वास और सहयोग हो। इन्हीं सभी भावनाओं को अपने स्नेह से जोड़ने वाला काम बोले तो सकती है वो है नारी।
0: बिल्कुल, इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर आइए संकल्प लें कि हम अपने परिवार को समय देंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे और महिलाओं के योगदान को दिल से सराहेंगे, क्योंकि खुशहाल परिवार ही खुशहाल समाज की नींव है।
1: इन्हीं सुंदर भावनाओं के साथ अब वक्त हो चला है सखियों को फिर एक गीत संगीत की दुनिया में ले चलने का, तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बहनों, आज 15 मई को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जयंती है, तो उन पे हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से हिंदी क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया था। क्योंकि जब हिंदी अपने लिए प्रयास कर रही थी, उस समय उन्होंने उसमें सुधार करने के लिए बहुत सारे कार्य किए। एक एक शब्द पे उन्होंने ध्यान दिया, मात्राओं को उन्होंने सुधारा, एक अलग पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने ऐसा काम किया जो हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है वो देता है। तो उनकी ऐसी ऐसी रचनाएं जो है वो रहीं जिनके ऊपर समाज का बहुत गहरा प्रभाव जो है वो पड़ा, और एक युग जो है उनके ऊपर बात कर सकते हैं हम कि एक युग को परिवर्तक करने वाले थे, वो परिवर्तित करने वाले थे। इस तरह से द्विवेदी जी का युग जो है वो कहलाता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को हम याद करें और उनकी बातों को हम ध्यान रखें। उन्होंने किस तरह से भाषा और साहित्य को नई दिशा दी, कैसे उन्होंने हिंदी को सरल, शुद्ध और प्रभावशाली बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इस प्रभावशाली विषय को याद करने के लिए उनको बहुत बहुत सलाम।

0: तो सखियो, आज का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। जाते जाते बस इतनी सी बात आपसे कहना चाहेंगे कि परिवार हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। घर केवल ईंट और दीवारों से नहीं बनता, बल्कि प्रेम, विश्वास, अपनेपन से बनता है। जब परिवार के लोग एक दूसरे का हाथ थामते हैं तो जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाई का सामना हम कर लेते हैं।
1: आइए हम सभी मिलकर अपने परिवार में प्रेम, सम्मान और संस्कार को की खुशबू बनाए रखें। इन्हीं सुंदर भावनाओं के साथ अब दीजिए अनुमति, मैं माधवी व्यास और मेरे साथ हैं हम सब की सखी
0: शर्मिला।
1: तो
0: दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। कार्यक्रम के आज के अंक की प्रस्तुतकर्ता थी माधवी व्यास और डॉक्टर शर्मिला। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दोपहर के 2 बजने को है प्रस्तुत है हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज।

0: उन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबू धाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ जयशंकर कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता

0: और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग्ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
2: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
3: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
4: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस

0: रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के चार भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी दो बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउत विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
0: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर अभी आप सुन रहे थे समाचारों की श्रृंखला। 2:30 हो चुके हैं और ये वक्त है हमारे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम का। तो हम स्वागत करते हैं सभी किसान भाई बहनों का आज के कार्यक्रम में।

0: सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं हूं सुष्मा।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत। सुनिए, फिल्म का नाम है मर्डर 2। स्वर है हर्षित सक्सेना का।

तुम बिन टू फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना रेखा भारद्वाज और जगजीत सिंह की आवाजों में। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है जिस्म टू, स्वर है के और श्रेया घोषाल के।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बज रहे हैं। हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे हमारी नियमित सांधिकालीन सभा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर। संध्या के 5 बजने को है, आज की हमारी दूसरी सभा प्रारंभ होती है। सभा के प्रारंभ में हमारे श्रोता हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग, द्विपक्षीय व्यवहार और प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री ने UAE पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: UAE पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। UAE को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, UAE और यूरोप की 6 दिन के दौरे पर पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। एक रिपोर्ट।
3: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की

0: एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत माध्यम लड़ाकू विमान AM

0: मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत माध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली NEET UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज गुरुग्राम में भारतीय पेट्रोलियम प्रबंधन संस्थान में 11वें विचार मंथन सत्र की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने बताया कि सत्र में भारत के तेल और गैस क्षेत्र में अनुसंधान, विकास, नवाचार और स्टार्टअप्स पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रदेन्द्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूच विहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना DMK के वरिष्ठ विधायक ए अम्बा लगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की। भारत का माल और सेवा कुल निर्यात अप्रैल 2026 में 80 अरब 80 करोड़ डॉलर रहने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष अप्रैल की तुलना में 13.6% अधिक है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 5:05 हुए हैं और ये समय है हमारे युवा श्रोताओं के लिए उनके कार्यक्रम युववाणी का। और आज के इस युववाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रही है शारदा नैन और वसुंधरा आचार्य।

0: दोस्तों कल्पना कीजिए, अगर आपके गुल्लक में रखा एक छोटा सा सिक्का बोल पाता तो शायद वो कहता, आज मुझे संभाल लो, मैं कल तुम्हारे सपनों की ताकत बन जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वसुंधरा और आप सुन रहे हैं आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।
1: सच में दोस्तों, हम अक्सर बड़े सपनों की बात तो करते हैं, लेकिन उन सपनों को की नींव रखने वाली छोटी छोटी आदतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं हूं शारदा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हर युवा, हर परिवार और हर सपने देखने वाले इंसान से जुड़ा है, आज की बचत कल की आय।
0: शारदा एक बात बताओ, क्या बचत का मतलब सिर्फ पैसे जमा करना होता है?
1: नहीं नहीं वसुंधरा, बिल्कुल नहीं। बचत का मतलब है अपने भविष्य को सुरक्षित करना। यह केवल पैसों की गिनती नहीं बल्कि समझदारी की पहचान होती है। आज की छोटी बचत कल किसी मुश्किल समय में हमारा सबसे बड़ा सहारा बन सकती है।
0: बिल्कुल दोस्तों, कई बार युवा सोचते हैं कि अभी कमाई कम है, बाद में बचत करेंगे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि बचत की शुरुआत रकम से नहीं, सोच से होती है।
1: बिल्कुल, अगर हम रोज की अनावश्यक चीज़ों पर थोड़ा नियंत्रण करें, जैसे बिना ज़रूरत ऑनलाइन खरीदारी, फिजूल खर्च या दिखावे पर खर्च, तो धीरे धीरे एक अच्छी राशि बचाई जा सकती है।
0: और ये बचत सिर्फ बैंक खाते में पैसे रखने तक सीमित नहीं है, आजकल निवेश के भी कई साधन हैं, जैसे रिकरिंग डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, SIP या पोस्ट ऑफिस योजनाएं, जहां छोटी राशि से शुरुआत की जा सकती है।
1: हाँ, लेकिन इसके साथ समझदारी भी जरूरी है दोस्तों। बिना जानकारी के किसी भी योजना में पैसा लगाना सही नहीं। पहले जानकारी लें, समझें और फिर निर्णय करें, क्योंकि बचत तभी लाभदायक होती है जब वह सुरक्षित और सोच समझकर की

0: इसी बात से मुझे एक कहानी याद आ रही है शारदा।
1: क्या?
0: एक गांव में दो दोस्त थे, एक अपनी हर कमाई का थोड़ा हिस्सा बचाता था, जबकि दूसरा सोचता था कि जो आज है आज ही खर्च कर लो, क्या पता कल हो ना हो। कुछ साल बाद जब मुश्किल समय आया तो जिसने बचत की थी वो ना सिर्फ खुद संभला बल्कि दूसरों की मदद भी कर पाया।
1: सच में ये कहानी हमें सिखाती है दोस्तों कि बचत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनने का भी रास्ता है। जब हमारे पास आर्थिक सुरक्षा होती है तो फैसले लेने का आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
0: आज की युवा पीढ़ी बड़े सपने देखती है, अच्छी शिक्षा, अपना व्यवसाय, घूमना फिरना या घर खरीदना, लेकिन इन सपनों को सच करने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं वित्तीय अनुशासन भी जरूरी है दोस्तों।
1: और अनुशासन की शुरुआत छोटी आदतों से होती है, जैसे हर महीने कमाई का एक हिस्सा अलग रखना, खर्च का हिसाब बनाना और जरूरत व इच्छा के बीच अंतर समझना।
0: बहुत सही बात कही। कई बार हम सेल देखकर ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी जरूरत भी नहीं होती और बाद में सोचते हैं कि पैसे कहाँ चले गए।
1: बिल्कुल, ऑफर देखकर दिल खुश तो हो जाता है लेकिन महीने के आखिर में जेब उदास हो जाती है।
0: लेकिन सच यही है कि समझदारी से खर्च करना भी बचत का ही हिस्सा है। हमें ये समझना होगा कि हर छोटी बचत भविष्य के बड़े अवसरों का रास्ता खोलती है।
1: और आज की बचत सिर्फ आर्थिक आय नहीं बनती बल्कि मानसिक शांति भी देती है। जब हमारे पास थोड़ी वित्तीय सुरक्षा होती है तो भविष्य को लेकर डर कम होता है।
0: शारदा, मुझे लगता है कि अगर स्कूल कॉलेज स्तर पर भी वित्तीय शिक्षा दी जाए तो युवा कम उम्र से ही पैसे की अहमियत समझ पाएंगे।
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसे सही तरीके से संभालना। सिर्फ आय बढ़ाना ही समझदारी नहीं है बल्कि आय को बचाना और बढ़ाना एक कला है।
0: तो दोस्तों, आज अगर आप ये सोच रहे हैं कि बचत की शुरुआत कैसे करें, तो बस एक छोटा कदम उठाइए। चाहे 10 रुपए हो, 100 रुपए हो या 1000, शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है।
1: और दोस्तों याद रखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और आज ही हर छोटी बचत कल आपके आत्मविश्वास, आपकी जरूरत और आपके सपनों की आय बन सकती है।
0: तो क्यों ना आज से ही एक संकल्प लिया जाए, फिजूल खर्च कम करेंगे, बचत को आदत बनाएंगे और अपने भविष्य को मजबूत बनाएंगे।
1: क्योंकि समय के साथ एक बात हमेशा सच साबित होती है, आज की समझदारी कल की मजबूती बन जाती है।
0: बिल्कुल।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, अब बारी है आपके और हमारे पसंदीदा सेगमेंट क्विज सेशन की, जहां हम आपसे पूछेंगे दो सवाल। आपको उन सवालों के उत्तर सोच के रखने होंगे, क्योंकि कार्यक्रम के अंत में हम फिर हाजिर होंगे उन सवालों के उत्तर के साथ। तो आज का हमारा पहला सवाल है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की करंट रिपोर्ट के अनुसार AI अडॉप्शन में कौन सा देश सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
4: और दोस्तों, आज का दूसरा सवाल है, यूनेस्को ने 2026 के लिए किस भारतीय शहर में को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक इनिशिएटिव में विशेष रिकॉग्निशन दिया है।
3: तो दोस्तों, आपको इन सवालों के उत्तर सोच के रखने होंगे।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: शारदा, जरा एक पल अपनी आंखें बंद करो और सोचो घर का वो कोना जहां मम्मी की आवाज गूंजती है, पापा की सलाह सुनाई देती है और भाई बहनों की नोक झोंक होती है, और कभी कभी बिन वजह की हंसी भी। लेकिन अगर घर की दीवारें बोल पाती तो शायद कहती, यहाँ सिर्फ लोग नहीं रहते, यहाँ प्यार, तकरार और यादों का पूरा संसार बसता है।
4: वाह, क्या बात की। वसुंधरा, सच कहूँ तो परिवार वो जगह है जहाँ वाईफाई कमज़ोर हो सकता है, लेकिन रिश्तों का नेटवर्क हमेशा फुल सिग्नल पर रहता है। और हाँ, जहाँ मम्मी को बिना बताए फ्रिज से मिठाई निकालें तो CCTV से पहले उनकी नज़र पकड़ लेती है।
3: बिल्कुल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की, जो हर साल 15 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है परिवार के महत्व को समझना, रिश्तों को मजबूत बनाना और अपनों के साथ बिताए पलों की अहमियत को महसूस करना।
4: दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने 1993 में

0: अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने की घोषणा की थी, ताकि लोगों को परिवार की भूमिका और समाज में उसकी अहमियत का एहसास हो सके, क्योंकि परिवार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि साथ निभाने का नाम है।
1: तो शारदा, एक छोटा सा क्विज हो जाए हमारे दोस्तों के साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों बताइए, घर में सबसे ज्यादा रिमोट कंट्रोल पर किसका अधिकार होता है? तुम बताओ वसुंधरा।
1: मुझे तो लगता है कि जो सबसे पहले पकड़ ले, लेकिन अंत में चलती वही है जो घर का अनकहा बॉस हो। और कई घरों में तो रिमोट पर असली राज दादा दादी का ही होता है शारदा।
0: बिल्कुल। और परिवार की सबसे प्यारी बात पता है क्या? यहाँ डांट भी मुफ्त की मिलती है और प्यार भी अनलिमिटेड मिलता है। मम्मी कहती है फोन कम चलाओ, और 5 मिनट बाद खुद वीडियो कॉल पर रिश्तेदारों से बात करती है।
1: बिल्कुल, लेकिन सच यही है दोस्तों कि मम्मी की डांट में भी चिंता छुपी होती है, पापा की सख्ती में भी प्यार, और भाई बहनों की लड़ाई में भी सबसे गहरी दोस्ती।
0: हाँ, क्योंकि परिवार वो जगह है जहाँ आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, कोई ना कोई आपको आज भी बच्चा ही समझता है। और वो कहते हैं ना, परिवार वो टीम है जहाँ मैच चाहे कोई भी हो, सपोर्ट हमेशा पक्का है।
1: बिल्कुल, घर का खाना और परिवार का साथ, दोनों की असली कीमत घर से दूर जाकर समझ आती है। कभी हॉस्टल या नौकरी के लिए दूर जाना पड़े, तब मम्मी के हाथ के खाने और घर की छोटी छोटी बातों की कितनी याद आती है ना?
0: बिल्कुल। और तब एहसास होता है कि घर में जो आवाज़ें कभी शोर लगती थी, वह बाद में सबसे प्यारी याद बन जाती है।
1: अब एक दिलचस्प सवाल, क्या परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से बनता है?
0: बिल्कुल नहीं। परिवार वो भी है दोस्तों जहाँ अपनापन हो, समझ हो, और मुश्किल वक्त में कोई आपका हाथ थाम ले। कभी कभी दोस्त भी परिवार बन जाते हैं जो बिना कहे समझ लेते हैं कि तुम ठीक तो हो।
1: और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में परिवार के लिए थोड़ा समय निकालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कभी साथ बैठकर खाना खाना, पुरानी तस्वीरें देखना, या बस चाय पर बातें कर लेना, ये छोटे पल रिश्तों को मजबूत बनाते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि मोबाइल की बैटरी तो चार्जर से चार्ज हो जाती है, लेकिन इंसान का दिल सिर्फ परिवार के साथ रहकर ही चार्ज होता है। और हाँ, कभी कभी परिवार के साथ बैठकर पुरानी बातें सुनना भी ज़रूरी है, भले ही वह कहानी 10वीं बार सुननी पड़े।
1: तो दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक छोटा सा वादा कीजिए, अपने परिवार को थोड़ा ज़्यादा समझ देंगे, कैसे हो सिर्फ चैट में नहीं सामने बैठकर पूछेंगे, और हाँ बिना किसी वजह के एक बार गले भी लगेंगे।
0: क्योंकि कई बार मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये 4 शब्द किसी के पूरे दिन को खूबसूरत बना देते हैं। और याद रखिए, परिवार परफेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन उसका प्यार हमेशा सबसे खास होता है।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: दोस्तों, दुनिया के हर बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन शिक्षा एक ऐसा खजाना है जिसका मूल्य कभी कम नहीं होता। जितना इसे बांटा जाए उतना ही ये बढ़ती है और इसका स्टॉक भी बढ़ता है और इंसान को भीतर से सबसे अमीर बना देता है। तो दोस्तों, इसी से संबंधित है आज की हमारी वार्ता, जिसका विषय है एकमात्र निवेश जिसका स्टॉक कभी नीचे नहीं गिरता, और इसकी वार्ताकार है प्राची जीरवन।
3: शिक्षा एकमात्र निवेश जिसका स्टॉक कभी नीचे नहीं गिरता। आज मैं एक ऐसे निवेश के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, फिर भी यह सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है। ऐसा निवेश जो बाजार के उतार चढ़ाव या आर्थिक मंदी से बंधा नहीं है। एक ऐसा निवेश जो कालातीत, सार्वभौमिक और अत्यधिक प्रभावशाली है। वह निवेश है शिक्षा। शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान, कौशल और आलोचनात्मक सोच से सशक्त बनाती है, मानवीय क्षमता को उजागर करती है, व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देती है और हमें लगातार बदलती दुनिया के लिए तैयार करती है। शिक्षा सफल भविष्य की कुंजी है, क्योंकि यह कमाई की संभावना बढ़ाती है। शिक्षित व्यक्ति अधिक कमाते हैं और उनके पास नौकरी की बेहतर संभावनाएं होती हैं। वास्तव में अध्ययनों से पता चला है कि स्नातक की डिग्री वाले कर्मचारी आमतौर पर केवल हाई स्कूल डिप्लोमा वाले लोगों की तुलना में लगभग 50% अधिक कमाते हैं। कमाई की ये बढ़ी हुई क्षमता किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता वह महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है, जिससे वे अपने बच्चों के लिए बेहतर आवास, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा का खर्च वहन कर सकेंगे। नौकरी की बेहतर संभावनाएं बढ़ाती हैं। शिक्षा करियर में उन्नति और उच्च नौकरी के अवसरों के द्वार खोलती है। यह व्यक्ति को नई कार्य वातावरण के अनुकूल बनाने में सक्षम बनाती है। स्वचालन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ने के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा पहले से कई अधिक महत्वपूर्ण है कि श्रमिकों के पास नौकरियों के लिए प्रासंगिक बने रहने के लिए आवश्यक कौशल हों। शिक्षा व्यक्तिगत वृद्धि और विकास करती है। शिक्षा आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और नए समाधान कौशल को बढ़ावा देती है। यह व्यक्ति को सूचित निर्णय लेने, स्वतंत्र रूप से सोचने और जटिल परिस्थितियों से निपटने में सक्षम बनाती है। शिक्षा भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सहानुभूति और सामाजिक कौशल को बढ़ाती है, जो मजबूत रिश्ते बनाने के लिए, व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। सामाजिक गतिशीलता बढ़ाती है। शिक्षा गरीबी के चक्र को तोड़ती है और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करती है। यह वंचित पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को बेहतर नौकरी के अवसर, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सेवाओं के तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। शिक्षा सामाजिक गतिशीलता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, जो व्यक्तियों को अपने परिस्थितियों में सुधार करने और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन बनाने में सक्षम बनाती है। अगर हम शिक्षा में निवेश पर रिटर्न

बात करें तो हालांकि शिक्षा में निवेश पर रिटर्न तुरंत मूर्त नहीं हो सकता, लेकिन वे निर्विवाद हैं। शिक्षा में निवेश पर कुछ सबसे महत्वपूर्ण रिटर्न में शामिल है, बढ़ी हुई उत्पादकता। शिक्षित व्यक्ति अपने कार्य में अधिक कुशल एवं प्रभावी होते हैं। वे उत्पादकता, नवाचार और आर्थिक विकास में वृद्धि में योगदान करते हैं। वास्तव में अध्ययनों में पता चला है कि शिक्षा में निवेश किया गया प्रत्येक डॉलर आर्थिक विकास में डॉलर 1.60 का रिटर्न उत्पन्न करता है। बेहतर स्वास्थ्य परिणाम देता है शिक्षा। शिक्षा स्वस्थ व्यवहार और सूचित स्वास्थ्य निर्णयों की ओर ले जाती है। शिक्षित व्यक्ति के नियमित व्यायाम, स्वस्थ भोजन और निवारक स्वास्थ्य देखभाल में संलग्न होने की अधिक संभावना है। इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर बोझ कम हो सकता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। शिक्षा से अपराध दर में भी कमी देखी गई है। शिक्षा से आपराधिक व्यवहार की संभावना कम हो जाती है। शिक्षित व्यक्तियों के वैध गतिविधियों में शामिल होने, कानून का सम्मान करने और सामुदायिक विकास में योगदान देने की अधिक संभावना होती है। वास्तव में अध्ययनों से पता चला है कि शिक्षा में निवेश किया गया प्रत्येक डॉलर कम अपराध लागत में $2.50 का रिटर्न उत्पन्न करता है। नागरिक सहभागिता में वृद्धि। शिक्षा सामुदायिक भागीदारी और लोकतांत्रिक जुड़ाव को बढ़ावा देती है। शिक्षित व्यक्तियों द्वारा मतदान करने, स्थानीय राजनीति में भाग लेने और सामुदायिक विकास में योगदान देने की अधिक संभावना होती है। इससे अधिक सूचित निर्णय लेने और अधिक जीवन लोकतंत्र को बढ़ावा मिल सकता है। आज की दुनिया में शिक्षा क्यों मायने रखती है? आज की तेज गतिविधि वाली परस्पर जुड़ी हुई दुनिया में शिक्षा पहले से कई अधिक मायने रखती है। वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति। वैश्विक अर्थव्यवस्था को कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है। शिक्षा व्यक्ति को इस तेजी से बदलती दुनिया के लिए तैयार करती है, जो उन्हें वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति की जटिलताओं से निपटने में सक्षम बनाती है। सतत विकास और सामाजिक न्याय। सतत विकास और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। यह व्यक्तियों को जटिल मुद्दों को समझने, गंभीर रूप से सोचने और सकारात्मक व्यवहार में योगदान करने में सक्षम बनाती है। शिक्षा पर्यावरण जागरूकता, सामाजिक जिम्मेदारी और मानवाधिकारों को बढ़ावा देती है, जो एक अधिक न्यायपूर्ण और टिकाऊ दुनिया बनाने में आवश्यक है। व्यक्तिगत संतुष्टि और खुशी। व्यक्तिगत संतुष्टि और खुशी के लिए शिक्षा आवश्यक है। यह व्यक्ति को अपने जुनून को आगे बढ़ाने, अपनी रुचियों को विकसित करने और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाती है। शिक्षा भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आत्म जागरूकता और आत्मबोध को बढ़ावा देती है, जो व्यक्तिगत संतुष्टि और सुख खुशी प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। शिक्षा तक पहुंच का महत्व कि यदि हम बात करें तो शिक्षा के अनेक लाभों के बावजूद दुनिया के कई हिस्सों में शिक्षा तक पहुंच एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। गरीबी, संघर्ष और भेदभाव जैसे कारणों के कारण लाखों बच्चे और वयस्कों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच नहीं है। शिक्षा में बाधाएं, यदि हम बात करें तो शिक्षा में कई बाधाएँ हैं, जिसमें शामिल है गरीबी। गरीबी शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा है, क्योंकि कई परिवार ट्यूशन फीस, वर्दी और पाठ्य पुस्तकों सहित शिक्षा की लागत वहन नहीं कर सकते। युद्ध। युद्ध शिक्षा में एक और महत्वपूर्ण बाधा है, क्योंकि युद्ध के दौरान कई स्कूल नष्ट हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं और कई बच्चे अपने घरों और समुदायों से भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। भेदभाव। भेदभाव भी शिक्षा में एक महत्वपूर्ण बाधा है, क्योंकि लड़कियों, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूह सहित कई हाशिए पर रहने वाले समूह को शिक्षा तक पहुंचने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। शिक्षा तक पहुंच में सुधार के समाधान की यदि हम बात करें तो शिक्षा तक पहुंच में सुधार के लिए कई समाधान हैं, जिसमें शामिल है शिक्षा के लिए धन बढ़ाना। इन सभी से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो भी शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं उसका सही उपयोग भी करें। हम आज भी शिक्षित होते हुए भी कई कुरीतियों को तोड़ नहीं पा रहे हैं। आज हमारी सोच यदि हम नहीं

0: बदल पा रहे हैं तो हमारी शिक्षा व्यर्थ है, क्योंकि शिक्षा के उद्देश्य ही हमारा जीवन को बेहतर बनाना है और लड़का या लड़की सभी के लिए समान व्यवहार रखना है।
1: दोस्तों, किसी भी भाषा की पहचान सिर्फ उसके शब्दों से नहीं होती, बल्कि उस भाषा को समृद्ध बनाने वाले महान साहित्यकारों साहित्यकारों और विचारों को से होती है।
2: तो दोस्तों, साहित्य और विचार दोनों हमारी आती है शिक्षा से। तो अभी हमारी प्राची झीरवाल जी ने बात करी हमारी आज की वार्ता, जो कि थी शिक्षा एकमात्र निवेश जिसका स्टॉक कभी नीचे नहीं गिरता। जितनी शिक्षा बढ़ती है उतनी हमारी साहित्य में जानकारी बढ़ती है, उतना हमारा दिमाग, हमारा जीवन समृद्ध होता है।
1: हिंदी साहित्य में भी कई ऐसे महान नाम हैं जिन्होंने अपने लेखन और विचारों से समाज को नई दिशा दी है। उन्हीं महान व्यक्तियों में से एक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी।
2: बिल्कुल शारदा, हिंदी साहित्य में उनका नाम बहुत सम्मान और आदर के साथ लिया जाता था। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम उनके जीवन और योगदान से जुड़ी कुछ खास बातें अपने श्रोताओं के साथ साझा करेंगे।
1: दोस्तों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 15 मई 1864 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में हुआ था। बचपन से ही उनकी रुचि पढ़ाई और साहित्य की ओर थी। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा प्राप्त की और अपने ज्ञान के बल पर साहित्य जगत में एक अलग पहचान बनाई।
2: दोस्तों, वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे बल्कि महान संपादक, समाज सुधारक और मार्गदर्शक भी थे। हिंदी भाषा को सरल, प्रभावशाली और व्यवस्थित रूप देने में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।
1: उस समय हिंदी साहित्य एक बदलाव के दौर से गुजर रहा था। भाषा में एक रूपता और स्पष्टता की जरूरत महसूस की जा रही थी। ऐसे समय में आचार्य द्विवेदी ने हिंदी को नई दिशा देने का काम किया।
2: उन्होंने प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती का संपादन किया, जो समय साहित्य और विचारों का एक बहुत बड़ा मंच माना जाती थी।
1: दोस्तों, हिंदी साहित्य के एक पूरे कालखंड को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है।
2: दोस्तों, उनके लेखन में सिर्फ साहित्यिक सौंदर्य ही नहीं बल्कि समाज सुधार और देशभक्ति की भावना भी दिखाई देती थी।
1: उन्होंने शिक्षा, नैतिकता और सामाजिक सुधार जैसे विषयों पर भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया।
2: सच में, किसी भी भाषा का विकास तभी संभव होता है जब उसे सही दिशा देने वाले लोग मिले, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा को वही मजबूत आधार देने का काम किया।
1: सच है, आज भी साहित्य के विद्यार्थी, लेखक और हिंदी प्रेमी उनके योगदान से प्रेरणा लेते हैं। उनकी रचनाएं और विचार हमें याद दिलाते हैं कि हिंदी साहित्य कितना जरूरी होता है।
2: बिल्कुल।
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी।

0: 90 साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: तुझ संग प्रीत लगाई सजना सजना,
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश

0: होता है
1: तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है। आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: दोस्तों, साइंस ने हमारे जीवन को बहुत ही इजी और मॉडर्न बना दिया है। आज हर सेक्टर में नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो या एग्रीकल्चर फील्ड हो या एनवायरनमेंट से जुड़ा कोई काम हो।
1: बिल्कुल शारदा, और साइंस की एक ऐसी ही ब्रांच जिसे हम कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी, जिसने कई क्षेत्रों में नए बदलाव लाने का काम किया है।
0: दोस्तों, जैव प्रौद्योगिकी का संबंध जीवित चीज़ों यानी प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के उपयोग से होता है, जिनकी मदद से नई तकनीकें और उपयोगी उत्पाद विकसित किए जाते हैं।
1: अगर आसान शब्दों में कहें तो विज्ञान और जीव विज्ञान को मिलाकर मानव जीवन को बेहतर बनाने का जो प्रयास किया जाता है, उसे ही जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है।
0: दोस्तों, आज इसका उपयोग कई क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे खेती में बेहतर बीज तैयार करना, बीमारियों की पहचान करना और नई दवाइयाँ विकसित करना।
1: खासकर मेडिकल फील्ड में जैव प्रौद्योगिकी ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कई वैक्सीन्स और लाइफ सेविंग मेडिसिन्स को तैयार करने में इसका उपयोग किया जाता है।
0: इसके अलावा खेती में भी यह तकनीकी किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो रही है। इससे ऐसी फसल तैयार करने में मदद मिलती है जो कम समय में अच्छी उपज दे सके।
1: और पर्यावरण संरक्षण में भी इसका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, कई वैज्ञानिक ऐसे तरीके विकसित कर रहे हैं जिनसे प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सके।
0: जैव प्रौद्योगिकी आज युवाओं के लिए एक उभरता हुआ करियर ऑप्शन भी बन जाता है। इस क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन की काफ़ी संभावनाएं हैं।
1: और यही कारण है कि आज के समय में साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति युवाओं की रुचि लगातार बढ़ रही है।

0: दोस्तों, आज के समय में इंटरनेट हमारी डेली लाइफ का बहुत ही बड़ा हिस्सा है। जब हम पढ़ाई करें तो हम इंटरनेट यूज़ लेते हैं, कोई काम होता है तो हम इंटरनेट यूज़ लेते हैं, ऑनलाइन पेमेंट हो तब, या किसी से जुड़ना भी हो तब भी हम इंटरनेट यूज़ लेते हैं।
1: बिल्कुल शारदा, और यही वजह है कि आज डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। इसी दिशा में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है पीएम वाणी योजना।
0: दोस्तों, पीएम वाणी योजना का पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। यानी इस योजना को भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई सुविधा को बढ़ावा देने में हेल्प करने के लिए स्टार्ट की गई है।
1: बिल्कुल, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को आसानी से और कम खर्च में इंटरनेट की सुविधा मिल सके, खासकर उन क्षेत्रों में जहां कनेक्टिविटी की कमी महसूस होती है।
0: इस योजना के तहत छोटे दुकानदार, लोकल बिजनेसेस और अन्य लोग पब्लिक वाईफाई सर्विस उपलब्ध करा सकते हैं।
1: यानी अब छोटे स्तर पर भी लोग डिजिटल सर्विसेज से जुड़कर नई संभावनाओं की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल, इससे विद्यार्थियों, युवाओं और छोटे व्यापारियों को काफी मदद मिल सकती है,
1: खासकर ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल पेमेंट्स और जानकारी के लिए।
0: और सबसे अच्छी बात यह है कि डिजिटल सुविधाओं का विस्तार अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है।
1: सच में टेक्नोलॉजी तभी सफल मानी जाती है दोस्तों, जब उसका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे।
0: पीएम वाणी योजना भी डिजिटल इंडिया की दिशा में एक ऐसा ही कदम माना जाता है, जो लोगों को कनेक्टिविटी और नई अपॉर्चुनिटीज से जोड़ने का प्रयास करती है।

0: दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण रोजगार सूचना। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स द्वारा वर्ष 2026 के लिए कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो देश सेवा के साथ एक सम्मानजनक सरकारी नौकरी की तलाश में है।
1: दोस्तों, इस भर्ती अभियान के तहत लगभग 9,195 पदों पर भर्ती की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 मई 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक
0: और दोस्तों, आप इसकी अधिक जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम के शुरुआत में हमने आपसे पूछे थे दो सवाल। अब समय हो चुका है उन सवालों के उत्तर देने का। तो आज का हमारा पहला सवाल था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की करंट रिपोर्ट के अनुसार AI अडॉप्शन में कौन सा देश सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है? और इसका सही उत्तर है भारत।
1: और दोस्तों, आज का दूसरा सवाल था, यूनेस्को ने 2026 के लिए किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक इनिशिएटिव में विशेष रिकॉग्निशन दिया है? तो इसका उत्तर है वाराणसी।
0: उम्मीद करते हैं आपने सही उत्तर सोचे होंगे। तो दोस्तों, आज हमने आज की बचत, कल की आय, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जैव प्रौद्योगिकी, PM वाणी योजना जैसे विषयों पर चर्चा करी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा साथ बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए दीजिए हमें इजाज़त, कल फिर हाजिर होंगे इसी समय इसी वक्त। मैं थी आपकी रेडियो होस्ट एंड दोस्त वसुंधरा आचार्य।
1: और मैं हूँ शारदा नैन।
0: नमस्कार।

अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रही थी शारदा नयन और वसुंधरा आचार्य। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 5:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए अब आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा।

संध्या 7 बजे हमारे स्टूडियो से प्रसारित होगा ग्रामीण जगत, हमारे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे बजरंग सारस्वत और दीवान दान रत्नू। चर्चा होगी स्मार्ट कृषि के बारे में, जल संचयन, आधुनिक और परंपरागत प्रयास, और उसके साथ में आज चर्चा हो पाएगी मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना और मोटे अनाजों से निरोगी काया। इनके साथ में हमारे ग्रामीण श्रोता लुफ्त उठा पाएंगे लोकगीतों का। ये कार्यक्रम प्रसारित होगा संध्या 7 बजे।

सुगम संगीत आप सुन पाएंगे संध्या 7:45 पर। रात्रि 8 बजे और रात्रि 9:15 पर आप और हम दोनों साथ में होंगे फिल्म संगीत के। लोक संगीत आप सुन पाएंगे रात्रि 8:30 पर हमारे स्टूडियो से।

रात्रि 8:45 पर हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा समाचार संध्या, और रात्रि 9 बजे आप सुन पाएंगे न्यूज़ @9 हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: रात्रि 9:30 पर आज आप सुनेंगे परिचर्चा, जिसका विषय है शिक्षा का आधुनिकीकरण और बच्चों का भविष्य। संचालन कर रहे होंगे इसमें हेम शर्मा और प्रतिभागी होंगे संजू श्रीमाली और राजेश रंगा। रात्रि 10:00 हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम गुलिस्तां, जो है एक उर्दू कार्यक्रम। ये प्रसारित होगा रात्रि 10:00 हमारे जयपुर केंद्र से। रात्रि 10:30 पर होगा शास्त्रीय संगीत NV पटवर्धन के गायन ख्याल जयंत मल्हार को। इनके साथ में तबले पर संगत करेंगे रहमान खां और सारंगी पर संगत होगी रजब अली की। संध्या 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, पश्चात जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे हमारे जयपुर केंद्र से। छह बजकर पांच मिनट पर होगा फिल्म संगीत और आज के ये गीत होंगे एक ही फिल्म से। ये थी आज के हमारे कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ज और FM 101.6 मेगाहर्ज पर संध्या के 6:00 को है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिएगा हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने UAE पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: स्वीकार करना ही है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करे और विनम्रता का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
3: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक MOU पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर UAE ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और UAE के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉ जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की।

सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैनिक समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। श्री अराग्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए हैं।

0: पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने RG कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जाँच कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलालाउत वितिदर्शन से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 6:05 हुए हैं और ये समय है फिल्म संगीत का। तो आज की इस फिल्म संगीत में खास बात यह है कि आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे और गीत सुनवाएंगे आप लोगों को केवल एक ही फिल्म से। और आज हमने उस फिल्म का जो सिलेक्शन किया या चयन किया वो फिल्म है मेरे हमसफर। इस फिल्म के बारे में हम और बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं इसके गीत के साथ में। और ये गीत बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, जिसमें आवाज़ थी महेंद्र कपूर की और उनका साथ दे रहे थे बलबीर। मौसम है सुहाना इस गीत के साथ में, फिर आगे के मौसम के सुहाना यानी इस सुहाने मौसम में हम चर्चा करते रहेंगे। तो सुनिए पहले ये गीत, फिर करते हैं हम चर्चा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरे हमसफर नाम से भारतीय सिनेमा में मुख्य रूप से 1970 में एक बेहद लोकप्रिय ये फिल्म आई थी। इसका जो रिलीज हुई थी वो हुई थी 1970 में। इसके निर्देशक थे दुलाल गुहा और निर्माता थे यूसुफ तेनाली। इसके मुख्य कलाकार थे जितेंद्र और शर्मिला टैगोर, और साथ में इनके थे बलराज साहनी। इस फिल्म की एक कहानी जो है श्रोताओं मित्रों की, एक सीधे साधे ग्रामीण युवक जो जितेंद्र है इनके, जो इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी किस्मत आजमाने और काम की तलाश में मुंबई में आते हैं। तब एक ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करते हैं और रास्ते में उनकी मुलाकात शर्मिला टैगोर यानी कि तरुणा से होती है, जो एक परिवार से है और अपनी मर्जी से घर छोड़ करके जाती है। और फिर इन दोनों के बीच में एक अच्छा सा संबंध तैयार होता है और तब ये कहानी उस मोड़ पर आती है जब कहीं ये दोनों बिछड़ जाते हैं। फिर जो है तरुणा यानी कि शर्मिला टैगोर जो है जाकर के एक फिल्म इंडस्ट्री में एक काम भी करती है। इस बीच में बहुत सारे अच्छे से गीत भी हैं इस फिल्म में, और इस फिल्म का संगीत जो था वो बहुत लोकप्रिय हुआ था। इसके जो संगीतकार थे वो थे कल्याण जी आनंद जी, और गीतकार थे आनंद बख्शी साहब। इसका एक गीत जो मुकेश जी की आवाज में था, आपको याद आया होगा, और उनके साथ में थी लता मंगेशकर। चलिए पहले इस गीत को सुनते हैं, फिर चर्चा करते हैं इस सदाबहार फिल्म के बारे में।

जो भी आपने गाना सुना ये अपने समय का एक बेहतरीन गाना था, और मैं अपने पसंद की बात क्यों कहूँ, मैं ये कहूँ कि आज के समय भी ये गाना जब कोई सुनता है तो उसको गुनगुनाता जरूर है। चलिए इस गाने के विषय पर थोड़ी बात करें। सदाबहार गाने को किसी बंद स्टूडियो में फिल्माया नहीं गया था, बल्कि उस समय उसे असली लोकेशन पे मतलब कि दर्शाया गया था या फिल्माया गया था। अगर दोस्तों, अगर आपने ये गीत सुना है और अगर आपने इस गीत को देखा है तो देखना, इसके अंदर जितेंद्र और शर्मिला टैगोर का ये गीत जो है एक ट्रक के ऊपर है, यानी कि ट्रक के अंदर ट्रक चल रहा है और उसके अंदर वो दोनों पीछे हैं और वो ये गीत गा रहे हैं। खुले रास्तों पर फिल्माया गया ये गीत था, और उस दौर में आज की तरह आधुनिक और हल्के कैमरे की क्रेन नहीं होती थी, बल्कि भारी भरकम कैमरों को एक साथ में चलते हुए ट्रक के आगे या साथ में चल रही गाड़ी पर बांधकर बेहद सूझबूझ से शूट किया गया था। जितेंद्र और शर्मिला टैगोर को बिना किसी बड़े कट्स के लगातार चलते हुए ट्रक में गाने के एक्सप्रेशन देने थे, जो उस समय के हिसाब से तकनीकी रूप से काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। अगर हम इनके गानों की बात करें तो इसका एक गाना और भी बहुत फेमस हुआ था उस समय, और ये बहुत अच्छा गीत था, और वो ये गीत था मेरा परदेसी ना आया। चलिए सुनते ये गीत, फिर चर्चा करते हैं।

देखिए मित्रों, जो अभी आपने ये गाना सुना उसकी गायिका थी लता मंगेशकर जी। पर्दे पर अभिनय, ये गाना फिल्म की मुख्य अभिनेत्री शर्मिला टैगोर यानी कि तरुणा पर फिल्माया गया था। इसके अलावा अगर इस विषय पर और बात करें तो इस संगीत की सबसे बड़ी विशेषता थी इसकी, इसमें कल्याण जी आनंद जी की धुन दी गई थी और इसमें बांसुरी और सितार का जो इस्तेमाल किया गया था वो सुनने वालों के लिए बेहद ही सुखद था। हालांकि ये एक विरह गीत या यूं कहें कि एक सैड सॉन्ग था। और ये गीत तब फिल्माया गया जब इस फिल्म के अंदर शर्मिला टैगोर यानी कि तरुणा जितेंद्र से दूर हो जाती है और उसकी प्रतीक्षा कर रही है, तब उसके ऊपर ये फिल्म का गीत फिल्माया गया था। चलिए इस विषय पर और आगे चर्चा करते हुए इसका एक गीत और सुनते हैं जो लता मंगेशकर की ही आवाज़ में था। इस फिल्म की एक बात और बताएं कि उस समय अभिनेता जितेंद्र बहुत ही अपनी बुलंदियों को छू रहे थे और उनको उस समय जंपिंग जैक के नाम से जाना जाता था। अभिनेता जितेंद्र की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनके सफ़ेद जूते, तेज तर्रार डांस स्टेप को उछल कूद वाले गानों के लिए जाना जाता था। लेकिन निर्देशक दुलाल गुहा ने इस फिल्म में उनकी स्थापित इमेज को पूरी तरह बदल दिया। फिल्म में जितेंद्र पर कोई भी ऐसा भारी भरकम या तेज डांस नहीं दिखाया गया था। इस फिल्म में उन्हें केवल एक शांत, गंभीर और जमीन से जुड़ा हुआ दिखाया गया था। जो भी हमने गाना सुना उसके अंदर हमेशा की तरह कल्याण जी आनंद जी का संगीत और आनंद बख्शी के बोल थे। दीजिए इस फिल्म का एक गीत और सुनिए।

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत था। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। मित्रों, आज की हमारी ये जो मेरा हम सफर फिल्म का जो भी हमने आपने गीत सुनाया, हमारा सफर यहीं समाप्त होता है या संपन्न होता है। और इस गीत के साथ कि तुम हमसे मिलो हम तुमसे मिले, कुछ बात चले कुछ रात ढले, इसके साथ ही हमारे फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम एक ही फिल्मों के गीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 6:30 होने को है। अब आप हमारे जयपुर केंद्र से सुनिएगा हिंदी में प्रादेशिक समाचार, पश्चात जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात राजस्थानी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार राज्य का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी में बनाया जाएगा इस क्लस्टर से हर साल 6 करोड़ चिप का निर्माण होगा राज्य में जनगणना के पहले चरण के तहत कल से मकान सूचीकरण का काम किया जाएगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता और प्रभावी विकल्प और मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित होगी समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से राज्य का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी में बनाया जाएगा इस क्लस्टर में 1200 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है यहां से हर साल 6 करोड़ चिप्स का निर्माण किया जा सकेगा साथ ही करीब 2500 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका शिलान्यास किया इसके साथ ही 400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया इन परियोजनाओं में भिवाड़ी में एलसीना इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स 34 एमएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और खैरथल तिजारा के कई विकास कार्य शामिल हैं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम कर रही है और पिछले दो सालों में 35 नई नीतियां लागू की गई हैं उन्होंने दिल्ली हरियाणा राजस्थान को जोड़ने वाली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना और यमुना जल समझौते के काम में तेजी आने की भी जानकारी दी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने संबोधन में कहा कि देश में सेमीकंडक्टर की 12 इकाइयां स्थापित की गई हैं जिससे भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिल रही है उन्होंने कहा कि देश ने पिछले 12 साल में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है
1: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता और प्रभावी विकल्प है श्री शर्मा आज जयपुर में राजस्थान

0: एनर्जी कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संसाधनों के संयमित उपयोग से ही ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त होगा। ईंधन बचत का संदेश देने के लिए मुख्यमंत्री खुद इलेक्ट्रिक वाहन से कार्यक्रम स्थल पहुंचे। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की बचत एक सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी वाहनों के सीमित और विवेकपूर्ण उपयोग के निर्देश जारी किए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में अग्रणी है और आने वाले समय में ऊर्जा प्रदाता राज्य बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 लागू की गई है।
1: राजस्थान भारत में अक्षय ऊर्जा के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। हमारे राज्य में 828 गीगावाट सौर ऊर्जा और 284 गीगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता उपलब्ध है। अब तक राज्य में 47 गीगावाट से अधिक की अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है और राजस्थान सौर परियोजना स्थापित में देश में अग्रणी है। हमारी सरकार ने राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है। इसमें वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट क्षमता स्थापना के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
0: राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत कल से मकान सूचीकरण का काम किया जाएगा। 14 जून तक चलने वाले इस चरण के लिए प्रगणक घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इसके लिए प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से प्रगणकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा एंट्री करने, परिवारों की सही जानकारी दर्ज करने और सर्वे के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों का अभ्यास कराया गया। वहीं स्वगणना का विकल्प का आज आखिरी दिन है। स्वगणना के जरिए लोगों ने 1 मई से खुद अपने मकान और परिसंपत्तियों से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन दर्ज की। जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में 23 से 25 मई तक आयोजित होने वाले ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 को स्थगित कर दिया है। कृषि आयुक्त ने आज इस बारे में एक आदेश जारी किए। आदेश में कहा गया है कि कार्यक्रम को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर आयोजित करने वाली थी, जिसके लिए पिछले 2 माह से व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ बातचीत के दौरान चुनौतीपूर्ण समय में यूएई की भूमिका की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जून में होने वाली अगली परीक्षा की फीस नहीं ली जाएगी। शिक्षा मंत्री ने

0: कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए, 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है, भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को और मजबूत करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सीबीआई नीट पेपर लीक मामले की तह तक जाएगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि स्वास्थ्य केवल व्यक्ति का निजी विषय नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र से जुड़ा मसला है। श्री शेखावत आज बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में एक अस्पताल के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बांसवाड़ा और कुशलगढ़ जैसे आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में लंबे समय तक संसाधनों की कमी रही, जिसके कारण स्थानीय लोगों को उपचार के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था, लेकिन केंद्र सरकार ने आदिवासी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया है। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत के बाद अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सरिस्का प्रशासन ने कैनाइन डिस्टेंपर नामक खतरनाक वायरस के खतरे को देखते हुए अपनी निगरानी टीमों को सक्रिय कर दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार ये संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित कुत्तों के माध्यम से बाघों में फैलता है। वर्तमान में सरिस्का में 52 बाघ हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन अब आसपास के क्षेत्रों में कुत्तों के टीकाकरण और बाघों की विशेष निगरानी पर जोर दे रहा है। भरतपुर के मुक्केबाज यश कुमार ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। यश ने 33 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान के खिलाड़ी को 4-1 से हराकर ये उपलब्धि हासिल की। यश कुमार जूनियर वर्ग में इस चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीतने वाला राजस्थान के पहले मुक्केबाज बन गए हैं। उनकी इस सफलता पर खेल जगत में खुशी की लहर है। और अब मौसम। प्रदेश के कई भागों में पिछले 24 घंटे में आंधी और बारिश की गतिविधियों से ज्यादातर स्थानों पर तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। इससे आमजन को भीषण गर्मी से मामूली राहत मिली है। हालांकि अभी भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दूसरी ओर आज दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर और जयपुर जिले में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार कल से फिर तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। सीमावर्ती जिलों के लिए विभाग ने तेज गर्मी और लू का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी में बनाया जाएगा। इस क्लस्टर से हर साल 6 करोड़ चिप का निर्माण होगा। राज्य में जनगणना के पहले चरण के तहत कल से मकान सूचीकरण का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता और प्रभावी विकल्प। और मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से भरतपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं शिव कुमार वशिष्ठ। जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना के दौरे की। हाल ही में श्री मीना ने जिले के भुसावर क्षेत्र के झरोटी गांव में आयोजित पद दंगल कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में लोक गायन और लोक नाट्य को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये हमारी संस्कृति की पहचान है, इसकी जानकारी नई पीढ़ी तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने पर जोर दिया। डॉक्टर मीणा ने इस दौरे में दलपुरा ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल लगाई। उन्होंने जनसुनवाई भी की। इस दौरे

0: किसान ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क और अन्य समस्याओं से कृषि मंत्री को अवगत कराया। कृषि मंत्री ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नए बने कक्षा कक्षों का लोकार्पण किया। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए अभिभावकों से बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने की अपील की। उन्होंने लोगों से राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और किसानों से जैविक खेती अपनाने की भी अपील की। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक सांसद संजना जाटव की अध्यक्षता में भरतपुर में आयोजित हुई। इसमें केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान सांसद ने कहा कि सरकार की योजनाओं का पारदर्शिता से समयबद्ध क्रियान्वयन कर आम लोगों को फायदा पहुंचाना चाहिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को बिजली, पानी, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र लोगों का चयन कर गुणवत्तापूर्ण आवास बनवाने को कहा। साथ ही राजीविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन कर ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत पिछले दिनों एक दिन के भरतपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने अपना घर आश्रम में चार नए भवनों का लोकार्पण किया, साथ ही बालिका सदन का भूमि पूजन किया और राष्ट्रीय आश्रम तथा गौशाला की कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। इस मौके पर श्री गहलोत ने कहा कि दीन दुखियों की सेवा करना ही सच्ची मानवता है। उन्होंने सेवा और संस्कारों पर जोर देते हुए कहा कि तकनीकी प्रगति के साथ साथ बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, यही हमारी संस्कृति है, इसे बनाए रखना नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने पिछले दिनों शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से शैक्षिक सुधारों के लिए स्वयं प्रेरित होकर ब्लॉक वार कार्य योजना बनाकर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। जिला निष्पादन समिति की बैठक में उन्होंने मिड डे मील योजना की सामग्री की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति शाला दर्पण पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड करवाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जिले में 428 कन्याओं के विवाह पर लगभग 1,96,00,000 रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। कन्याओं के विवाह के लिए दी गई सहायता राशि से गरीब परिवारों को आर्थिक संबल मिला है। जिले में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता फैलाई गई। इस दौरान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बारे में किशोरियों और महिलाओं को जानकारी दी गई। आठवें पोषण पखवाड़े का आयोजन भी पिछले दिनों जिले में हुआ। इस दौरान बच्चों और महिलाओं में स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता फैलाई गई। विभिन्न स्थानों पर संगोष्ठियां आयोजित कर मातृ और शिशु पोषण के महत्व और एनीमिया से संबंधित जानकारियां दी गई। इसके अलावा मोटे अनाज और स्थानीय खाद्य पदार्थों की प्रदर्शनी लगाकर पोषण के महत्व से अवगत कराया गया। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिले में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। इस मौके पर भरतपुर के श्री शमशानेश्वर महादेव मंदिर में विशेष धार्मिक कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान भजन कीर्तन सहित अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सहित आसपास के जलीय क्षेत्र में बीते दिनों सारस गणना की गई। मचानों पर बैठकर उद्यान के कार्मिकों, पर्यावरणविद, गाइड और पक्षी प्रेमियों ने इस काम में शिरकत की। इसके साथ ही भरतपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, राज्य रो पहलो सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी माए बनायो जावेला, हर साल 6 करोड़ चिप बनेला। राज्य में जनगणना 2027 रा तेतकाल मकानारी लिस्ट बनावन रो काम शुरू करियो जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ऊर्जा री बचत ना इनरा उत्पादन रो सब सस्तो और असरदार विकल्प बतायो। और मेडिकल कॉलेज में दाखिला सारू ली जावन वाली नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून ओजू वेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। राज्य रो पहलो सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी माए बनायो चावे।

0: भेटला। वो क्लस्टर बनावण रा काम माय करीब 1200 करोड़ रुपया रो निवेश फैला। ई कारखाना माय हर साल 6 करोड़ चिप बनाई जा सकेला। ऐसा गई करीब 2500 लोगों ने नौकरी धंधा रा मौका मिलेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज वर्चुअल तरीका इन रा काम री शुरुआत कीनी। वह ईसा गई 400 करोड़ रुपये बत्ता खर्च वाली न्यारी न्यारी परियोजनाओं रा काम री नींव रखी और पूरा व्या काम रो उद्घाटन कीनो। ई मौके मुख्यमंत्री कहो कि राज्य सरकार प्रदेश माए निवेश ने बढ़ावो देवन सारू लाडला 2 साल माए 35 नीतियां बनाई। वह दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान ने जोड़बा वाली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना और यमुना नदी रा पानी जुड़िया करार रातेत काम माय तेजी लावण री जानकारी दिनी। श्री शर्मा बतायो कि सरकार नौजवाना सारू पंचायत लेवल माथे अटल ज्ञान केंद्र खोलण माथे ध्यान दे रही है। ई मौके केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कहो कि देश माए सेमी कंडक्टर बनावण रा 12 कारखाना लगाई चया है और लाडला 12 साल माए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हल्का माए 6 गुणा बढ़ोतरी सागे। अब कुल उत्पादन 13 लाख करोड़ रुपया लेवल के न पोग रियो है।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
0: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ऊर्जा री बचत ना इंडरा उत्पादन रो सबो सस्तो और असरदार विकल्प बतायो है। वह आज जयपुर माए राखी जिया राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव माए बोल रहा है। श्री शर्मा कहो कि पेट्रोल डीजल री बचत करण री सगला री जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यू लाडला दिना करी जी अपील पाछे मुख्यमंत्री कहो कि राज्य सरकार सरकारी गाड़ियां सीमित तादाद में काम लेवण जुड़िया निर्देश जारी कीना है। वह कहो कि राजस्थान सूरज री रोशनी बिजली बनावण रा हल्का माए देश माए अगाड़ी है। मुख्यमंत्री कहो कि अक्षय ऊर्जा ने बधाओ देवण सारू राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 लागू करी जी है। वह कहो कि सरकार साल 2030 ताई 115 गीगावाट अक्षय ऊर्जा रो लेवल हासिल करण न ध्यान रखता थका काम कर रही है।
2: राजस्थान भारत में अक्षय ऊर्जा के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। हमारे राज्य में 828 गीगावाट सौर ऊर्जा और 284 गीगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता उपलब्ध है। अब तक राज्य में 47 गीगावाट से अधिक की अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है और राजस्थान सौर परियोजना स्थापित में देश में अग्रणी है। हमारी सरकार ने राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है। इसमें वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट क्षमता स्थापना के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
0: राज्य में जनगणना 2027 रा पहला दौर रातेत काल मकानारी लिस्ट बनावण रो काम शुरू करियो चावेला। 14 जून ताई चालन वाला इन काम सारू प्रगणक घर घर जार जानकारी भेड़ी करेला। इन सारू प्रदेश माए न्यारी न्यारी ठोणा सिखावण शिविरा रे जरिए प्रगणकां ने जरूरी सिखावण दीरी जी। वाने मोबाइल ऐप रे जरिए जानकारियां रो इंदराज करण, परिवारा री जानकारी दर्ज करण और सर्वे रे दौरान राखी जावण वाली सावधानियां रे बारे माए अभ्यास कराई चियो। इन बीच स्वगणना करण रो आज आखिरी दिन है। स्वगणना रे जरिए लोग खुद 1 मई हमारा मकान और परिसंपत्तियां जुड़ी जानकारी ऑनलाइन तरीका दर्ज करा रहा है। जयपुर माए 23-25 मई ताई राखी जावन वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 टाल दी रिची है। कृषि आयुक्त रिओरू आज ई 12 मई हुक्म जारी करी चिया। ध्यान जोग है कि इन कार्यक्रम सारू लाडला 2 महीनाओं तैयारियां करी जा रही है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान।

0: स्थान पर आई सुन सको हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात रा अबुधाबी माए वठेरा राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सागे मुलाकात कीनी। इन दौरान ऊर्जा सहयोग और दुनिया देशों बीच कारोबार जुड़ी चर्चा करी ची। प्रधानमंत्री मोदी यूएई माथे हाल ही माए करी जया हमला री करड़ी निंदा कीनी। वह मुश्किल वगत में यूएई रा काम री सराहना करता थका यूएई सारू भारत री हिमायत री पुष्टि कीनी। श्री मोदी कहो कि तनातनी रा मौजूदा दौर में बातचीत और कूटनीति आगे चालन रो गेलो है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: देश रा मेडिकल कॉलेज में दाखिला सारू नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून ने उजूली जावेला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली में नीट यूजी परीक्षा रे बारे में खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि इन सारू 14 जून ताई एडमिशन कार्ड जारी कर दिया जावेला। श्री प्रधान कहो कि 21 जून ने उजू ली जावन वाली ई परीक्षा री कोई फीस नहीं ली जावेला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कहो कि हाल ताई ओएमआर शीट माथे ली जा रही नीट परीक्षा आवता साल कंप्यूटर रे जरिए ली जावेला।
2: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने त्वरित एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
0: शिक्षा मंत्री कहो कि विद्यार्थियों ने परीक्षा देवन सारू पसंद रो शहर चुनबारो मौको दियो चावेला। मंत्री कहो कि सीबीआई नीट पेपर लीक मामला री पूरी जांच करेला। ध्यान जोग है कि 3 मई ने भी नीट परीक्षा 2026 पेपर लीक वेवन री शंका पाछे रद्द करती रिची ही। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि स्वास्थ्य केवल इंसान रो निजी मुद्दों नहीं है बल्कि पूरा समाज और देश हूँ जुड़ियो है। वे आज बांसवाड़ा जिला रा कुशलगढ़ में एक अस्पताल रा उद्घाटन रे मौके बोल रहा है। केंद्रीय मंत्री आयुष्मान भारत योजना रो जिक्र करता थका कहो कि इन तहत 5 लाख रुपया ताई रा खर्च रो इलाज मुफ्त करावन रो सुबी तो दियो चावे है। मध्य प्रदेश रा कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघा री मौत रा मामला पाछे अलवर जिला रा सरिस्का टाइगर रिजर्व में सावचेती बधा दीरी ची है। प्रशासन कैनाइन डिस्टेम्पर नाम रा खतरनाक वायरस रा खतरा न ध्यान रखता थका निगरानी टीमा ने काम माथे लगा दीनी है। जानकारा ने मुजब ओ संक्रमण संक्रमित कुत्ता रे जरिए बाघा माए फैले है। सरिस्का टाइगर रिजर्व माए 52 बाघ है जाने संक्रमण बचावन सारू आरएसआरए रा कुत्ता रे टीका लगावन माथे जोर दियो चारियो है। भरतपुर रा मुक्केबाज यश कुमार उज्बेकिस्तान रा ताशकंद माए राखी जी एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप माए सोना रो तमगो जीतियो है। वह 33 किलोग्राम भार वर्ग रा फाइनल मुकाबला में कजाकिस्तान रा खिलाड़ी ने 4-1 हराया। यश कुमार ई चैंपियनशिप रा जूनियर वर्ग में सोना रो तमगो जीतने वाला राजस्थान रा पहला मुक्केबाज बन गया है। अरब मौसम प्रदेश रा कई हल्का माए लाड़ला 24 घंटा माए आंधी और बारिश वेवन रे कारण पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई उतरियो। इणु गर्मियों थोड़ी सत्ता मिली। हालांकि हाल ही कई छोड़ा ऊंचो ऊंचो तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस बीच दर्ज करियो जा रियो है। दूजी कानी आज दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और जयपुर जिला माए कठे कठे जोरदार बायरो बजन सागे हल्की बिरखा भी। मौसम विभाग रे मुजब काल ओजू पारो चढ़बारा आसार है। महकमो सरहदी जिला सारू तेज

0: गर्मी और लू बाबत चेतायो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 31 मई ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इन सारो आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 29 मई तई राय दे सको हो। नंबर ओ जो सुन ले रहा सा 1800117800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ले रहा हो। राज्य रो पहलो सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी माए बनायो जावेला। हर साल 6 करोड़ चिप बनाई जावेला। प्रदेश माए जनगणना 2027 राते कालू मकाना री लिस्ट बनावन रो काम करियो जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ऊर्जा री बचत न इनरा उत्पादन रो सब सस्तो और असरदार विकल्प बतायो। और मेडिकल कॉलेज माए दाखिला सारू ली जावन वाली नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून न ओजो भेला। ऐसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल समारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। श्रोताओं अभी संध्या के 7 बजे हैं और ये समय है हमारे ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम ग्रामीण जगत का। आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे हैं बजरंग सारस्वत और दीवानदान रत्नू।

0: ग्रामीण जगत कार्यक्रम सुनने वाले सगले किसान बयान है आपरे साथी दीवान दान रत्नू
1: और बजरंग सारस्वतरा घना घना राम राम
0: राम राम
1: दीवान भाई थाने भी मारा घना घना राम राम
0: मोकला मोकला राम राम बजरंग भाई मोकला मोकला राम राम
1: दीवान भाई की तापमान जको है की सुधार पर है अबार गर्मी कम है अबे में बादलिया छायोड़ा है आंधी जकी है बीरो कोई भरोसो को नहीं के कद आ जावे
0: और देखो सा आंधी देखो आंधी रा तो दिन है क्योंकि इन दिना में आंधी आया करे है आंधी एक और भी फायदो यो के तापमान कहीं ले में आयो कहीं कम हो है अब आर भी समाचार में अब आ सुनियो हो कि पूरे राजस्थान में आंधी रे कारण तापमान कहीं कम हो लेकिन वो कालों पाछो तापमान बढ़ेला और किसान भाई ने ध्यान रहेला
1: बिल्कुल सा पर देखो अबे पहली वाली बात गई अबे जी का किसान भाई है बे हाईटेक हो गया है और खेती जकी है बा होगी है स्मार्ट तो स्मार्ट खेती प्रगतिशील किसान है हाईटेक किसान है बे नुई भांत भांतरी जिकी तकनीका हैं बीरे सारे उबे कर रिया है तो खेती में नुकसान भी कम होवे पानी की बचत होवे समय कम लागे मुनाफो बत्तो होवे
0: और पहला किसानान में ओ भी ध्यान पड़ जावे के आवण वाले दिना में किन प्रकार मौसम रहेला क्योंकि आ तकनीक जो आप बताए बजरंग भाई हाईटेक तकनीक रे मार्फत देखो पहला ही किसान भाई है भाई सगलो ध्यान रखे मौसम वगैरह आजकल मल्टी टास्क में अपने मोबाइल्स वगैरह में सगला में ध्यान पड़ जावे तो बीहू किसान भाई ने मोकलो फायदो मिलियो है
1: एग्रोमेट एडवाइजरी जकी है जिकी मौसम संबंधी पूर्वानुमान है वो बुलेटिन समय समय पर जारी हुए है मौसम विभाग की तरफ और भी हूँ अपने ध्यान पड़ सके है आने वाला दिन में कहीं कड़ो मौसम रहेला पर दीवान भाई आज राज्य का किसान भाई है वे नैनो यूरिया काम में लेवे है ड्रोन तकनीक काम लेवे है
0: फसल तकनीक भी नई नई तकनीक
1: हाँ और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति फवारा सिंचाई पद्धति फिर थारे बा फसल बिक्री जकी हुए है बा ऑनलाइन बिक्री भी करे है तो भांत भांत रा फायदा हो गया है बिचौलिया दूर हो गया है मेहनत रो पूरो लाभ है वो किसान भाई ने मिलन लाग गयो है
0: बिल्कुल बिल्कुल बजरंग भाई मेहनत रो कोई विकल्प को नहीं अगर मेहनत रहे साथ साथ स्मार्ट तकनीक जुड़ जावे तो सोने और सुहागा

0: स्मार्ट कृषि रो मतलब है कम पानी, कम खाद और कम मेहनत में बम्पर पैदावार।
1: और जैविक खेती भी सागे सागे करा हाँ आपा, तो ऐसा फायदा है। आज रा सब किसान भाया ने जठे कठे भी कृषि विभाग रा प्रशिक्षण कार्यक्रम होवे है, बार महीने भाग लेनो चाहिए। नवी नवी तकनीका हैं बीर बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए, सब योजना मारो लाभ उठावे जागरूक रे, तो
0: बिल्कुल
1: बे
0: बिल्कुल
1: प्रगतिशील किसान भाई स्मार्ट खेती कर हाईटेक किसान बन सके।
0: बन सके। यो ताजो उदाहरण, बढ़िया उदाहरण देखो बजरंग भाई, ओ है कि अपार बीकानेर

0: अब उठावे जागरूक रेर, तो बे
1: बिल्कुल
0: प्रगतिशील किसान भाई स्मार्ट खेती कर हाईटेक किसान बन सके।
1: बन सके। इरो ताजो उदाहरण, बढ़िया उदाहरण देखो बजरंग भाई, ओ है कि अपार बीकानेर क्षेत्र में भी आजकल पोली हाउस खेती होया करे, और पोली हाउस खेती स्मार्ट तकनीक रो एक जोरदार उदाहरण है। और पोली हाउस खेती बारह मास कदी भी हुए, क्योंकि एक पोलीथीन ढक्योड़ी हुए और भी में तापमान आद्रता वगैरह सगड़ा नियंत्रण में हुए, और फसल भी जोरदार हुए, और खेती रिवाज से जमीन भी कम मिले, लेकिन तकनीक स्मार्ट होने हूँ, पैदावार भी बम्पर मिल जाए।
0: दीवान भाई कोई बतावे हो मने के आज की पोली हाउस तकनीक है, इरे मायने जब तापमान नियंत्रित रेवे, कंट्रोल में रेवे, तो जिकी मौसम में नहीं होने वाला साग सब्जियां हैं, फल है, बारो भी उत्पादन आपा कोई भी मौसम में ले सका।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और अपर अठेरा जागरूक किसान भाई है जका प्रगतिशील किसान है, बाने अपारी सरकार बारो चयन कर बाने विदेशा में भेजे है, बठेरी तकनीक समझण वास्ते, बठेरी खेती समझण वास्ते।
1: बिल्कुल सही बात।
0: मोकड़ा जी का ग्रुप है, बे इजराइल जेड़ा देशा में गया है, बठाऊ कम पानी रमाइने कम समय में घने उत्पादन वाली तकनीका सीख रहा है, अपना रहा है, अपारी सरकार बारो सम्मान करे है, एड़े प्रगतिशील किसानारो जागरूक किसानारो जरूरत इन बात रही है कि आपा आ सब योजना मारो तकनीकारो आपा समय रेसा गेरेर लाभ उठावा और दूजा भाइयों ने भी जानकारी देवा।
1: बिल्कुल, और सगला फायदा लेता रहवा। देखो बजरंग भाई, अब बात आगे और भी करा ला आपा, बड़ी घनी चर्चावा है आपारे सामने, लेकिन वक्त हो रहा क्यों है, कोई बढ़िया सी गीतड़ ले रो, तो सीमा मिश्रा रो गौड़ो सुना आओ, गीतड़ लो
0: सुनाओ सर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
3: जलवायु न्याय, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु संकट एक निष्पक्षता का भी मामला है। यह उन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा

0: है जिन्होंने इसे पैदा करने में सबसे कम योगदान दिया है, जैसे कि गरीब लोग, महिलाएं, बुजुर्ग लोग और आने वाली पीढ़ियां। जलवायु परिवर्तन को मानव अधिकार के मुद्दे के रूप में देखने का मतलब है कि सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। यह उन लोगों को साक्षात बनाता है जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। यह देशों और पीढ़ियों के बीच जिम्मेदारी को निष्पक्ष रूप से बांटता है। जलवायु न्याय का मतलब है सबके लिए समानता, शांति और सतत विकास। क्या आप जानते हैं, यदि दुनिया का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो अफ्रीका की आधी से ज्यादा आबादी कुपोषण के जोखिम में पड़ सकती है।
1: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
2: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
3: तो सादीवान जी, गीत तो बहुत ही बढ़िया सुनायो, और अब एक पक्षी की करा बात कामरी, खेती बाड़ी री बात करी, पण हूँ भूल गयो के पानी री बात करनी घनी जरूरी है। अब आने वाले टाइम में बिरखा होवेला तो अपन ने बिरखा रे पानी ने सहेजनो है, और अबार नहरबंदी चाल रही है तो पानी री बूंद बूंद री जी की कीमत है आपा सब जाना है, इन क्षेत्र में रहने वाला सब नागरिक जाने हैं। तो पानी जको है वो जल ही जीवन है, वो अपने जीवन रो आधार है। तो इस बारे में आपा दीवान भाई कहीं बात करा ला।
4: देखो सर, बात बजरंग भाई, आपा हमेशा बात करा हाँ के जल संचयन रही, आपा जल संरक्षण रही, लेकिन आपा जब तक युवा वर्ग है, युवा वर्ग जागृति नहीं ला ही, युवा वर्ग नहीं चेती, तब तक आपा रे देखो दिनों दिन गर्मी ज़्यादा पड़े और दिनों दिन हर साल देखा अपार तापमान बढ़ रही है, पानी की कमी हो रही है। और पश्चिम राजस्थान में अपन इन दिनों में ये ताजो उदाहरण दे ले सका कि अबार नहरबंदी क्रम में कितो बीकानेर में कितनी पानी की परेशानी हो रही है। लेकिन वो है कि अपा यदि जल संचयनरी प्रवृत्ति अपनावा, जन जागृति लावा और पानी ने बूंद बूंद बचा रखा, तो हो सके आने वाली जी की भावी पीढ़ी है बीर वास्ते अपन ने विचार करना चाहिए कि अपा किन प्रकार अपा भावी पीढ़ी वास्ते अपन एक तरह रे संसाधन, जल संसाधन बड़ो संसाधन हुए, भावी री पीढ़ी वास्ते एक जीवन अपा बचा सका।
3: तो मोटी बात आ है कि पानी रो जो संग्रह है, पानी री बूंद बूंद बचावण आज रे वगतरा साधन जका है और परंपरागत साधन है, भी मैं आपा तालमेल किया बनावा। तो राजस्थान री आज की प्यासी धरती है, पानी काई मायनो रखे है इन धरती सारू, तो आपा सब जाना है। और परंपरा री बात करा तो आपा रेठेरे जिका टांका है, जोहड़ है, ए सब एक ढांचो कोनी आपा री जीवन रेखा रहा है।
4: और कुआ जोड़
3: आज री नवी पीढ़ी ने आपा ई बारे में कई जानकारी देवा, बाने एक धरोहर सौंपा आपा रे हाथाऊ, बे बीबी ने संभाले तो बढ़िया रेवे।
4: बिल्कुल सही बजरंग भाई, आधुनिक विज्ञान में जो वाटर शेड मैनेजमेंट है जिकन कहे, मतलब अपा किन प्रकार अपा रखा के आने वाले युवा वर्ग वो यूँ जुड़ा हो सके है, जहाँ मत छोटा छोटा बांध बना और पानी ने रोक सका अपा, कुआ तालाब पायतन है। अब देखो आगे बरसात होवेला, तो बरसात होवेला बी टेम अपा तालाब है, तलई है, यहाँ पायतन है, साफ कर रख सका, पायतन मार्फत वो पानी अपा इकट्ठो कर सका। और साथ सबू बड़ी बात है बजरंग भाई कि अपा रूप टॉप हार्वेस्ट सिस्टम है, जिको अपार छत्रो पानी अपा कुंड में स्टोरेज करा, भेड़ो करा, तो ओ इन प्रकार की प्रवृत्ति अपा अपना वाला, तो अपा जिको पालर पानी है, बरसात रो पानी है, जिको अमृत समान
3: अमृत है, बिल्कुल सर,
4: बी ने अपा रोक रखा तो अपा पीवने भी काम आ सके, और पानी रो जो भगवान रे देवड़ो जिको पालर पानी है, बीने भी अपा संचित कर सका।
3: दीवान भाई, पहली अपार खेता में तड़ाई बनावता तो बिने अलग भांतु बनावता है, पर आज जब खेत में तड़ाई बनावा तो प्लास्टिक लाइनिंग वाली जी की तड़ाई है, बिरो चलन बढ़तो जा रही है,

0: आज रेतीली जमीन में भी पानी सोखने की समस्या खत्म होगी है। पहली नीचे प्लास्टिक बिछार, फिर भी ऊपर अपा भात भातरा उपाय कर, फिर भी मैं पानी रो संग्रह करा तो वो पानी है वो चूसे कोनी और लंबे समय तक वो पानी भी मैं बनेवड़ो रेवे
1: रेवे सके। तो आप बात करता है कि पानी संचरण राज्य का तरीका है बे आगे बरसात रो पानी आवेला वर्षा जल संरक्षण अपा करा ला तो सगलों छोटे स्तर ले पर और बड़े स्तर तक अपा कर सका। छोटे स्तर में अपा व्यक्तिगत कर सका, व्यक्तिगत में देखो अपारे घर में बनेवड़ो वे जलकुंड, जलकुंड है, वाटर हार्वेस्ट सिस्टम, वो विभिन्न प्रकार सिस्टम में आप कर सका। मोटे स्तर में सामाजिक रूप में आप गांव रे क्षेत्र में देखो तालाब है, तलाई है, यहाँ साफ सफाई कर परो, इन मार्फत भी आप पानी संचयन कर सका।
0: तो बहुत ही बढ़िया जानकारी दी दीवान भाई। और अब मने उड़ीक है एक आचे से गीतर ले रही हर जसरी, तो कई विचार है
1: सुना सा ओ गीतर लू।

0: मैं आकाशवाणी हूँ। 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर। आकाशवाणी, आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: तुझ संग प्रीत लगाई सजना सजना।
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: होता है।
1: तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।
2: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
1: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: खेतीबाड़ी रे साथ साथ बजरंग भाई आपां बात करा हाँ आपां रे पशुधन री, क्योंकि पशुधन और किसान एक दूसरे रा पूरक हुए।
1: बिल्कुल सा आई हूँ सोचे हो कि मौसम जको है गर्मी रो मौसम है, पशुआ री आपा देखभाल किया करा, पशुआ रो आपा प्रबंधन है बिदो सावचेतियों करा। अब आ बाताई माथे में चाल ही मारे कि भाई पानी री बात कर ली, स्मार्ट खेती री बात कर ली, तो दीवान भाई आपारा ए जका पशुधन है इरो आपा ध्यान रखा हाँ, और ध्यान रखता रखता भगवान ना करे कदई कोई काई किसी हो जावे तो किसान भाइयों ने घणो नुकसान होवे। जिया के दो चार बरसा पहली लंपी वाली बीमारी चाली, तो दुधारू पशु जेका है गाया है बारे शरीर माथे गांठिया ही गांठिया उपड़गी, और मोकड़ो पशुधन जेको है गाया है बे असमय ही पूरी होगी। तो कई कई किसान भाई कई पशुपालक भाई जेका डेयरी व्यवसाय चलावे हा बाने बहुत बड़ो धक्को लाग्यो।
0: बिल्कुल बजरंग भाई के अचानक कदी भी किणी प्रकार रो रोग अपार पशुओं में हो जावे, कदी कदी अपन देखने भी मिले जेको जहाँ लंपी रोग है, लंगड़ा बुखार है, कई कई बीमारियां पशुओं के खतरनाक हुए लाग्या पसी पशु ने जानो पड़े, तो इन प्रकार एड़ी स्थिति में किसान ने सहायता मिले सरकार तरफ। सरकार यदि कोई सहायता देवे तो किसान ने कहीं थोड़ो बहुत पशु री जी की हानि रो पूरो नहीं तो थोड़ो बहुत तो हानि रो पूरो पूरो कहीं फायदो मिल सके है सरकारी बीमा योजना।
1: बिल्कुल सदीवान भाई हूँ सुनी है कि जिया आपा जीवन बीमा करा सका हाँ, बिया ही आपारे पालतू पशुआ रो दुधारू पशुआ रो भी बीमा करा सका हाँ, आ बात मैंने बहुत अच्छी लगी।
0: पशुआ रो भी आपा बीमा हुए है सा, बिल्कुल अचानक कोई बीमारी हुए है, अचानक कोई दुर्घटना हो जावे, पशु री मृत्यु हो जावे, किसान आर्थिक रूप से टूट जावे, तो ऐड़ी स्थिति में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना बा सरकारी तरफ चलाई उड़ी है। अपर राजस्थान सरकार तरफ इन मंगला पशु योजना रे तहत अधिकतम 40,000 रुपए तक रो बीमा कवर मिले है। इनमया नाम मात्र प्रीमियम हिस्सो है वो सरकार में अपारे तरफ जमा हुए, एक बैंक में खातों खोल लीजिए, ये खाते मार्फत वो प्रीमियम जमा राशि हुए, लेकिन इर बदले में अपने खुदा न खास्ता कदी अपने पशु के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो अपने बीमा कवर मिले। बस परिवार में दो पशुओं रो बीमा जरूरी होया करे।
1: बिल्कुल सर दीवान भाई बहुत ही बढ़िया बताई, और आज की योजना है इस बारे में सब भाइयों ने जानकारी होनी चाहिए, सबने लाभ होना चाहिए। जिया आगे हूँ बताऊँ तो कि इरो जी को मूल उद्देश्य है किसान भाई ने वो ध्यान रखना है कि पशुरी टैगिंग करवानी घनी जरूरी है, यानी बिरे कान में जो छलो लागेड़ो होवे है नंबरा आड़ो वो जरूरी है। बिना टैग रे बीमे रो लाभ मिलनो मुश्किल है। जब भी आप बीमा कराओ तो निश्चित करो कि आप पशुरी पहचान जकी है बा सही तरीके से हो जावे। तो ए जका अपारा बेजुबान साथी है, आपारा चलता फिरता बैंक है आपारा ये पशु, आरो स्वास्थ्य उत्तम रहेला, आरी जी की ऊर्जा है बीरो आपने अच्छो लाभ भी मिलेला
0: मिलेला, और एक आपने नेचो भी रहेला के आपा पशु धन रे प्रति सावचेत हाँ, और जिन प्रकार आपा अपने स्वास्थ्य रे प्रति सावचेत राखा हाँ, बीमा करावा हाँ, पॉलिसी करावा हाँ, सरकार तरफ सरकार जी की सहायता देवे बाबी जी आप आयुष्मान भारत रे तहत अपा बीमो करावे, बी अपन पशुओं रे में भी मंगला पशु योजना है जी इन तहत अपा पशुओं बीमो करावा।
1: तो साहब बहुत ही अच्छी योजना है, सब किसान भाई है वे इन योजना से जुड़े इरो लाभ उठावे। आप रे पंचायत समिति कार्यालय में जा रहा पतो करो, विकास अधिकारी जी पतो करो और इरो पूरो लाभ उठाओ।
0: और अब बजरंग भाई सुना अपा ओ गीत लो।
2: चाला जोधपुर रोज जोधपुर का कबूतर और भाई उड़ता रे फुर्रा जब मोटा ना बोली गुर्रा थोड़ा बोलिया हूँ लागर घिंड पेड़ा भाई लागर घिंड पेड़ा।

रोज कन मांग दूध राबड़ी नानी खाली खीर रोज कन मांग

जीवन में जित कान्यो बेचो दार में निकलो बाल भाई र कान्यो गयो रूस लारे कबूतर सूत कान्यो गयो रूस लारे कबूतर सूत ये जी मोर राम जी ये जी मोर राम

0: बजरंग भाई सगली बात कर ली, लेकिन अपने स्वास्थ्य के प्रति जितनी नहीं बात करा नहीं तो अपा स्वास्थ्य के प्रति अपा सजग नहीं गिनी जा, क्योंकि पहलो सुख निरोगी काय आवे। जद अपारो शरीर स्वास्थ्य रहेला तो अपा सगला काम करा ला, खेती बाड़ी रा भी काम कर ला ला, देश प्रदेश रा भी काम करा ला, नीति रीति रा भी काम कर ला ला, लेकिन अपारे स्वास्थ्य जब सही रहेला जड़े। और स्वास्थ्य सही वास्ते अपन आज वक्त में जरूरी है मोटो अनाज खावणो।
1: बिल्कुल सा कान्या मान्या कुर राड़ी बात आई है कान में सब रे आई के वहाँ के मोटो अनाज आप खावा तो शरीर अपारो निरोगो रेवे, आपा शरीर में तंदुरुस्ती रेवे, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है भी में बढ़ोतरी होवे, काम रे महीने मन
0: लागुड़ो रेवे। बिल्कुल, तो मोटो अनाज किसान भाई आपा रुदिन बातचीत कराई हाँ के अपन ने थाली में मोटो अनाज लेनो है। बिल्कुल आज अटल सत्य है, आज रे वक्त में यदि अपा मोटो अनाज थाली में राखा ला तो अपारो शरीर स्वस्थ रहेला, क्योंकि एक समय हो हरित क्रांति आई, हरित क्रांति में अपन अनाज जरूरी हो पूरो देश आज़ाद होना रे बाद में, तो बीरे बाद में साथ साथ है बजरंग भाई कई ऐडी चीज़ा भी आई जी अपार स्वास्थ्य रे उतार चढ़ाव होते रहे हो, क्योंकि बीर में रासायनिक खाद रो बोलबालो ज़्यादा हो, और अब विज्ञान रो युग हो, और विज्ञान रे युग रे में या तकनीक आई, तकनीक रे साथ साथ है अपन ज़्यादा मुनाफो सही जो, और ज़्यादा मुनाफे के कारण रासायनिक छिड़काव रो वक्त आयो, और रासायनिक छिड़काव कहीं है उत्पादन मोकड़ो यो, ढेरिया लागी, किसान सक्षम हो गया, हाईटेक किसान हो गया, कृषि भी हाईटेक हो गई,
1: आत्मनिर्भर हो गयो देश, जिकी अखाद्यान जिकी क्षमता है बीर मायने देश आत्मनिर्भर हो गयो, पर इदा जी का साइड इफेक्ट है, दूसरा नुकसान है, वे भी आपने मोकड़ा उठाना पड़ा।
0: बढ़िया,
1: पण मोटे अनाजरी आप खेती करा, मोटे अनाजा ने आप रोजरा जीमा तो आपारे शरीर मायने रोगासू लड़ने की ताकत बढ़े, शरीर आपारो निरोगो रेवे, और काम रे मायने चोखो मन लागतो रहे।
0: मन लागो ई खातर आपने बाजरी खावा, बाजरी रो खीचड़ो खावा, और राब खावा, दही राबड़ी साछ खावा, और मोटे अनाज रो सेवन कर शरीर निरोगो राखा। और बजरंग भी जाता करता सुना ओ माता जी रो हरजस
1: सुनाओ सर।

0: वाह साबा दीवान जी, आज तो बहुत ही बढ़िया स्मार्ट खेती माथे बातें करी। पानी भेड़ो करने दी आपा विधि तकनीक आप चोखी जानकारी देई, मंगला पशु बीमा पर जानकारी देई और मोटे अनाजारी बात करी ने आज तो आनंद आई गयो।
1: करीम खा खेजड़ गावड़ो इन हर जसरे साथ ही कार्यक्रम रो वक्त हो जो पूरो तो लेवा सिख बजरंग भाई।
0: बिल्कुल सर, तो आप साथी बजरंग सारस्वत
1: और दीवान दान दर्द दे दो गणान गणा
0: राम राम राम राम।

अभी हमारे ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे थे बजरंग सारस्वत और दीवान दान रत्नु। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 7:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत में पहली आवाज़ सुनिएगा सीमा अनिल सहगल की।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार अभी 8 बजे हैं और अब समय है फिल्म संगीत का। लीजिए फिल्म संगीत की इस कड़ी में पहला गीत सुनिएगा, यादों की बारात से ये गीत होगा, जिसमें आवाज़ होगी आशा भोसले की और मोहम्मद रफ़ी साहब की।

अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में अभी आप ये गीत सुन रहे थे फिल्म आई मिलन की रात से। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए फिल्म संगीत में अगला गीत सुनिएगा फिल्म ज्वेल थीफ से, ये गीत लता मंगेशकर और भूपिंद्र की आवाज़ में।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना फिल्म अभिमान से। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए फिल्म संगीत में अगला गीत सुनिएगा फिल्म आशा से, और ये आवाज़ होगी लता मंगेशकर जी की।

लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ में ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 8:30 हुए हैं और ये समय है हमारे श्रोताओं के लिए लोक संगीत का। लीजिए, लोक संगीत में पहली आवाज़ सुनिएगा चंद्रशेखर कल्ला की।

0: रागिनी शर्मा की आवाज के साथ ही लोक संगीत ही संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 8:45 होने को है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिएगा समाचार संध्या, तत्पश्चात न्यूज एट 9।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर-17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
1: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
4: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
1: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात

0: नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
2: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉकर टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के

0: पृथ्वी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
1: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टिलरी शेल हो, बम हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
2: इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewzOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले 2 दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। IPL क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन के फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 9:15 हुए हैं और समय है अब हमारे श्रोताओं के लिए फिल्म संगीत का। लीजिए फिल्म संगीत में पहली आवाज़ सुनिएगा किशोर कुमार की और उनके साथ हैं लता मंगेशकर जी, और इन दोनों की आवाज़ को आप सुनिएगा फिल्म डॉन से।

आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना फिल्म शान से। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए फिल्म संगीत की इस सफर में अंतिम ये गीत सुनिएगा, लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत होगा फिल्म नसीब से।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए अब समय है एक परिचर्चा का। श्रोता, आज हमने युवाणी कार्यक्रम में एक वार्ता सुनी थी जिसका विषय था शिक्षा, जिसका स्तर कभी स्टॉक मार्केट में भी नीचे नहीं आता। आज ये सही है कि आज हमारी शिक्षा का स्तर कभी नीचे तो नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे जो शिक्षा का हमारे लेने का जो तरीका था वो कहीं ना कहीं बदल गया। जहाँ पर पहले हम परंपरागत तरीके से अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे, वहीं पर आ जाते आते आज उस परंपरागत साधनों की जगह पर कई ऐसे साधन आ चुके हैं जो आधुनिक हैं। इस आधुनिक उपकरणों के माध्यम से, या फिर यूं कहें कि आधुनिकता के इस दौर में हमने ऐसे ऐसे हमने कुछ मार्ग खोज निकाले हैं जो हमारे शिक्षा के स्तर को कहीं ऊंचा भी लेकर के जा रहा है, कहीं पर उसके विपरीत प्रभाव भी हमारे यहाँ पर पड़ रहे हैं। ऐसी चर्चा की जा रही है आज इस परिचर्चा में, जिसका विषय है शिक्षा का आधुनिकीकरण और बच्चों का भविष्य। इसका संचालन कर रहे हैं हेम शर्मा, और इसमें प्रतिभागी है संजू श्रीमाली और राजेश रंगा। तो लीजिए सुनिएगा परिचर्चा, जिसका विषय है शिक्षा का आधुनिकीकरण और बच्चों का भविष्य।
1: आज हम आधुनिक शिक्षा में बच्चों का क्या भविष्य है, इस पर बातचीत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं न्यूज एडिटर हूँ हेम शर्मा। हमारे साथ ही
2: मैं संजू श्रीमाली, MS कॉलेज बीकानेर से हूँ।
3: मैं राजेश रंगा, प्राचार्य।
1: वैसे आधुनिक शिक्षा और बच्चों का भविष्य एक गंभीर विषय है, और इस विषय को लेकर देश में राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और स्थानीय स्तर पर चिंताएँ होती रहती है। आपने सुना होगा कि कोठारी आयोग ने देश की शिक्षण नीति और शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा अध्ययन किया था। यही नहीं, यशपाल कमेटी ने भी इसके बारे में अध्ययन किया था। पर आज़ादी के पहले से जो अंग्रेजों ने शिक्षा नीति तय की थी, उसी का अभी भी अनुसरण हो रहा है। माना यह जा रहा है कि हम जो बच्चों को किताबी शिक्षा दे रहे हैं, उससे बच्चों का व्यवहारिक पक्ष बहुत कमज़ोर हो गया है। ये स्थिति है कि बच्चों को आसपास की प्रकृति की जानकारी नहीं है, उनका व्यवहारिक धरातल बहुत कमज़ोर है, और वो अपने अड़ोस पड़ोस को, अपनी प्रकृति को, अपने व्यवहार को बिल्कुल नहीं समझते। केवल किताबी ज्ञान होने के कारण जब वो पढ़ लिख कर बड़े हो जाते

0: को कई तरह की जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं शिक्षाविद रंगा जी से आग्रह करूंगा कि वो बताएं कि हमारी ये आधुनिक शिक्षा जो आप भी बच्चों को दे रहे हैं किस तरह से हमारी नई पीढ़ी का निर्माण करती है।
1: ये जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो किताबी ज़्यादा हो गई है, व्यवहारिकता में कमज़ोर चल रही है। ये जो शिक्षा है एक रटंत के ऊपर चल रही है और सारा का सारा इस विद्या के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से निश्चित रूप से डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े अधिकारी ज़रूर पैदा हो रहे हैं, लेकिन जो मानवीय पक्ष है शिक्षा का वो कहीं छूटता जा रहा है। राष्ट्रीयता की बात है वो कहीं छूटती जा रही है। हमने जो शिक्षा नीति जो हमने मेघालय ने 1836 से हमने लागू की, मेघालय आयोग बना 1833 में, और उसके बाद में हमने अपनी भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल उसमें समयकाल परिस्थितियों के अनुसार उतना परिवर्तन नहीं कर पाए हैं। उसके कारण से एक बच्चा जब शिक्षा लेकर निकलता है तो उसके सामने वो एक दोहराए पर आके खड़ा हो जाता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो कहीं वो अर्थोपार्जन के तहत सारी शिक्षा जा रही है, कहीं व्यवहारिकता की तरफ कम जा रही है, मानवीयता की कम जा रही है, जीवन में जो समस्याएं आ रही है वो उनको सुलझा नहीं पाता है।
0: डॉक्टर संजू जी, आप शिक्षाविद हैं तो आप ये बताएं कि हम अपने बच्चों का भविष्य निर्माण करने के लिए शिक्षा में किस तरह के परिवर्तन करें, शिक्षा नीति में और शिक्षा के व्यवहार में किस तरह की चीज़ें लाएं जिससे बच्चों का समग्र व्यक्तित्व का विकास हो सके।
2: देखिए सर, मेरा ये कहना है, जैसे आपने एक उदाहरण से अपनी बात को पुष्ट की तो मैं उसमें एक बात जोड़ना चाहती हूँ कि आज हम देखते हैं कि हर बच्चा चाहता है मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, इससे ज़्यादा वो सोचता ही नहीं है। और उसके पीछे कारण भी है कि माता पिता की अपेक्षाएं भी यही हो गई है, वातावरण की अपेक्षाएं भी यही हो गई है, अर्थ भी यही हो गया है। तो मेरा ये मानना है कि सर कि हम अर्थ की तरफ भागती हुई शिक्षा को छोड़कर व्यवहार और नैतिकता और नीति मूल्य शिक्षा को अगर पकड़ें तो व्यवहार भी हो सकता है, प्लस हमारा विकास भी हो सकता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास भी हो सकता है और माता पिता की एक आत्मिक शांति भी इसी में मिल सकती है, मेरा ये मानना है। बाकी तो सर ये है कि हम देख ही रहे हैं कि सब कोई भाग रहा है पैकेज की ओर, और देख रहे हैं आज के कोटा का किसी भी एक एजुकेशन को ले लीजिएगा, उदाहरण से ये देखिए कि उसमें 10 लाख मान लीजिए बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 हज़ार भी मानते हैं, उसमें मात्र 1 हज़ार बच्चे निकलते हैं और उस 1 हज़ार को इस तरह से भुनाया जाता है, यानी हमारे दिमाग का इस तरह से एक वॉश कर लिया गया है, वॉशिंग हो गई हमारे दिमाग की, कि हम भी यही सोचते हैं कि हाँ ये इंस्टीट्यूट हमारे बच्चे के मशीन बनाने के लिए कारगर है, और हम वहाँ आंख बंद करके, गांधारी बन करके वहाँ भेजने को तैयार हो जाते हैं, जबकि वो निकलते फिर वैसे ही हैं, वही मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन हो जाते हैं। जब उनका भविष्य की बात आती है, जब उनको व्यवहार की बात आती है, जब उनके नीति की बात आती है, नीति मूल्यों की बात आती है, तब वहाँ बच्चा भविष्य में मौन हो जाता है। तो हम इस तरह की शिक्षा न दें, हमारे बच्चों को अर्थ के अलावा नैतिकता की ओर भी रखें।
0: आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमारे व्यवस्था ने जो शिक्षा की प्रणाली विकसित की है उस प्रणाली, उस सिस्टम में अगर कोई बच्चा आता है और उसके अनुसार प्राप्तांक प्राप्त करता है तो वो तो इंटेलिजेंट माना जाता है। और कुछ बच्चे स्वाभाविक रूप से प्रतिभावान होते हैं, हर बच्चे में अलग तरह की प्रतिभा होती है, जो सिस्टम में नहीं आता उसको अच्छा नहीं मानते। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है अपने पत्रकारिता जीवन में भी और व्यवहारिक पारिवारिक सामाजिक जीवन में भी, कि जो स्कूली सिस्टम में वो फिट नहीं रहे पर वो आज बड़े पदों पे हैं और बड़ा बड़ा काम बिजनेस देख रहे हैं। तो हम अपने बौद्धिक और शैक्षणिक विकास को एक तय पैटर्न में मानकर अगर व्यवस्था करें तो ये कहाँ तक उचित है और शिक्षा में हमको किस तरह से परिवर्तन करना चाहिए ताकि प्रतिभाओं का स्वतः स्वाभाविक रूप से विकास हो सके, और शिक्षा में ये परिवर्तन जीवन के शुरुआत में करें तो वो ज़्यादा प्रभावी होता है। मैं रंगा जी से ये परामर्श चाहता हूँ कि हम अपने देश की शिक्षा व्यवस्था में ऐसा कौन सा परिवर्तन करें, किस तरह से परिवर्तन करें जिससे बच्चों का स्वाभाविक विकास हो सके।
1: हमें शिक्षा जो हमारे प्राचीन अध्यात्म है, प्राचीन जो हमारे जीवन मूल्य हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए वर्तमान शिक्षा पद्धति जो कि एक भौतिकवादी युग की ओर ले जाती है, भौतिकता की ओर बच्चों को लेके जा रही है, उसमें मानवीय मूल्य, नैतिकता के मूल्य ख़त्म होते जा रहे हैं। हमें एक ऐसी शिक्षा पद्धति जो कि भौतिकवादी नहीं हो, आज शिक्षा के साथ साथ

0: भौतिकता के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, कौन सी स्कूल में क्या सुविधाएं हैं, कौन से विश्वविद्यालय में क्या सुविधाएं हैं, ये नहीं देखा जाता कि उनमें पढ़ाने वाले शिक्षक कैसे हैं, उसमें शिक्षा में व्यवस्था कैसी है। यहाँ पर ये इस तरफ जाना शिक्षा में बहुत ज़रूरी है कि शिक्षण व्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अच्छे से अच्छे गुणों का विकास हो, अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए, वो व्यवहार में अपने लाके अपने जीवन को समाज के हित में काम कर सकें। अभी जो बच्चा, जैसा संजू जी ने बताया कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अर्थोपार्जन करने में लग रहा है, अर्थोपार्जन जीवन की शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, होना भी चाहिए, लेकिन अर्थोपार्जन के साथ साथ विद्यार्थी वो अपने समाज से जुड़े, समाज का विकास करें, समाज की उन्नति करें, समाज को आगे ले जाने की बात करें, अपने परिवार को, परिवार से टूटते जा रहे हैं, ऐसे हालात हो रहे हैं कि परिवार से टूटते जा रहे हैं अर्थोपार्जन के कारण, कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास धन ज़्यादा होना चाहिए, ये शिक्षा हमें ये सिखाती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हमें एक ऐसे शिक्षण प्रणाली लानी चाहिए जिससे कि बच्चा हमारी शिक्षा व्यवस्था से कुछ सीखे।
1: मैं इस शिक्षा व्यवस्था और बच्चों की मानसिकता का आपको एक उदाहरण के साथ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अभी स्कूलों में छुट्टियाँ चल रही थी, मैंने कुछ अपने मोहल्ले के 5-7 बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं उनको लेके भीनासर गोचर चरागे में गया और उनसे पूछा। सबसे पहले हम जब एक टिब्बे पे गए तो वहाँ बिल बने हुए थे जिसमें सांप रहते थे। मैंने कहा ये क्या है, तो उनको पता नहीं था। वहाँ की जो वनस्पति है, जो मरुस्थलीय वनस्पति है, उनके बारे में पूछा तो बच्चों को बिल्कुल पता नहीं। और बच्चों को चिड़ियों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में जो इस तरह के गोचर चरागाह और इस जगह में रहते हैं, बिल्कुल जानकारी नहीं है। किताबों के अलावा उनका ज्ञान बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्यों नहीं हम बच्चों को जो शिक्षा दें वो व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई शिक्षा हो, हमारी इकोनॉमिक से जुड़ी हुई शिक्षा हो, हमारी सांख्यिकी से जुड़ी शिक्षा हो, समाज से जुड़ी शिक्षा हो, राजनीति से जुड़ी शिक्षा हो, तो व्यवहारिक जीवन और देश के मूल्यों से जुड़ी हुई शिक्षा दें तो हम बच्चे को कहीं बेहतरीन रूप से विकसित कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि नवाचार शिक्षा में किस तरह से हो जिससे हमारी ये जो विसंगतियाँ हैं शिक्षा की वो विसंगतियाँ दूर हो जाए। संजू जी इस पर प्रकाश डालें।
2: जी शर्मा जी सर, मैं अपना ही एक आप जैसे उदाहरण कह रहे हैं कि मैं अभी बच्चों को लेकर गया और उनको बताया, उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं था, बेसिक नॉलेज भी नहीं था। हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ वनस्पतियों का ज्ञान नहीं, जहाँ क्या बना हुआ है उस चीज़ का एहसास नहीं। तो मेरा ये मानना है सर, बच्चे को एक बहते पानी की तरह बह देना चाहिए और वो जो कर रहा है आप उसको वेट एंड वॉच, ध्यान से और शांति से देखें। वो जो कर रहा है उसको करने दीजिए। अगर आप टोकते हो, आप भी देखिए, आप भी अगर बड़े हैं और आपको टोकते हैं तो आपको थोड़ा बुरा लगता है, बस उसको भी टोके नहीं, उसको ये देखिए वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। क्योंकि मैं एक उदाहरण देती हूँ, एक छोटे से बच्चे का ही, बच्चा था 10वीं क्लास का, उसको पूछा गया कि बेटा तुम्हारे, जैसे माता पिता पूछते हैं, माता पिता का आजकल आंकड़ा भी यही हो गया है सर कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का कितने परसेंटेज बने, हमारा बच्चा उसी से इंटेलिजेंट माना जाता है, उसको उनकी इंटेलिजेंसी वही रह गई है। तो उस बच्चे का परसेंटेज के मामले में थोड़ा डाउन था, लेकिन उससे पूछा गया कि बेटा क्या कारण रहा, तो उसने ये बताया कि आंटी मुझे ये नहीं है कि मैं किताब से रट करके रट्टन विद्या नहीं कर सकता, मेरी कमजोरी है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि पूरे संसार में किस देश की कौन सी राजधानी है, मैं ये बता सकता हूँ, मैं ये बता सकता हूँ कि वहाँ की जनसंख्या कैसी है, मैं ये बता सकता हूँ कि वहाँ की जलवायु कैसी है। तो इस बच्चे का ज्ञान तो है ही, ये नहीं कह सकते वो ज्ञान में अनाड़ी है, वो खाली ये नहीं कर, उसको ये नहीं है कि उसका परसेंटेज के मामले में, यानी रटन विद्या उसकी कमजोर है, तो रटन विद्या पर न जाए। और ये नवाचार की बात करते हैं सर, तो आजकल तो हर पल पल पर बच्चा भी चाहता है कि मैं जब तक किताब से अगर कोई पढ़ा रहा है मैं नहीं पढ़ूंगा, वो तो मैं घर बैठे ही पढ़ लूंगा, मैं गूगल पर ही पढ़ लूंगा, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पढ़ लूंगा, लेकिन उसको ये होना चाहिए कि मुझे सामने वाला मेरा शिक्षक दे क्या रहा है नए के नाम पर। तो यहाँ महारानी कॉलेज में हमने एक नया नवाचार किया था कि हर सैटरडे, हर शनिवार को हमने शाम के समय 3-3:30 बजे के करीब सारे BA, BSc, BCom तीनों फैकल्टी को, विद्यार्थियों को इकट्ठा किया और उनको ये कहा आज एक समस्या पर खुला मंच होगा। उस खुला मंच में जैसे आप अपने माता पिता को बहुत सारी बातें नहीं कह सकते, आप यहाँ कहिएगा, आप बहुत सारी बातें हैं आपने कक्षा में नहीं कह सकते क्योंकि उस समय एक मर्यादा होती है, एक घंटे का ही होता है कालांश आपका, तो आप यहाँ कहिएगा। उसका निष्कर्ष ये निकल कर आया सर कि जब हमारा UGC ग्रेड लगा, UGC हुआ जब हमारा मूल्यांकन, तब हमारी कॉलेज को सिर्फ मात्र उसी वजह से B+ मिला था।

0: नवाचार तो जरूरी है सर।
1: संजू जी, जो भारतीय शिक्षण व्यवस्था है, इसका अगर पिछले 200 वर्षों का विश्लेषण करें तो ये निष्कर्ष निकल के आता है कि शिक्षा नगर आधारित और उच्च केंद्रित आधारित है। इससे लोगों का श्रम से दूरी होती जा रही है और बौद्धिक विकास नहीं हो पाता। ये सारी चीज़ें एसेस की गई है और इसको देखते हुए हमको अपने स्वाभाविक बौद्धिक विकास के लिए, और शिक्षा तो श्रम सिखाती है पर हम दूर होते जा रहे हैं, इन विसंगतियों को दूर करने के लिए हमको किस तरह से परिवर्तन करने चाहिए।
0: शहरीकरण हो रहा है, शहर में यही चल रहा है, लेकिन लौट करके पुनः चलना ही पड़ेगा, तभी हम अपनी जड़ों को मजबूत कर पाएंगे। और मैं एक जड़ों की बात पर भी ये बताती हूँ सर कि आप ऊपर के कितने ही पौधों पत्तियों को सींच लीजिएगा, जब तक जड़ें नहीं सींची जाती है तब तक हम हरे भरे नहीं रह सकते हैं। तो लौट कर भी जा रहे हैं, वो वापस जेव की उस पर भी आ रहे हैं खेती पर। और इंजीनियर किए हुए बच्चे, आपने ये भी देखा होगा शर्मा जी सर, उदाहरण के रूप में इंजीनियर किए हुए बच्चे भी लौट लौट कर गाँवों में जा रहे हैं।
1: बहुत बुरी स्थिति यह है कि जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है वो संकटों से घिरी हुई है। हर 5-7 साल में पाठ्य पुस्तकें बदल दी जाती है पर शिक्षा के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, और शिक्षा रोजगार उन्मुख नहीं है। ये बात पूरे देश में सभी राजनीतिक दल और जो नीति निर्धारक है वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। दरअसल जो हमारी परंपरागत शिक्षा थी वो उद्योग से, परंपरागत व्यवसाय धंधों से जुड़ी हुई थी, और वो परंपरागत शिक्षाएँ हमारे नैतिक आदर्शों से, हमारे जीवन व्यवहार से, हमारे अतीत के अनुभवों से जुड़ी हुई थी, और उससे निकलकर जो व्यक्ति तैयार होता था वो एक समग्र व्यक्तित्व का धनी होता था। इसीलिए कहते हैं कि पुराने लोगों के साथ बैठने से उनका जो अनुभव का ज्ञान है वो हमको मिलता है। नई शिक्षा व्यवस्था ने इस हमारे परंपरागत ज्ञान के मंच का बिल्कुल से दूर कर दिया है, और हम हमारे जो परंपरागत तौर तरीके थे शिक्षा को लेने के वो भी समाप्त हो गए हैं, हम केवल स्कूल आधारित हो गए हैं। तो इसके बारे में हम चूंकि समाज में जिम्मेदार नागरिक हैं, हमको क्या करना चाहिए गंगा जी इसमें, शिक्षा में परिवर्तन के लिए किस तरह से स्कूली व्यवस्था में और शिक्षण व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है?
2: देखिए, स्कूली व्यवस्था से पहले हम जब अपने गुरुकुल व्यवस्था में जाते हैं तो खुले वातावरण में बच्चों को पढ़ाया जाता था, उनको सिखाया जाता था। जैसे अभी आपने पहला जो प्रश्न किया, जो पहली बात थी कि नवाचार कैसे करें, तो हम भी स्कूलों में नवाचार करते रहते हैं। और जब एक दिन 6-7 दिनों में से एक दिन उनको कह देते हैं इस दिन फंडे है, तो उस दिन बच्चों की संख्या बढ़ जाती है और बच्चे बहुत खुशी खुशी से आते हैं। एक बार एक प्रयोग के रूप में किया, बच्चों को कहा कि कविताएँ आप लिखो, तो जो बच्चा बिल्कुल पढ़ने में कमज़ोर थे वो बच्चे कविताएँ लिखने लग गए, और वो कविताएँ लिखते लिखते जब नेक्स्ट ईयर उनका जब रिजल्ट आया तो वो सब बच्चों से आगे निकल गए। तो शिक्षा में हमें जो चुनौतियां हैं, चुनौतियां इस मायने में है कि शिक्षा जो आज का जो विद्यार्थी निकल रहा है वो समाज से कहीं ना कहीं जुड़ाव नहीं है उसका, वो स्वयं अपने अंदर केंद्रित होता जा रहा है। तो हमें उसको ऐसी शिक्षा दें, ऐसी शिक्षा का वातावरण पैदा करें जिससे वो अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने राष्ट्र से और संपूर्ण विश्व से जुड़े। और उसके लिए हमें हमारी जो वर्तमान जो एक कक्षागत शिक्षा पद्धति है उसको कहीं बाहर निकलकर उसको खुले वातावरण में लाना पड़ेगा, और किताबी ज्ञान से उसको दूर करना पड़ेगा। और जो एक परसेंटेज का दौड़ है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बच्चा जो हमारी शिक्षा रटन की पद्धति से सारी हो गई है, और जो रटता ज़्यादा है वो ज़्यादा सफल माना जा रहा है समाज में। तो समाज में हमें ऐसे आइडल्स बच्चे हमारे बीच से पैदा करने पड़ेंगे जिनको हम ये बताएं कि ये बच्चे पढ़ने में तो कमज़ोर थे लेकिन ये बाद में अपने जीवन में बहुत आगे निकल गए, चाहे थॉमस एलवा एडिसन का नाम लें या बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आगे निकल जाए। तो ऐसे आइडल हमारे बीच में, समाज में से निकाल के बच्चों के बीच में, समाज के बीच में रखने पड़ेंगे जिससे शिक्षा में परिवर्तन आएगा। ये परंपरागत शिक्षा पद्धति जो स्कूली शिक्षा पद्धति को ज़्यादा पुरानी नहीं है, 16वीं शताब्दी में जर्मनी से ये प्रारंभ हुई और उससे पहले तो खुले रूप में दी जाती थी।
1: अपने भारतीय शिक्षण व्यवस्था में शिक्षा का काम समाज के जिम्मे था और समाज ही शिक्षा व्यवस्था करता था, अब शिक्षा सरकार के हाथ में आ गई है तो ये विसंगतियाँ पैदा हो गई है। तो क्यों नहीं ये जो शिक्षण व्यवस्था है वो समाज को समर्पित कर दी जाए और समाज के माध्यम से स्वतः स्वाभाविक रूप से जो हमारा परंपरागत ज्ञान और जो अध्ययन से जो चीज़ें आती है उसको शिक्षा में शामिल किया जाए। विसंगति का बड़ा कारण है कि हम विदेशों के पाठ्यक्रमों को, विदेशों के विद्वानों की परिभाषाओं को रट करके अपने आप को

0: महत्वपूर्ण मानते हैं। जबकि
1: बिल्कुल
0: ज्ञान
1: बिल्कुल
0: का, दुनिया का विश्व गुरु भारत रहा है, और ज्ञान, यहाँ ज्ञान की कमी नहीं है। यहाँ जिस तरह के शास्त्र, वेद और जिस तरह के हमारे परंपरागत रूप से लिखे हुए साहित्य है, उसमें ज्ञान का अपार भंडार है। वो ज्ञान केवल थोथा ज्ञान नहीं है, उसमें व्यवहारिक ज्ञान भी है। उसमें सामाजिक जीवन कैसे जिया जाता है, व्यक्ति का जीवन कैसे होता है, व्यक्ति के क्या कर्तव्य हैं, व्यक्ति किस तरह से अपने जीवन का जीवन पर्यंत संचालन करे, ये बातें भी सिखाई जाती है। और उसमें उद्योग धंधे, काम धंधे और विज्ञान की बातें भी कही गई है। तो हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को समाज के हवाले कर दें, सरकार उसमें समर्थन का काम करें और समाज शिक्षा को संचालित करें, तो मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें और परिवर्तन की तरफ आ जाती है। आपका क्या विचार है संजू जी?
2: सर, मेरा ये मानना है कि नेक है विचार, तो कहीं कोई गड़बड़ ही नहीं है, ना खराब भी नहीं है, विचार तो अच्छे ही होते हैं। क्योंकि एक कहते हैं ना, समुद्र मंथन करेंगे तो उसमें से निष्कर्ष रूप से 14 रत्न निकलेंगे ही निकलेंगे, तो ये तो मंथन की बात है। लेकिन ये बात जरूर है सर कि अब जो सरकारीकरण हो गया है उसका समाजीकरण बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हम लोग बैठ करके बात करें और शिक्षा विज्ञ होने के नाते और समाज और राजनीति के नाते, लेकिन ये सामाजिक और राजनीतिकरण में सरकारीकरण, क्योंकि आज इसलिए मैं कह रही हूँ मुश्किल है, क्योंकि आज हर व्यक्ति, हर दूसरा व्यक्ति चाहता है कि हमारा बच्चा और मैं सरकार के नुमाइंदे बन जाएं, सरकार की नौकरी मिल जाए, आराम तलब हो जाएं, बस वही ठीक है। सबको ये कोई नहीं चाह रहा है कि हम अपना खुद का बिजनेस हो, हमारा खुद का कोई व्यापार हो, हम किसी चार व्यक्ति को नौकरी दें, या हम अपनी कहीं खेती बाड़ी में कोई काम करें, कोई नहीं चाहता। गांव का भी व्यक्ति देख लीजिएगा, अगर कोई किसान भी अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तो वो अपनी सारी ज़मीनें बेच देगा, जो उसकी रोजी रोटी का कारण है वो भी बेच देगा, और वो ये चाहेगा आज मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। यानी हम सरकार की तरफ अब इस तरह से मुखातिब हो गए हैं कि हम सोचते ही नहीं हैं कि हम समाजीकरण की तरफ बढ़ें तो शायद अच्छा हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर हम समाज की तरफ बढ़ करके देखेंगे तो आज ये विसंगतियाँ हैं, बलात्कार वगैरह, ये जितने भी कह लीजिए विकृतियाँ समाज की, वो निश्चित रूप से कम हो जाएगी। और एक बच्चा भी मशीन की बजाय वाकई में बचपन में बच्चे ही बने रह जाएंगे, और बच्चा बनेगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का विकास भी होगा, ये बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन समाजीकरण है सर बहुत मुश्किल, बहुत
0: ये बहुत जटिल विषय है। और इस विषय पर हमारे देश के दार्शनिक, हमारे देश के शिक्षाविद और हमारी सरकार के नीति निर्धारक सब लोग इस पर चिंतन करते हैं। पर हमको जो अंग्रेजों ने विरासत में शिक्षा व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था को हटाया जाना चाहिए। और वो शिक्षा व्यवस्था बेरोजगारों की फौज तैयार कर रही है, ये हम 70 साल से देखते आ रहे हैं। तो सरकार के नीतिकारों को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, शिक्षाविदों को और शिक्षकों को इस तरफ से अभियान चलाना चाहिए कि हम वो आयातित शिक्षा व्यवस्था की बजाय हमारे देश के, हमारे समाज के, हमारी भावी पीढ़ी के लिए आवश्यक शिक्षा है वो शिक्षा दें, और उसी के अनुरूप अपनी शिक्षण व्यवस्थाएं बनाएं, तभी देश का विकास हो पाएगा। अन्यथा देश में बेरोजगारों की बड़ी फौज क्रिएट हो जाएगी, और राष्ट्रीय में जो आवश्यक राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण है, जो नैतिक मूल्य हैं, वो धरे रह जाएंगे। ऐसी स्थिति में हमको अपनी देश की शिक्षण व्यवस्था के बारे में पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, और वो नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोगों को इस पे सोचने की ज़रूरत है। एक अभिभावक को भी, एक नागरिक को भी, एक शिक्षक को भी और नीति निर्धारक को भी। आधुनिक शिक्षा में तकनीकी ज्ञान और तकनीकें भी शामिल हो गई है, और इन तकनीकों के कारण कंप्यूटर, मोबाइल, सोशल मीडिया और दूसरे तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके कारण विद्यार्थी उसमें खोया रहता है। वो अपने चिंतन मनन में, अपनी और से क्रिएशन की तरफ नहीं जाते। तो शिक्षा, आधुनिक शिक्षा में तकनीकी प्रवेश से आप उसमें क्या विसंगतियां मानते हैं, कितना अच्छा मानते हैं, रंगा जी इसके बारे में आप प्रकाश डालें।
1: देखिए, तकनीक आने से शिक्षण व्यवस्था में निश्चित रूप से सुधार तो हुआ है, शिक्षा बहुत सहज और सुलभ होने लग गई है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो नेट का प्रभाव हुआ उससे काफ़ी प्रभाव हुआ है। लेकिन ये शिक्षा आदमी को वहीं एक मशीनीकृत मानव बनाने की ओर ले जा रही है, वो कहीं समाज से उसको दूर कर रही है, और ये तकनीकी शिक्षा उसको कहीं ना कहीं श्रम से भी दूर करती जा रही है। आज की शिक्षा का एक बहुत बड़ी विसंगति है, जैसा संजू जी ने बताया, कि ये श्रम से दूर करती ले जा रही है, और ये तकनीकी ज्ञान के माध्यम से एक मानव को रोबोट बना रही है। इस तकनीकी ज्ञान से, शिक्षा के माध्यम से, मानव ने रोबोट तो बना लिया है, लेकिन शिक्षाविद कहते हैं कि आने वाले समय में ये रोबोट ही मानव को खा जाएगा।
0: ये आप एहसास कर रहे हैं कि इसमें विद्या

0: विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता तकनीकी शिक्षा के कारण, उसका ज्ञान अर्जन हो जाता है। तो आप क्या सोचती हैं मैडम, ये तकनीकी शिक्षा?
1: नहीं सर, देखिए हर सिक्के के दो पहलू हैं, अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये तकनीकी शिक्षा जो जितने भी इसके उपकरण तकनीकी शिक्षा के हैं, वो व्यक्ति को ज्ञान तो कम और उसके समय को ज़्यादा खा रहा है। उस समय लगे हुए हैं उसमें, कुछ पता ही नहीं है क्या करना है, अंधे दौड़ की तरह चल रहे हैं। और एक उनमें ये भी आ गया है कि मुझे हर कोई जाने, और वो इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करता है कि उसको लगता है कि हाँ ठीक है, मेरा जो मैं कर रहा हूँ अच्छा ही तो है ना, मतलब वो स्वयंभू होता जा रहा है उस तकनीकी शिक्षा में। उसको न वातावरण से मतलब है, न परिवार से मतलब है, न समाज से मतलब है, उसको अपने आप से मतलब है, यानी आत्मिक बनता, स्वयंभू होता जा रहा है, स्वयं स्वयं केंद्रित होता जा रहा है। तो ये तकनीकी शिक्षा माना कि अच्छा है, लेकिन भविष्य में दूर तक की दूरदृष्टा बात करें तो ये तकनीकी शिक्षा वाकई में बहुत खतरनाक है, और उसके परिणाम दुष्परिणाम सामने आते भी रहते हैं। हमें कभी कहाँ कहीं वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं कोई समाज में इस तरह के कार्य हो रहे हैं जिसको लेकर के भीड़ उग्र हो जाती है, और वहाँ न चाहते हुए भी बहुत कुछ करना पड़ता है सरकार को, धारा 144 वगैरह वगैरह। तो ये तकनीकी शिक्षा मैं नहीं मानती कि ये बहुत अच्छी है। जितना दिमाग से कसरत करके व्यक्ति ज्ञान अर्जन करता है, उतना हाथ में लेकर के लिया हुआ एक यंत्र उसको अपनी तरफ से अपने इशारे पर ही न जाएगा, ये मेरा मानना है सर।
0: शिक्षा में तकनीक के कोई पॉजिटिव असर भी हैं, आप देख रही होंगी कि हमको जो ज्ञान दुनिया में मिलने में जितनी सुविधा हो गई है, और सूचना प्रौद्योगिकी के कारण हमको जिस तरह की सुविधाएं हुई है, वो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो हमको एक संतुलित करके इस तकनीकी शिक्षा में तकनीकी प्रवेश को देखना चाहिए, और शिक्षाविदों को भी इस पर पुनर्विचार करने चाहिए कि ये तकनीक का किस तरह से सकारात्मक उपयोग हो सके। आपकी आज की चर्चा में आप लोगों ने अपने विचार रखे, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा, शिक्षा का आधुनिकीकरण और बच्चों का भविष्य। संचालन कर रहे थे हेमू शर्मा, प्रतिभागी थे संजू श्रीमाली, और उनके साथ में थे राजेश रंगा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज, और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। रात्रि के 9:58 होने को है। कुछ ही देर में आप हमारे जयपुर केंद्र से सुनेंगे कार्यक्रम, उर्दू कार्यक्रम गुलिस्तां। कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए।

0: वाह, क्या हसीन और खूबसूरत नजराना जिसका भी हमने लुत्फ उठाया। और आइए इसी दस्तूर को बदस्तूर जारी रखते हैं और सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राजेंद्र गुप्ता राजन जी, आपका खूबसूरत कलाम आप तमाम सामाईन की नज़र। राजेंद्र गुप्ता राजन वैसे तो काफ़ी अरसे से शायरी कर रहे हैं, आपकी कई किताबें भी जो हैं वो शाया हो चुकी हैं, बड़े बड़े शायरी के उस्तादों से आपको दाद मिली है और आपने शायरी के फन को अपना ओढ़ना बिछोना माना है। आइए सुनते हैं जनाब राजेंद्र गुप्ता साहब की ये खूबसूरत शायरी आप सभी की नज़र।
1: आप सभी को मेरा आदाब। एक गज़ल से मतला और एक शेर हाजिर करता हूँ कि आज के दौर पर क्या कहें, आज के दौर पर क्या कहें और सरसरी तौर पर क्या कहें, सरसरी तौर पर क्या कहें और ख़ुद में उलझे रहे अब तलक, ख़ुद में उलझे रहे अब तलक, हम किसी और पर क्या कहें, हम किसी और पर क्या कहें। एक मुकम्मल गज़ल मतलब हाजिर करता हूँ कि दिल के रिश्ते हमने देखे रोज़ाना पैमाइश पर, दिल के रिश्ते हमने देखे रोज़ाना पैमाइश पर और सौ सौ बार जलाया दिल को दुनिया की फरमाइश पर, सौ सौ बार जलाया दिल को दुनिया की फरमाइश पर। और शेर देखें कि हमने कितनी कोशिश की थी दीवारें मजबूत रहें, हमने कितनी कोशिश की थी दीवारें मजबूत रहें पर लोगों को चैन ना आया, पर लोगों को चैन ना आया दिल की एक रिहाइश पर, पर लोगों को चैन ना आया दिल की एक रिहाइश पर। और एक ख़ास शेर कि उन गलियों में जाना मुश्किल घर की तो क्या बात करें, उन गलियों में जाना मुश्किल घर की तो क्या बात करें और दिल कितना धड़का था उस दिन थोड़ी सी गुंजाइश पर, और दिल कितना धड़का था उस दिन थोड़ी सी गुंजाइश पर। और शेर देखें कि नींद ना आई हमको जब भी दिल भी जैसे डूब गया, नींद ना आई हमको जब भी दिल भी जैसे डूब गया, ये तो ज़िंदा ही था अपने सपनों की आराइश पर, ये तो ज़िंदा ही था अपने सपनों की आराइश पर। और एक मेरा मनपसंद शेर कि जब बिखरे हों चांद सितारे आ जाना तुम ख्वाबों में, जब बिखरे हों चांद सितारे आ जाना तुम ख्वाबों में, फिर चाहे ये सारी दुनिया, फिर चाहे ये सारी दुनिया लाख हंसे इस ख्वाहिश पर, फिर चाहे ये सारी दुनिया लाख हंसे इस ख्वाहिश पर। और शेर देखें कि प्यार मोहब्बत कस्मे वादे, प्यार मोहब्बत कस्मे वादे भीगी आँखें और वफा, प्यार मोहब्बत कस्मे वादे भीगी

आंखें और वफा, कितने सारे रंग छुपे हैं दिल की इस समझाइश पर, कितने सारे रंग छुपे हैं इस दिल की समझाइश पर। और गज़ल सा आखिरी शेर कि अपना सच जाहिर करने को और भला हम करते क्या, अपना सच जाहिर करने को और भला हम करते क्या, दिल पहले ही शर्मिंदा था, दिल पहले ही शर्मिंदा था अपनी रोज़ नुमाइश पर, दिल पहले ही शर्मिंदा था अपनी रोज़ नुमाइश पर। और एक अलग रंग की गज़ल जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मतलब देखें कि मन की बात रही होठों पर, मन की बात रही होठों पर मीठा मीठा लहजा था, मन की बात रही होठों पर मीठा मीठा लहजा था, घर के हर कोने में अम्मा नाम तुम्हारा महका था, घर के हर कोने में अम्मा नाम तुम्हारा महका था। और शेर देखें कि जाने कैसे सुन लेती थी घर भर की खामोशी को, जाने कैसे सुन लेती थी घर भर की खामोशी को, कितनी चिंता सहकर उसने इस जादू को सीखा था, कितनी चिंता सहकर उसने इस जादू को सीखा था। और शेर देखें कि बरसों बाद समझ में आई गहरे पानी की फितरत, बरसों बाद समझ में आई गहरे पानी की फितरत, जब मैंने हंसती आँखों में दरिया बहता देखा था, जब मैंने हंसती आँखों में दरिया बहता देखा था। और मन की शाखों पर सालों से कोई फूल नहीं देखा, मन की शाखों पर कई सालों से कोई फूल नहीं देखा, अम्मा तुझ बिन पतझड़ होगा ऐसा किसने सोचा था, अम्मा तुझ बिन पतझड़ होगा ऐसे किसने सोचा था। और शेर देखें एक बहुत बारीक शेर कि तुलसी के सूखे पौधे को देखा तो महसूस हुआ, तुलसी के सूखे पौधे को देखा तो महसूस हुआ, वक्त रहे हम भी माँ से घर मिल लेते तो अच्छा था, वक्त रहे हम भी माँ से घर मिल लेते तो अच्छा था। और गज़ल का आखिरी शेर मेरा मनपसंद शेर कि शायद ये कुदरत का कोई जादू जैसा है अम्मा, शायद ये कुदरत का कोई जादू जैसा है अम्मा, अक्सर बेटी के चेहरे पर अक्स तुम्हारा दिखता था, अक्सर बेटी के चेहरे पर अक्स तुम्हारा दिखता था। और बिल्कुल नई गज़ल, मतलब पेश करता हूँ कि उम्र भर साथ रहा रस्मों रिवाजों से अलग, उम्र भर साथ रहा रस्मों रिवाजों से अलग, वो गुनहगार था दुनिया के गुनाहों से अलग, वो गुनहगार था दुनिया के गुनाहों से अलग। और आरजू चांद सितारों की तो छूटी कब की, आरजू चांद सितारों की तो छूटी कब की, रूह अब तक ना हुई ख्वाबों ख्यालों से अलग, रूह अब तक ना हुई ख्वाबों ख्यालों से अलग। और शेर देखें कि नाम तेरा जो पुकारा, नाम तेरा जो पुकारा वो तेरा नाम न था, नाम तेरा जो पुकारा वो तेरा नाम न था, दर्द बेताब हुए मेरी सदाओं से अलग, दर्द बेताब हुए मेरी सदाओं से अलग। और शेर देखें कि खाक होकर भी गज़ब शान से पाइंदा हैं, खाक होकर भी गज़ब शान से पाइंदा हैं, कौन कर पाए हमें चाहने वालों से अलग, कौन कर पाए हमें चाहने वालों से अलग। और खुद में खोकर ये हुआ है नया एहसास मुझे, खुद में खोकर ये हुआ है नया एहसास मुझे, इश्क का मर्तबा होता है सवालों से अलग, इश्क का मर्तबा होता है सवालों से अलग। और एक खास शेर कि आपको देख तजल्ली सी मिली आँखों को, आपको देख तजल्ली सी मिली आँखों को, सादगी नूर है रंगीन उजालों से अलग, सादगी नूर है रंगीन उजालों से अलग। और गज़ल का आखिरी शेर कि नाम तेरा

0: ही भला, नाम तेरा ही भला, लब पे कहाँ तक रहता। नाम तेरा ही भला, लब पे कहाँ तक रहता। जिंदगी कर्ज भी थी तेरी मिसालों से अलग, जिंदगी कर्ज भी थी तेरी मिसालों से अलग। उम्र भर साथ रहा रस्म व रिवाजों से अलग, वो गुनहगार था दुनिया के गुनाहों से अलग। एक नई गज़ल मतलब हाजिर करता हूँ कि याद रह रह के सभी यार पुराने आए, याद रह रह के सभी यार पुराने आए, बेठिकाना जो हुआ होश ठिकाने आए, बेठिकाना जो हुआ होश ठिकाने आए। और शेर हाजिर करता हूँ कि जिंदगी दिन ये हमें कैसे दिखाए तूने, जिंदगी दिन ये हमें कैसे दिखाए तूने, दोस्त आए भी तो एहसान जताने आए, दोस्त आए भी तो एहसान जताने आए। और शेर देखें कि दर्द खुद्दार थे खामोश हुए मुश्किल से, दर्द खुद्दार थे खामोश हुए मुश्किल से, आप फिर क्यों इन्हें आवाज़ लगाने आए, आप फिर क्यों इन्हें आवाज़ लगाने आए। और शेर देखें कि इस मोहब्बत ने दिखाए हैं हमें दिन ऐसे, इस मोहब्बत ने दिखाए हैं हमें दिन ऐसे, तेज़ बारिश में भी आंसू न छिपाने आए, तेज़ बारिश में भी आंसू न छिपाने आए। और गज़ल का मकता देखें कि बात करने का सलीका, बात करने का सलीका है ज़रूरी राजन, बात करने का सलीका है ज़रूरी राजन, बात बिगड़े तो कोई हो, बात बिगड़े तो कोई हो जो मनाने आए, बात बिगड़े जो कोई हो जो मनाने आए। याद रह रह के सभी यार पुराने आए, बेठिकाना जो हुआ होश ठिकाने आए। एक अलग तरह के तेवर देखें मतलब पेश करता हूँ कि मन पर है ये भार अभी तक, मन पर है ये भार अभी तक, कर न सके इजहार अभी तक। और जिस बारिश में हम तुम भीगे, जिस बारिश में हम तुम भीगे, याद आती बौछार अभी तक, याद आती बौछार अभी तक। और शेर देखें कि तेरे स्वागत में लटकी है, तेरे स्वागत में लटकी है सूखी बंधन बार अभी तक। और तुम वाबस्ता जिन लम्हों से, तुम वाबस्ता जिन लम्हों से, वो लम्हे गुलजार अभी तक, तुम वाबस्ता जिन लम्हों से, वो लम्हे गुलजार अभी तक। और आंसू भी खुलकर हंसते हैं, आंसू भी खुलकर हंसते हैं, छलका जाए प्यार अभी तक। और गज़ल का आखिरी शेर कि तुम पर एक गज़ल कहनी है, तुम पर एक गज़ल कहनी है, ढूंढ रहा अशआर अभी तक। मन पर है ये भार अभी तक, कर न सके इजहार अभी तक।
1: वाह, क्या कहने, बहुत ही अलग अंदाज की शायरी राजेंद्र गुप्ता राजन साहब की। बेहद शुक्रिया राजेंद्र साहब कि आप ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में आए और आपकी शायरी ऐसे ही दिनों रात चौगुनी तरक्की करती रहे और नौजवान नस्लों को उर्दू अदब में रास्ता भी दिखाती रहे। बेहद शुक्रिया। और अब बात करते हैं आलमी यौम फ़न की। सामाइन, वैसे तो ये जो दिन है इसकी हम बात करें तो ये हम सभी के लिए बेहद मायने रखता है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी सिर्फ खाने पीने और काम करने का नाम नहीं है, बल्कि अपने एहसासात, जज्बात और तखय्युलात को खूबसूरती से बयां करने का नाम भी है। यही खूबसूरती फ़न यानी आर्ट कहलाती है। समाइन, फ़न वो ताकत है जो बिना बोले भी दिलों तक अपनी बात पहुंचा देती है। जब एक मुसव्विर अपनी तस्वीर में रंग भरता है तो वो सिर्फ रंग नहीं लगाता बल्कि अपने दिल के एहसासात को कागज़ पर उतारता है। उसी तरह जब एक शायर गज़ल या नज़्म लिखता है तो उसके अल्फाज लोगों के दिलों में उतर जाते हैं। जब कोई मौसीकार धुन बनाता है तो वो इंसान की रूह को सुकून पहुँचाती है। यही फ़न की असली ताकत है। सामाइन, वैसे तो ये दिन 15 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन बात फ़न की हो تو اس کا کوئی دن مقرر نہیں ہوتا۔ اس دن کو منانے کا مقصد دنیا بھر میں فن اور فنکاروں کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔

वैसे तो ये दिन मशहूर इटालियन मुसव्विर और साइंटिस्ट लियोनार्डो डा विंसी की याद में मनाया जाता है। उन्होंने अपनी तख्लीकी सलाहियत से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। फ़न किसी एक मुल्क, मज़हब या ज़बान तक महदूद नहीं होता, ये पूरी इंसानियत की एक तरह से विरासत है। दुनिया की हर तहजीब अपने फ़न और अपनी पहचान की वजह से पहचानी जाती है। भारत की मिनिएचर पेंटिंग, मुग़ल आर्ट, बात करें कथक नृत्य की, भरतनाट्यम की, उर्दू शायरी और सूफियाना मौसिकी हमारी शानदार तहजीब की पहचान है। सामईन, आज के डिजिटल दौर में लोग मोबाइल और सोशल मीडिया में इतने मशगूल हो गए हैं कि असली फ़न और तख्लीक से दूर होते जा रहे हैं। मगर हमें समझना होगा कि फ़न इंसान के अंदर छुपी सलाहियतों को बाहर लाता है। ये इंसान को सब्र, मोहब्बत, तहजीब और खूबसूरती का एहसास सिखाता है। अगर किसी बच्चे को पेंटिंग का शौक़ है तो हमें उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। अगर कोई शायरी करता है, गाना गाता है या खूबसूरत खत्ताती करता है तो हमें उसकी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वही बच्चा आगे चलकर दुनिया का बड़ा फनकार बने और अपने मुल्क का नाम रोशन करे। फ़न सिर्फ दिल बहलाने का ज़रिया नहीं बल्कि माशरे को बदलने की ताकत भी रखता है। एक अच्छी तस्वीर, एक असरदार नज़्म या एक बेहतरीन ड्रामा लोगों की सोच बदल सकता है। फ़न नफ़रत को मोहब्बत में और मायूसी को उम्मीद में बदलने की ताकत रखता है। आज दुनिया में जहाँ जंग, नफ़रत और बेचैनी बढ़ रही है, वहाँ फ़न अमन और इंसानियत का पैगाम देता है। फ़न हमें सिखाता है कि इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब और मोहब्बत सबसे बड़ी ज़बान है। सामईन, हमें चाहिए कि हम अपने अंदर छुपे हुनर को पहचानें। हर इंसान में कोई ना कोई सलाहियत ज़रूर होती है। किसी में लिखने का हुनर होता है, किसी में पेंटिंग का हुनर होता है, तो किसी में एक्टिंग का, और किसी में मौसिकी का, जिसे मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ। अगर हम मेहनत और लगन से अपने हुनर को निखारें तो कामयाबी ज़रूर हमारे कदम चूमेगी। और मैं इस मौजू पर अपनी तकरीर का इख्तिताम इन खूबसूरत अल्फाजों के साथ करना चाहूँगा कि फ़न दिलों को जोड़ता है, फ़न इंसानियत को मजबूत करता है, और जो कौमें अपने फ़न की कदर करती हैं वही दुनिया में इज्जत और पहचान हासिल करती हैं। फ़न के लिए तो इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें अहद करना चाहिए कि हम फ़न और फ़नकारों की इज्जत करें, अपने हुनर को तरक्की दें, दुनिया में अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम फैलाएं। जी हाँ सामईन, ये बात रही यौम फ़न की, और आइए अब आपके लिए नज़र किए देते हैं मौसिकी का ये खूबसूरत नजराना।

अभी आप हमारे जयपुर केंद्र से सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम गुलिस्तां। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ज पर। श्रोताओं, अभी रात्रि के 10:30 होने को है। अब आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे एन.वी. पटवर्धन के गायन ख्याल जयंत मल्हार को। इसमें तबले पर संगत करेंगे रहमान खां और सारंगी पर संगत होगी रजब अली की। ख्याल जयंत मल्हार के इस कड़ी में आप सुनेंगे लगे रहो मन एक ताल द्रुत में सुनेंगे। तो लीजिए सुनिए एन.वी. पटवर्धन के गायन ख्याल जयंत मल्हार को।

0: अभी आप लोग सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आपने सुना एन वी पटवर्धन के गायन ख्याल जयंत मल्हार को। इस शास्त्रीय संगीत में एन वी पटवर्धन के गायन ख्याल जयंत मल्हार के साथ तबले पर संगत कर रहे थे रहमान खां और सारंगी पर संगत कर रहे थे रजब अली। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 11 बजने को है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में समाचार, तत्पश्चात सुनिएगा अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुरमुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने UAE के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष की

0: वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबूधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटे। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
1: Hormuz ko free, open और सिर्फ बनाए